0: தொடர்வது இந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே விஷால் சர்மா. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा कल संपन्न हो गई. हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव की बातचीत के अलावा इस यात्रा की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां रहीं.
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के मायने 11 समझौतों पर हस्ताक्षर से कहीं बढ़कर हैं. महत्वपूर्ण खनिजों और यूरेनियम की सप्लाई से लेकर व्यापार, रक्षा, डिजिटल भुगतान और शिक्षा तक, हिंदी और संस्कृत से लेकर खेल और विरासत संरक्षण तक, इस दो दिवसीय यात्रा ने भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को एक विस्तृत और व्यापक ढांचा प्रदान किया है. व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक संबंधों का बढ़ना, $5 अरब के व्यापार लक्ष्य को 3 साल के भीतर हासिल करने का संकल्प, दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग और राज्य एवं नगर स्तर पर अधिक सहभागिता से भारत की उज्बेकिस्तान के साथ दोस्ती को एक नई गति मिलने की उम्मीद है. सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद.
1: प्रधानमंत्री आज और कल किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26

जितने शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल राष्ट्राध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी किर्गिजिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर कल बिश्केक पहुंचे। मंत्रिमंडल के अध्यक्ष कासिमालीफ आदिलबेक अलेशोविच ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। उनके स्वागत के लिए पारंपरिक किर्गिज नृत्य का आयोजन भी किया गया। श्री मोदी राष्ट्रपति सादोर जापारोफ के निमंत्रण पर शिखर सम्मेलन के लिए किर्गिजिस्तान की यात्रा पर हैं। आशा है कि शिखर सम्मेलन से अलग श्री मोदी संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले श्री मोदी ने कहा कि वे सुरक्षा, संपर्क और अवसर पर आधारित इस क्षेत्र के लिए भारत के विजन को आगे बढ़ाने को उत्सुक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत SCO सदस्यों के साथ मिलकर आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ मुक्त क्षेत्र बनाने की दिशा में काम करेगा। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हो गई है। राहत और बचाव कार्य जारी हैं। अब भी 2500 से अधिक लोग लापता हैं। आपदा प्रभावित सभी 8 जिलों से शव बरामद किए गए हैं। इस बीच मध्य नेपाल में त्रिशूली नदी में एक और बाढ़ के कारण सस्पेंशन पुल बह गया। विदेश मंत्रालय के अनुसार अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। करीब 50 लापता भारतीय नागरिकों से संपर्क हो गया है, लेकिन 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका में दक्षिण कैरोलिना के एशविले में G20 और इससे जुड़ी बैठकों में हिस्सा लेंगे। इससे पहले वित्त मंत्री ने शिकागो में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक हासिल किया है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने सुकमा जिले में नक्सलियों के ठिकाने का भंडाफोड़ कर बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। सुरक्षा बलों ने बेलपोचा गोमपाड़ के घने जंगल में छिपाकर रखे गए विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया। ये संयुक्त अभियान सुकमा जिला बल, जिला रिजर्व गार्ड DRG और बस्तर फाइटर्स ने चलाया। ये कार्रवाई हाल ही में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली कैडरों से मिली विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर की गई। भारत के अभय सिंह ने तुआंकू महरिज स्क्वाश ट्रॉफी जीत ली है। मलेशिया के सेरेम्बन में अभय ने PSA चैलेंजर टूर 15 इवेंट के फाइनल में हांगकांग के हेनरी लेउंग को 3-2 से हराया। ये अभय का 13वां और इस वर्ष का दूसरा PSA टूर खिताब है। इससे पहले उन्होंने मार्च में मुंबई में इंडियन ओपन खिताब जीता था। दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने जीत के साथ शानदार शुरुआत की है। भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप बी में आज बांग्लादेश और इंडोनेशिया आमने सामने होंगे। मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। जर्मनी ने पुरुष हॉकी विश्व कप जीत लिया है। बेल्जियम में फाइनल में जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हराया। जर्मनी की तरफ से मिशेल स्ट्रुथॉफ ने गोल किया। जर्मनी का ये चौथा पुरुष विश्व कप खिताब है। इससे पहले अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: தேனிசை கேட்டீர்கள். தொடர்வது சமஸ்கிருதத்தில் செய்திகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: இயம் ஆகாஷவாணி. சம்பிரதி வார்த்தாஹ ஸ்ரூயந்தாம். பிரவாச்சிகா நிதிஹி ஜாஹ. अथ वार्ताः. भारत उज्बेकिस्तान देशाभ्याम् अद्य खनन आयुर्वेद पर्यटनार्थिक सहयोग पर्यावरण उच्च शिक्षादि क्षेत्रेषु परस्पर सहयोग संवर्धनाय संधिपत्राणि हस्ताक्षरितानि. देशद्वयेन 30+ 2000 वर्षं यावत् 5 अर्ब डॉलर मितं व्यापार लक्ष्यं निर्धारितम्. यदि सांप्रतिक व्यापारस्य पंचगुणितं वर्तते. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तानस्य सर्वोच्च सम्माननमपि अलभत. इदं सम्माननं देशद्वयस्य मध्ये सहयोग संवर्धने तदीय योगदानाय उपायनीकृतम्. ताशकंद नगरे उज्बेकिस्तानस्य राष्ट्रपतिः शावकत मिर्जियोरेवः प्रधानमंत्रिणे नरेंद्र मोदिने सर्वोच्च राजकीय सम्मानेन ऑर्डर ऑफ ओली

0: दर्जाली दोस्तलिक इत्यनेन सम्मानितवान्। प्रधानमन्त्रिणा एषः सम्माननः भारत उज्बेकिस्तानयोः दृढ़ सम्बन्धेभ्यः समर्पितः।
1: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। हमारा द्वीप

0: निर्णय लिया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हम मार्केट एक्सेस, कनेक्टिविटी, बैंकिंग और पेमेंट जैसे जुड़े विषयों पर व्यवस्थागत रूप से आगे बढ़ेंगे।
1: श्री मोदी अवोचत यत् सम्मानं प्राप्य असौ गौरवानुभवति अपि च देशद्वयं व्यापक रणनीतिक संरचनायाः अन्तर्गतं निर्णायक लक्ष्य निर्धारणार्थम् अग्रे समेधयिष्यन्ते। राष्ट्रपतिना शावकत मिर्जियोरेफ इत्यनेन सह प्रतिनिधिमण्डल स्तर वार्तायां श्रीमोदी अवोचत् यत् देशद्वयं निज सम्बन्धान् व्यापक रणनीतिक सहभागिता स्तरं यावत् नयतः। अनन्तरं सहयोगस्य समस्त स्तराणां समीक्षायै विदेशमन्त्रिणां समन्वय समितेः घटना विधास्यते। नेपाले जलाप्लावनस्य स्थितिः अत्यन्तं चिन्तास्पदा वर्तते। भोटेकोशी नद्याः जलस्तरवर्धनेन प्रशासनेन रसुवा, नुवाकोट, धादिंग मण्डलेषु सञ्चेतना च प्रसारिता। मध्यनेपाले आकस्मिक जलप्रलयेन मृतकानां संख्या समेध्य 68+700 संवृत्ता। अद्यापि मृतवपुंसी सम्प्राप्यन्ते। अस्यां घटनायां 2500 जनाः विलुप्ताः सन्ति। संकटस्य पञ्चमे दिने सहायोद्धार कर्मचारिणः द्रुतगत्या विलुप्तानां अन्वेषणाय कार्यं कुर्वन्ति। अष्टसु अपि प्रभावित जनपदेषु शवाः प्राप्ताः। नेपालस्य नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी NDRRMA इत्यनेन उक्तं यत् इदानीं यावत् 86+8000 जनाः सुरक्षापूर्वकं निष्कासिताः। एतेषु 27+200 वैदेशिक नागरिकाः अपि वर्तन्ते। निफ्ट संस्थायाः 18 परिसराणाम् 80% स्नातक छात्रान् सम्बोधयितुम् अद्य राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः नवदेहलीं समायास्यति। एषः दीक्षांत समारोहः छात्राणां शैक्षणिक प्रयासानां सिद्धिरूपेण आयोज्यते। ओडिशा राज्ये नूतनवृष्ट्या जलाप्लावन संकटः अतीव भीषणो जातः। उत्तरक्षेत्रेषु नदीनां जलस्तरः झटिति वर्धते। ऋतुविभागेन बालेश्वर, खेजर, मयूरभंज क्षेत्रेषु अतिवृष्टिपरा सञ्चेतना प्रख्यापिता। तटवर्ती जनाश्च सावधानतया स्थातुम् उपादिष्टाः। इति वार्ताः।
2: नेरं काले 7 मणि, आकाशवाणी, चेन्नई।

0: सुप्रभात, एक नई सुबह और नई आशाओं के साथ कार्यक्रम आज सवेरे में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत। प्रतिदिन की तरह हम एक बार फिर उपस्थित हैं लेकर न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे। प्रोग्राम में लाएंगे आप तक देश और दुनिया के समाचार, साथ ही वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आज सवेरे के इस अंक के साथ मैं हूँ विशाल शर्मा और मेरे साथ हैं रेनू कटारिया। गुड मॉर्निंग रेनू।
1: Good morning, Vishal, and a very warm welcome to all our listeners who are tuned to Akashvani FM Gold on 100.1 megahertz and the Akashvani network. And dear listeners, we are bringing to you our daily news magazine program, Aaj Savere, wherein we'll be giving you the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is the 31st of August. So please stay with us for the next half an hour and let's begin with the news headlines first, Vishal.
0: जी रेनू, सबसे पहले प्रमुख समाचारों पर नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान की अपनी दो दिवसीय यात्रा के पहले दिन आज राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के विभिन्न सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने के साथ ही अन्य अनेक कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री कल 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री दो दिन की यात्रा पर कल शाम किर्गिस्तान पहुंचे। हवाई अड्डे पर उनका स्वागत मंत्रिमंडल के अध्यक्ष कासिम लियेव आदिलबेक अलेशोविश ने किया। उनके स्वागत में एक पारंपरिक किर्गिज नृत्य प्रस्तुति का भी आयोजन किया गया।

0: भारत और किर्गिस्तान के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध काफी पुराने हैं और ये दिन प्रतिदिन मजबूत हो रहे हैं। और जानकारी के साथ हैं बिश्केक से हमारे संवाददाता विकल्प शुक्ला।
1: किर्गिस्तान में भारत और भारतीय संस्कृति को लेकर लोगों में काफी आकर्षण है। लोग भारतीय संस्कृति को गहराई से समझने के लिए हिंदी सीखने को लेकर भी काफी उत्साहित नजर आते हैं। भारत का राजदूतावास हिंदी सिखाने के लिए कोर्स भी संचालित कर रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में किर्गिस्तान की महिलाओं ने बताया कि वे भारतीय संस्कृति को बहुत पसंद करती हैं और इसलिए हिंदी सीख रही हैं।
2: नमस्ते, मेरा नाम जारा है। भारत की दूतावास में हिंदी सीख रही हूँ। मैं किर्गिस्तान से हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।
3: नमस्ते, मेरा नाम मीरा है। मैं बिश्केक से हूँ। मुझे भारत संस्कृति पसंद है।
1: इन महिलाओं ने संस्कृत का श्लोक भी गाकर सुनाया।
4: योगस्

0: उच्यते।
1: आज सवेरे के लिए बिश्केक किर्गिस्तान से मैं विकल्प शुक्ला।
2: इससे पहले प्रधानमंत्री दो दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा पर थे और इस दौरान कल दोनों देशों के बीच 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें एक महत्वपूर्ण समझौता पारंपरिक इलाज की भारतीय पद्धति और आयुर्वेद के क्षेत्र में है। इस समझौते से दोनों देशों को कितना फायदा होगा और भारत के आयुर्वेद की वैश्विक पहचान को कितना बढ़ावा मिलेगा, इस बारे में ताशकंद में मौजूद हमारे संवाददाता सुशील चंद तिवारी ने खास बातचीत की उज्बेकिस्तान में विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रतिनिधि डॉक्टर आशीना खलकतीना से।
3: नमस्कार, मेरा नाम है आशीना खलकतीना। I am the head of the World Health Organization in Uzbekistan. हम सीख रहे हैं कि एलोपैथिक मेडिसिन, वेस्टर्न मेडिसिन एक पार्ट है, एक कोई थोड़ा सा उसको बढ़ाना है। हमें सीखना चाहिए, अभी कब से इंडिया में ट्रेडिशनल मेडिसिन जैसे आयुष, सारे आयुर्वेदा और दूसरे जो एरियाज हैं, इनको सब लाना चाहिए दुनिया के पास में। तो यहाँ उज्बेकिस्तान में देयर इज अ ग्रेट इंटरेस्ट इन डेवलपिंग इट्स हेल्थ सिस्टम एंड फाइंडिंग वेज टू प्रिवेंट इलनेस एंड सो दैट पीपल आर हेल्थी फ्रॉम डे वन।
4: President Draupadi Murmu will grace the National Institute of Fashion Technology, NIFT, Combined Convocation 2026 in New Delhi today. Graduating students from 18 NIFT campuses across the country will come together to celebrate the conferment of their degrees and mark the culmination of their academic journey. Union Minister of Textiles Giriraj Singh will also be present on the occasion.
2: अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के रॉकेट लॉन्चरों को निशाना बनाया है। करीब एक महीने में अमेरिका की ये पहली सैन्य कार्रवाई है। ईरान की मीडिया ने बताया कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में लारक द्वीप के पास विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने एक बयान में अपने कई जवानों और नागरिकों की शहादत और घायल होने की बात कही है। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने चेतावनी दी है कि इस हमले का बदला लिया जाएगा।
4: Nepal has intensified efforts to free hundreds of people trapped inside tunnels at hydropower projects, including the Trishuli 3A site, following Wednesday's flash floods. Rescuers, including experts from India and China, have been attempting to make contact but have so far received no response from inside the tunnel. Hundreds of the 2,500 people reported missing are believed to be employees of Nepal's hydropower projects. Wednesday's disaster has killed at least 794 people and more than 2,500 people are missing in Nepal. In Tibet, the official death toll is 16, with 546 reported to be missing, while rescuers are struggling to find survivors. Bodies have been recovered from all 8 affected districts of Nepal as rescuers race against time to search for those missing and rescue those stranded.
2: अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने 2027 में होने वाली पहली महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी का अधिकार श्रीलंका से वापस ले लिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका में मेजबान देश सहित 6 टीमों के साथ महिला टूर्नामेंट का पहला संस्करण आयोजित किया जाना था। रिपोर्ट में कहा गया है कि आईसीसी की अगली बोर्ड बैठक में टूर्नामेंट के आयोजन स्थल के बारे में फैसला लिया जा सकता है। मेजबानी छीने जाने से श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड को वित्तीय नुकसान होने की आशंका है।
4: And more news on cricket, Vishal. In women's cricket, India began their T20 Asia Cup 2026 campaign in dominant fashion, beating Thailand by 94 runs in Dubai last night after posting

0: 159 for the loss of 9 wickets in the stipulated 20 overs. India bowled Thailand out for just 65 in 15.3 overs. Shefali Verma was the star with the bat, smashing 64 runs and giving India a flying start after Smriti Mandhana was run out for 19. Shefali Verma was declared player of the match. And today, Bangladesh will take on Indonesia in a Group B match in Dubai. The match will begin at 8 p.m. Indian स्टैंडर्ड टाइम.
1: और रेनू, खेलों की दुनिया से स्क्वाश में भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर है. भारत के अभय सिंह ने कल मलेशिया के सेरेम्बन में आयोजित तुमाकू मुहरिज ट्रॉफी 2026 में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया. शीर्ष वरीयता प्राप्त अभय ने पीएसए चैलेंजर टूर 15 के फाइनल में हांगकांग चीन के तीसरी वरीयता प्राप्त हेनरी ल्यूंग को 3-2 से हराया. ये अभय सिंह का तीसरा तुआकू मुहरिज ट्रॉफी खिताब भी था. इससे पहले उन्होंने 2022 और 2024 में भी ये टूर्नामेंट जीता था.
0: एंड आफ्टर क्रिकेट स्क्वाश, लेट्स गो ऑन टू फुटबॉल. In football, India under 20 men's national team will begin their AFC under 20 Asian Cup China 2027 qualifiers campaign against Syria at the Dostlik Stadium in Tashkent today. Drawn in Group B alongside host Uzbekistan and Bangladesh, India entered the qualifiers with the objective of returning to the AFC under 20 Asian Cup for the first time since 2006.
1: और अब रुक करते हैं महानगरों से जुड़ी खबरों का. और सबसे पहले क्या खबरें हैं आपके पास रेनू, बेंगलुरु और हैदराबाद की बात करें तो?
0: जी, लेट्स बिगिन विद बेंगलुरु मेट्रो. Union Minister for Heavy Industries and Steel H.D. Kumaraswamy held dialogue with the Gen Z YouTubers, social media influencers and lawyers and responded to issues raised by the participants in Bengaluru. When asked about the NICE road connectivity project, Kumaraswamy raised concerns about a long pending dispute with the farmers whose land was acquired for the project. And there's another news from Bengaluru Metro. Karnataka Forest Department has issued safety guidelines for planning trekking to wildlife habitats. It has identified around 39 designated trekking routes within the forest limits where these safety guidelines will be imposed. These trails will be regulated based on ecological sensitivity, terrain, weather and wildlife movement. Measures will be taken to prevent any danger to the lives of the trekkers. And moving on to Hyderabad Metro, Telangana's Endowments Minister Konda Surekha inaugurated a special officer's office at Praja Bhavan to coordinate preparations for the Godavari Pushkaralu 2027. The minister reviewed arrangements with Endowments Department officials and said this office will act as a coordination hub between government departments, district administration, local bodies and Endowments Department for the mega religious event, which will be held from June 26th to July 7th next year. And let's move on to some metro news regarding Delhi, Mumbai and Kolkata to you, Vishal.
1: Renu, सबसे पहले दिल्ली की खबरों को ले लेते हैं. दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 MPD के कार्यान्वयन में व्यापक जन भागीदारी को सुगम बनाने के लिए डिजिटल आउटरीच उपायों की एक श्रृंखला शुरू की है. DDA ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर MPD 2047 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवालों का एक व्यापक सेट भी उपलब्ध कराया है. इनमें लैंड पूलिंग, पारगमन उन्मुख विकास और झुग्गी झोपड़ियों के पुनर्वास समेत प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी गई है. प्राधिकरण ने MPD 2047 फीडबैक सुविधा भी शुरू की है, जिसके जरिए नागरिक और हितधारक अपने सुझाव भी दे सकते हैं. राजधानी के ओखला, भलसवा और गाजीपुर लैंडफिल पर अब तक लगभग 2 करोड़ मीट्रिक टन से अधिक कचरे का प्रसंस्करण कर 100 एकड़ भूमि रिक्लेम की गई है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि वैज्ञानिक और समयबद्ध रोड मैप के माध्यम से वर्षों पुरानी समस्या को खत्म करने पर काम किया जा रहा है. श्रीमती गुप्ता ने बताया कि गाजीपुर से निकले इनर्ट मटेरियल का इस्तेमाल सड़कों के बेस और निचले इलाकों के भराव में किया जा रहा है. सरकार ने भविष्य में नए कूड़े के पहाड़ बनने से रोकने के लिए 4 नए वेस्ट टू एनर्जी प्लांट तैयार करने की दिशा में भी कदम बढ़ाए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य दिल्ली में कचरे का प्रतिदिन वैज्ञानिक प्रसंस्करण सुनिश्चित करना है. उत्तरी जिला पुलिस ने ऑपरेशन चक्र के अंतर्गत आबकारी, मादक पदार्थ और मनोप्रभावी पदार्थों, शस्त्र तथा जुआ अधिनियम के तहत कुल 154 मामले

0: मामलों में 193 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आबकारी अधिनियम मामलों में 63 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से अवैध शराब बरामद की। वहीं मादक औषधि और मनोप्रभावी पदार्थ NDPS अधिनियम मामलों में 21 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। रुक करते हैं महाराष्ट्र का, मुंबई से जुड़े समाचार। चीन में फंसे महाराष्ट्र के 69 नागरिक शनिवार देर शाम कोडारी आव्रजन केंद्र के रास्ते सीमा पार कर नेपाल में प्रवेश कर गए हैं। इन सभी के 31 अगस्त तक मुंबई पहुंचने की उम्मीद है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र ने आपदा प्रभावित महाराष्ट्र के 404 नागरिकों को पंजीकृत किया है, जिनमें से 262 पर्यटक अभी भी नेपाल या चीन में थे। अब तक 211 नागरिक सुरक्षित लौट चुके हैं। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र विदेश मंत्रालय और जिला प्रशासनों के बीच समन्वय स्थापित करके नेपाल, चीन और तिब्बत में फंसे नागरिकों का पता लगाने और उनकी सहायता करने पर काम कर रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर जिले के गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट समय सीमा निर्धारित करने और कार्यों को शीघ्र पूरा करने का भी निर्देश दिया। गोरेवाड़ा में समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को सभी आवश्यक कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। श्री फडणवीस ने कहा कि गोरेवाड़ा को विदर्भ में एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। और अब समाचार कोलकाता से। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने जिला से लेकर ब्लॉक स्तर तक के फील्ड अधिकारियों को सरकारी कार्यालयों में जनता दरबार स्थापित करने का निर्देश दिया है, ताकि जनता की शिकायतों का शीघ्र निवारण हो सके। निर्देश के अनुसार जिला मैजिस्ट्रेट, SDO, BDO, नगर आयुक्त और पुलिस अधिकारियों सहित सभी अधिकारियों को सप्ताह में 2 बार आम नागरिकों की शिकायतों का निवारण करना होगा। इसके अलावा अधिकारियों को सभी शिकायतें और उन पर की गई कार्रवाइयों को अपोनार सरकार अपोनार पाशे पोर्टल पर भी दर्ज कराना होगा। मेट्रो न्यूज के बाद अब बात मौसम की कर लेते हैं। राजधानी दिल्ली के मौसम की बात करें तो आंशिक रूप से आज बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई के मौसम की बात करें तो आसमान में आज आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। कोलकाता में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ हवाएं भी चल सकती हैं। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है।
1: एंड विशाल, यू स्पोक अबाउट द वेदर इन दिल्ली, तो थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी कि सुबह जब हम आए हैं तो इतनी प्यारी हवा चल रही थी कि ऐसा लग रहा था कि आज बाहर ही बैठ कर क्यों ना आज सवेरे किया जाए।
0: उमस भरी गर्मी अब विदा हो रही है धीरे धीरे।
1: जी, सो गुड न्यूज ऑल्सो फ्रॉम चेन्नई, बेंगलुरु एंड हैदराबाद। चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द टेम्परेचर विल बी 27 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस। Bengaluru is expected to have a generally cloudy sky and the temperature will be between 20 degrees to 30 degrees Celsius. And Hyderabad is expected to have a partly cloudy sky with possibility of rain or thunderstorm or dust storm and the temperature will be 23 degrees to 30 degrees Celsius.
0: मौसम की जानकारी के बाद अब इतिहास के पन्ने पलटते हैं और जानते हैं कि ये आज की तारीख यानी 31 अगस्त को कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं दर्ज हैं इतिहास में। और 1889 में आज ही के दिन दूसरी इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल कांग्रेस में ऊर्जा एनर्जी को मापने के लिए जूल और शक्ति के लिए वॉट को आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय मानकों के रूप में अपनाया गया था।
1: वेरी ट्रू। एंड ऑन 31st of August इन द ईयर 1897 थॉमस एडिसन रिसीव्ड अ पेटेंट फॉर द काइनेटोग्राफ। द काइनेटोग्राफ वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट अर्ली मोशन पिक्चर कैमरा।
0: और 1920 में आज ही के दिन अमरीकी शहर डेट्रॉयट में पहली बार रेडियो पर समाचार प्रसारित किए गए थे।
1: जी, एंड इन 1955 ऑन दिस डे द फर्स्ट सोलर पावर्ड कार वाज डेमोंस्ट्रेटेड बाय विलियम जी कॉब ऑफ जनरल मोटर्स। ही बिल्ट अ टाइनी 15 इंच मॉडल कॉल्ड द सन मोबाइल दैट रैन यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द सन। ऑन दिस

0: that is 31st of August in the year 1957, the Federation of Malaya, now Malaysia, gained independence from British rule.
1: और 31 अगस्त 1962 में कैरेबियाई देश टोबैगो और त्रिनिदाद ब्रिटेन से आज़ाद हुए थे। 1983 में आज ही के दिन भारत के उपग्रह इनसेट 1B को अमेरिका के स्पेस शटल चैलेंजर से प्रक्षेपित किया गया था और 1990 में आज ही के दिन एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना भी घटी थी। दशकों से विभाजित पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण हुआ था। इस एकीकरण संधि यूनिफिकेशन ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके बाद दोनों पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के एक होने का मार्ग प्रशस्त हुआ था। और 1991 में आज ही के दिन उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान ने सोवियत संघ से स्वतंत्रता की घोषणा की थी। और क्या संयोग है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी है इन्हीं दो देशों की यात्रा पर है।
0: जी बिल्कुल। एंड सो डियर लिसनर्स, दैट इज व्हाई वी शुड बी अवेयर ऑफ दीज डेट्स। यू नो, ये जो तारीख होती हैं, ये इतिहास में ये जो इवेंट्स हैं, हमें बहुत कुछ सिखाते हैं कि आज के दिन क्या क्या हुआ था। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आर लास्ट सेगमेंट ऑफ बर्थ एनिवर्सरीज, बर्थडेज एंड डेथ एनिवर्सरीज।
1: अब कुछ उन व्यक्तित्वों को याद करते हैं जिनकी आज जन्मतिथि है या फिर आज ही के दिन जिनकी पुण्यतिथि है। और इस कड़ी में सबसे पहला नाम हमारे सामने जो है, प्रसिद्ध कवियत्री और उपन्यासकार अमृता प्रीतम का है, जिन्हें 20वीं सदी की पंजाबी भाषा की सर्वश्रेष्ठ कवित्री भी माना जाता है।
0: जी।
2: ये जिंदगी एक रात थी, हम तो जागते रहे, किस्मत को नींद आ गई।
0: Oh my God, how true. And Amrita Pritam is whom we are going to talk about today. It is her birth anniversary. She was an Indian novelist, essayist and poet who wrote in Punjabi and Hindi. She is best remembered for her poem Aj Akhan Varis Shanu, that is, today I invoke Varisha, or Odes to Varisha, an elegy to the 18th century Punjabi poet, an expression of her anguish over massacres during the partition of India. And as a novelist, her most noted work was Pinjar, or The Skeleton, in 1915, which she created her memorable character Puro, an epitome of violence against women, loss of humanity and ultimate surrender to existential fate. And Vishal, aap jante hain ye jo Pinjar hai jo inhone likhi thi, iske upar movie bhi bani thi, aur humne isi movie se ek bahut प्यारा सा गाना अपने लिसनर्स के लिए चलवाना चाहेंगे।

0: अमृता प्रीतम का जो मुकाम है न केवल साहित्य की दुनिया में, वो देश में तो है ही है, इसके अलावा इनकी लोकप्रियता सीमा पार पाकिस्तान में भी उतनी ही है। और अमृता प्रीतम ने कुल मिलाकर लगभग 100 पुस्तकें लिखी जिनमें उनकी चर्चित आत्मकथा रसीदी टिकट भी शामिल है। अमृता प्रीतम उन साहित्यकारों में रही हैं जिनकी कृतियों का अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ, और जो इनकी आत्मकथा रसीदी टिकट है वो बहुत ही बेहद बहुचर्चित आत्मकथा है जिसमें अमृता प्रीतम ने अपने जीवन संघर्षों और विचारों को साझा किया है।
1: And known as the most important voice for women in Punjabi literature in 1956, she became the first woman to win the Sahitya Akademi Award for her magnum opus, A Long Poem, Sohyade, that is Messages. Later, she received the Bharatiya Gyanpeeth, one of India's highest literary awards, in 1982 for Kagaz Te Canvas, that is the paper and the canvas. And talking about more awards, the Padma Shri came her way in 1969 and finally, the Padma Vibhushan, India's second highest civilian award in 2004. And in the same year, she was honored with the India's highest literary award given by the Sahitya Akademi, that is India's Academy of Letters, the Sahitya Akademi Fellowship given to the immortals of literature for lifetime achievement.

0: आज पुण्यतिथि है प्रख्यात उर्दू कवि, उपन्यासकार और लघु कथा लेखक कश्मीरी लाल जाकिर की। इन्होंने 8 दशक तक उर्दू और हिंदी साहित्य में अपना योगदान दिया। उर्दू, हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी में 100 से अधिक किताबें लिखी। ये लगभग 3 दशक तक हरियाणा उर्दू अकादमी के निदेशक पद पर भी रहे। इनके उपन्यास कर्मावाली पर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने 100 से अधिक नाटक का मंचन किया। बाद में इसी पर दूरदर्शन ने एक धारावाहिक भी बनाया था।
1: And today is the birthday of Yuvan Shankar Raja, who is an Indian film score and soundtrack composer and singer-songwriter. He predominantly scores music for Tamil films. Being the youngest son of the legendary composer Ilaiyaraaja, he began his musical career in 1996 at the age of 15 when he composed the film score for Aravindham. Here we are going to listen to a beautiful song from the movie Ram, composed by Yuvan Shankar Raja.

0: आज ही जन्मदिन है बंगाली फिल्मों के जाने माने निर्देशक, लेखक और अभिनेता ऋतुपर्ण घोष का। चोखेर वाली, रेनकोट और अबू हुमन जैसी फिल्मों के जरिए राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता ऋतुपर्ण घोष की ख्याति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत में रही है। ऋतुपर्ण घोष उन निर्देशकों में से एक थे जिन्होंने बॉक्स ऑफिस को ध्यान में रखकर कभी फिल्में नहीं बनाई। इनकी एक अपनी अलग सोच थी, शैली थी और अपने मिजाज के अनुरूप ही इन्होंने फिल्में बनाई। रिश्तों की जटिलता और लीक से हटकर विषय जो थे इनकी फिल्मों के, वही इनकी खासियत थी। और 19 साल के फिल्मी करियर में ऋतुपर्ण घोष ने 19 फिल्मों का निर्देशन और 3 फिल्मों में अभिनय किया।
1: वेरी ट्रू विशाल। अनदर रीजन मुझे लगता है कि क्यों इनकी मूवीज इतनी अलग होती थी फ्रॉम कमर्शियल सिनेमा। आफ्टर परसुइंग अ डिग्री इन इकोनॉमिक्स, ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ क्रिएटिव आर्टिस्ट एज एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी एंड ही रिसीव्ड ए रिकॉग्निशन फॉर हिज सेकंड फीचर फिल्म 19 अप्रैल, व्हिच वन द नेशनल Film Award for Best Feature Film. Here we are listening to a beautiful song from the movie Raincoat, Mathura Nagarpati, and please enjoy the song too, listeners.

0: श्रोताओं, आज सवेरे में बस आज इतना ही। अब दीजिए अनुमति रेनु और मुझे विशाल को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं संपन्न करने की।
1: सो स्टे ट्यून फॉर कमिंग अप विद समाचार प्रभात फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर्ब डे। नमस्कार।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: UPI के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, DBT सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
3: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। PM जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। सम्मेलन से इतर संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हुई, 2500 से अधिक लोग अब भी लापता। अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में लद्दाख द्वीप पर ईरान के रॉकेट लॉन्चरों पर हमले किए, जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने अपने आरंभिक मैच में थाईलैंड को 94 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल

0: किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल राष्ट्राध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर कल बिश्केक पहुंचे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में सबसे पहले फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद करेंगे। इसके बाद वे महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क जाकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इस प्रतिमा का अनावरण श्री मोदी ने वर्ष 2015 की अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान किया था। प्रधानमंत्री आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के अनेक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इनमें आर्मेनिया, किर्गिस्तान और ईरान के राष्ट्रपति के साथ ही रूस के राष्ट्रपति के साथ होने वाली द्विपक्षीय बैठक भी शामिल है। श्री मोदी आज 6ठे विश्व नॉमेड खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। ये आयोजन मध्य एशिया की समृद्ध जीवंत सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है। प्रधानमंत्री कल 1 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन की 26वीं बैठक को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए बिश्केक से मैं विकल्प शुक्ला।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा कल संपन्न हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव की बातचीत के अलावा इस यात्रा की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां रहीं।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के मायने 11 समझौतों पर हस्ताक्षर से कहीं बढ़कर हैं। महत्वपूर्ण खनिजों और यूरेनियम की सप्लाई से लेकर व्यापार, रक्षा, डिजिटल भुगतान और शिक्षा तक, हिंदी और संस्कृत से लेकर खेल और विरासत संरक्षण तक, इस 2 दिवसीय यात्रा ने भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को एक विस्तृत और व्यापक ढांचा प्रदान किया है। व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक संबंधों का बढ़ना, $5 अरब के व्यापार लक्ष्य को 3 साल के भीतर हासिल करने का संकल्प, दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग और राज्य एवं नगर स्तर पर अधिक सहभागिता से भारत की उज्बेकिस्तान के साथ दोस्ती को एक नई गति मिलने की उम्मीद है। यात्रा का एक शानदार पल तब आया जब राष्ट्रपति शौकत मिर्जियेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान ओली दराजली दोस्तलिक पुरस्कार प्रदान किया। ये पुरस्कार भारत उज्बेकिस्तान संबंधों और सहयोग को मजबूत करने में उनके योगदान को रेखांकित करता है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद के वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था ने जिस गति को हासिल किया है वो आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। अमेरिका दौरे पर वित्त मंत्री ने शिकागो में भारतीय समुदाय से कहा कि भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के बावजूद भारत अपनी आर्थिक विकास की रफ्तार बनाए रखेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद त्रिशूली 3A सहित कई जल विद्युत परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोगों को निकालने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।
4: भारत और चीन के विशेषज्ञों सहित बचाव दल सुरंग के अंदर फंसे लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। लापता 2500 लोगों में से सैकड़ों लोग नेपाल की जल विद्युत परियोजना के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। बुधवार की इस आपदा में नेपाल में मृतकों की संख्या 794 हो गई है। तिब्बत में आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या 16 है, जबकि 546 लोग लापता है। त्रिशूली नदी में फिर से बाढ़ के कारण मध्य नेपाल में एक झूलता हुआ पुल बह गया। पुल के बह जाने से गंडकी ग्रामीण नगर पालिका 7 और 8 के निवासियों का पृथ्वी राजमार्ग से संपर्क टूट गया है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: नेपाल में भीषण बाढ़ के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी बैराज के 20 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है।
5: सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक खबरों के बीच सुपौल जिला प्रशासन ने कहा है कि कोसी नदी के जलस्तर में सामान्य गति से वृद्धि हो रही है और कोसी बैराज पूरी तरह सुरक्षित है। स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। वहीं जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण और गोपालगंज जिलों में प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। जिला संसाधन विभाग ने इंजीनियरों को लगातार तटबंधों की निगरानी के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: उड़ीसा में आज एक बार फिर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, क्योंकि उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बना मौसम राज्य को प्रभावित

0: प्रभावित कर रहा है।
1: आईएमडी ने कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश का अनुमान लगाया है। आज बरगढ़ के लिए रेड वार्निंग जारी की गई है, जबकि सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, केवंझर, सुवर्णपुर, नुआपड़ा, बलांगीर और कलाहंडी के लिए ऑरेंज वार्निंग है। आईएमडी ने चेतावनी दी है कि भारी बारिश से संवेदनशील इलाकों में स्थानीय स्तर पर बाढ़, जल जमाव और नदियों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उत्तराखंड में भी दिन के समय तेज बारिश होने की उम्मीद है। वहीं असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आज मूसलाधार बारिश हो सकती है। अमेरिका ने कल रात होर्मुज जलडमरू मध्य में लराक द्वीप पर ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। अमेरिकी सेना ने लराक द्वीप पर दो ईरानी लॉन्चरों को निशाना बनाया, क्योंकि ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सैनिकों को होर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री बारूदी सुरंगों वाले रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी करते देखा गया था। ईरान के सरकारी प्रसारक ने खबर दी है कि इस हमले में कई ईरानी सैनिक और आम नागरिक मारे गए और घायल हुए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने जॉर्डन में किंग हुसैन और अल अजराक अमरीकी ठिकानों पर हमला किया। भारतीय नौसेना आज मुंबई स्थित निस्तार श्रेणी के दूसरे गोताखोरी सहायता पोत डीएसवी निपुण को शामिल करने जा रही है।
2: विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित पोत निपुण रक्षा पोत निर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। निपुण एक विशेष पोत है जिसे गोताखोरी और गहरे समुद्र में अभियान सहायता के लिए तैयार किया गया है। यह आधुनिक गोताखोरी प्रणालियों और जलमग्न बचाव क्षमताओं से सुसज्जित है और समुद्र में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करने वाले गोताखोरों को निरंतर सहायता प्रदान करने में सक्षम है। यह पोत पनडुब्बी बचाव अभियानों में भी भारतीय नौसेना की क्षमता को बढ़ाएगा। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर देश भर के 18 NIFT परिसरों से पास होने वाले छात्रों को डिग्रियां दी जाएंगी। पश्चिम बंगाल सरकार अभूतपूर्व कदम उठाते हुए जनता की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए सरकारी कार्यालयों में जनता दरबार शुरू करने जा रही है। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने जिला और ब्लॉक स्तर के जमीनी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे प्रत्येक मंगलवार और गुरुवार को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक जनता से मिलें। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 2 सितंबर तक मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के दौरे पर रहेंगे। अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान वे शिवपुरी, कोलारस और पिछोर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पहले दिन वे अछरौनी और बामौर कला में स्वास्थ्य केंद्रों, बिजली उप स्टेशनों और एक उप तहसील कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने जीत के साथ शुरुआत की है। भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शिफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। थाईलैंड की पूरी टीम 15 ओवर और 3 गेंद में 65 रन पर सिमट गई। शिफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में कल एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार अलीपुरद्वार के रहने वाले 2 लोग मोटरसाइकिल से दार्जिलिंग घूमने आए थे। रास्ते में मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ गया और उसने सड़क पर चल रहे एक स्थानीय व्यक्ति को टक्कर मार दी। बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चलाने वाले और स्थानीय व्यक्ति को गंभीर चोटें आईं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर ज्ञानवर्धक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विशेष संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0111-3104-8101-3111-3144। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। नंबर है 9289094044। सवाल #AskAIR के साथ एक्स पर भी पोस्ट किए जा सकते हैं। ये आकाशवाणी है।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIR News हिंदी और फेसबुक पर

0: ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है विशाल शर्मा।
2: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर की खबर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। अमर उजाला लिखता है, लंबे समय तक भारत को यूरेनियम देगा उज्बेकिस्तान, 2030 तक सालाना द्विपक्षीय कारोबार $5 अरब पहुंचाने का लक्ष्य। रूस को पेट्रोल निर्यात करने वाला प्रमुख देश बना भारत, जनसत्ता की खबर है। पत्र लिखता है, भारतीय रिफाइनरी ने की पिछले 2 माह में रूस को करीब 10 लाख बैरल पेट्रोल की आपूर्ति। भारत द्वारा नेपाल को राहत सामग्री पहुंचाने से जुड़ा समाचार दैनिक जागरण ने सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, नेपाल का सबसे भरोसेमंद मददगार बना भारत, 4 विमानों से 68.5 टन राहत सामग्री पहुंची, सुरंग बचाव विशेषज्ञ और फॉरेंसिक टीमें भी युद्ध स्तर पर जुटी। नक्सल मुक्त बस्तर को अब हथियार और विस्फोटक डंप फ्री करने में जुटी फोर्स, नारायणपुर के जंगल में राइफल बैरल ग्रेनेड लॉन्चर BGL विस्फोटक का डंप जब्त, राजस्थान पत्रिका की खबर है। देहरादून की गुनगुन ने कैंसर को हराकर सौंदर्य का ताज जीता। अहमदाबाद में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की सौंदर्य प्रतियोगिता P&I इंडिया 2026 का खिताब जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र के अनुसार 2027 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व।
1: धन्यवाद विशाल। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। सम्मेलन से इतर संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हुई, 2500 से अधिक लोग अब भी लापता। अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में लद्दाख द्वीप पर ईरान के रॉकेट लॉन्चरों पर हमले किए, जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने अपने आरंभिक मैच में थाईलैंड को 94 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi arrives in Bishkek on a 2-day visit to Kyrgyzstan to attend SCO summit and meet several SCO leaders on the sidelines. Finance Minister Nirmala Sitharaman says India is likely to sustain economic growth rate of 7% or more in financial year 2026-27. Death toll in Nepal flash flood rises to 794, while more than 2,500 people still missing. US forces strike Iranian rocket launchers on Larak Island in Strait of Hormuz. Iran attacks US bases in West Asia in retaliation. And in women's cricket, India beat Thailand by 94 runs in their opening match of T20 Asia Cup 2026 in Dubai. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Bishkek on a 2-day visit to Kyrgyzstan. He was received at the airport by Kasymaliev Adilbek Elishovich, the chairman of the Cabinet of Ministers. A traditional Kyrgyz dance performance was also organized to welcome him.

0: को पहुंच रहे हैं हम।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: அரங்கிசை நிகழ்ச்சியில் இதுவரை டி சசிதர் அவர்களின் புல்லாங்குழல் இசை கேட்டோம். ஆனையாம்பட்டி ஜி வெங்கட சுப்பிரமணியம் அவர்கள் வயலின், ஏ எஸ் ரங்கநாதன் அவர்கள் மிருதங்கம், கும்பகோணம் எஸ் பாலாஜி சாய்ராம் அவர்கள் மோர்சிங். அடுத்த நிகழ்ச்சி பற்றிய அறிவிப்பு இன்னும் சில நொடிகளில் தொடரும்.
1: தோள் கொடுப்பதில் தோழனாய், கற்றுக் கொடுப்பதில் ஆசானாய், வழிகாட்டுவதில் சான்றோனாய், சிறியவர் பெரியவர் இளைஞர்கள் பெண்கள் இவர்களின் முன்னேற்றத்தில் உங்கள் அகில இந்திய வானொலி. அனைத்து இயற்கை சீற்றங்களிலும் சிதையாமல் உங்களுடன், அனைத்து இடர்பாடுகளிலும் இடைவிடாமல் உங்கள் சேவையில் அகில இந்திய வானொலி, என்றும் உங்கள் நலன்.
2: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ஃபர்ஹத் நாஸ். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल राष्ट्राध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा पर कल बिश्केक पहुंचे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में सबसे पहले फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद करेंगे। इसके बाद वे महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क जाकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के अनेक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। श्री मोदी आज 6वें विश्व नॉमेड खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री कल 1 सितम्बर को शंघाई सहयोग संगठन की 26वीं बैठक को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए बिश्केक से मैं विकल्प शुक्ला।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा कल संपन्न हो गई। श्री मोदी ने कल ताशकंद में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ बातचीत की। दोनों नेता भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमत हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद के वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था ने जिस गति को हासिल किया है वो आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। अमरीका दौरे पर वित्त मंत्री ने शिकागो में भारतीय समुदाय से कहा कि भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के बावजूद भारत अपनी आर्थिक विकास की रफ्तार बनाए रखेगा। नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद त्रिशूली 3A सहित कई जल विद्युत परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोगों को निकालने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: भारत और चीन के विशेषज्ञों सहित बचाव दल सुरंग के अंदर फंसे लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। बुधवार की इस आपदा में नेपाल में मृतकों की संख्या 794 हो गई है। तिब्बत में आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या 16 है, जबकि 546 लोग लापता हैं। त्रिशूली नदी में फिर से बाढ़ के कारण मध्य नेपाल में एक झूलता हुआ पुल बह गया। पुल के बह जाने से गंडकी ग्रामीण नगर पालिका 7 और 8 के निवासियों का पृथ्वी राजमार्ग से संपर्क टूट गया है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: नेपाल में आई भीषण बाढ़ के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी बैराज के 20 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है। ओडिशा में आज एक बार फिर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, क्योंकि उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बना मौसम राज्य को प्रभावित कर रहा है। मौसम विभाग ने आज कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है, जिसके चलते बरगढ़ के लिए रेड अलर्ट और पश्चिमी ओडिशा के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उत्तराखंड में भी दिन के समय तेज बारिश होने की उम्मीद है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। अमेरिका ने कल रात होर्मुज जलडमरू मध्य में लराक द्वीप पर ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। अमेरिकी सेना ने लराक द्वीप पर 2 ईरानी लॉन्चरों को निशाना बनाया, क्योंकि ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सैनिकों को होर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री बारूदी सुरंगों

0: floods, raising concerns of renewed inundation in vulnerable areas. Nepal has intensified efforts to free hundreds of people trapped inside tunnels at hydropower projects, including the Trishuli 3A site, following Wednesday's flash floods. Rescuers, including experts from India and China, have been attempting to make contact but have so far received no response from inside the tunnel. Hundreds of the 2,500 people reported missing are believed to be employees of Nepal's hydropower projects. Wednesday's disaster has killed at least 794 people, and more than 2,500 people are missing in Nepal. And in women's cricket, India began the T20 Asia Cup 2026 campaign in dominant fashion, beating Thailand by 94 runs at the Dubai International Stadium last night. Batting first, India scored 159 runs for the loss of 9 wickets in 20 overs. In reply, Thailand were bowled out for just 65 runs in 15.3 overs. And in football, India under-20 men's national team will begin their AFC under-20 Asian Cup China 2027 qualifiers against Syria at the Dostlik Stadium in Tashkent today. And that is the end of this news bulletin.
1: Namaskar, Akashwani se Vishv Darpan ke saath main Farhat Naz. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। सम्मेलन से इतर संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हुई, 2,500 से अधिक लोग अब भी लापता। अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलडमरु मध्य में लड़ाक द्वीप पर ईरान के रॉकेट लॉन्चरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। मलेशिया के सेरेम्बन में भारत के अभिज सिंह ने तुआंकू मोहरीज स्क्वाश ट्रॉफी जीती। और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने अपने आरंभिक मैच में थाईलैंड को 94 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल राष्ट्र अध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर कल बिश्केक पहुंचे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में सबसे पहले फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद करेंगे। इसके बाद वे महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क जाकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इस प्रतिमा का अनावरण श्री मोदी ने वर्ष 2015 की अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान किया था। प्रधानमंत्री आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के अनेक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इनमें आर्मेनिया, किर्गिस्तान और ईरान के राष्ट्रपति के साथ ही रूस के राष्ट्रपति के साथ होने वाली द्विपक्षीय बैठक भी शामिल है। श्री मोदी आज 6ठे विश्व नॉमेड खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। ये आयोजन मध्य एशिया की समृद्ध जीवंत सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है। प्रधानमंत्री कल 1 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन की 26वीं बैठक को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए बिश्केक से मैं विकल्प शुक्ला।
1: इससे पहले श्री मोदी ने कहा कि वे सुरक्षा, संपर्क और अवसर पर आधारित इस क्षेत्र के लिए भारत के विजन को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत SCO सदस्यों के साथ मिलकर आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ मुक्त क्षेत्र बनाने की दिशा में काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा कल संपन्न हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव की बातचीत के अलावा इस यात्रा की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां रहीं।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के मायने 11 समझौतों पर हस्ताक्षर से कहीं बढ़कर हैं। महत्वपूर्ण खनिजों और यूरेनियम की सप्लाई से लेकर व्यापार, रक्षा, डिजिटल भुगतान और शिक्षा तक, हिंदी और संस्कृत से लेकर खेल और विरासत संरक्षण तक, इस 2 दिवसीय यात्रा ने भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को एक विस्तृत और व्यापक ढांचा प्रदान किया है। व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक संबंधों का बढ़ना, $5 अरब के व्यापार लक्ष्य को 3 साल के भीतर हासिल करने का संकल्प, दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग और राज्य एवं नगर स्तर पर अधिक सहभागिता से भारत की उज्बेकिस्तान के साथ दोस्ती को एक नई गति मिलने की उम्मीद है। यात्रा का एक शानदार पल तब आया जब राष्ट्रपति शौकत मिर्जियेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान ओली दराजली दोस्तलिक पुरस्कार प्रदान किया। ये पुरस्कार भारत उज्बेकिस्तान संबंधों और सहयोग को मजबूत करने में उनके योगदान को रेखांकित करता है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार।

0: ताशकंद।
1: नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद त्रिशूली 3A सहित कई जल विद्युत परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोगों को निकालने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।
2: भारत और चीन के विशेषज्ञों सहित बचाव दल सुरंग के अंदर फंसे लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। लापता 2500 लोगों में से सैकड़ों लोग नेपाल की जल विद्युत परियोजना के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। बुधवार की इस आपदा में नेपाल में मृतकों की संख्या 794 हो गई है। तिब्बत में आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या 16 है, जबकि 546 लोग लापता है। त्रिशूली नदी में फिर से बाढ़ के कारण मध्य नेपाल में एक झूलता हुआ पुल बह गया। पुल के बह जाने से गंडकी ग्रामीण नगर पालिका 7 और 8 के निवासियों का पृथ्वी राजमार्ग से संपर्क टूट गया है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने कल रात होर्मुज जलडमरू मध्य में लराक द्वीप पर ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। अमेरिकी सेना ने लराक द्वीप पर 2 ईरानी लॉन्चरों को निशाना बनाया, क्योंकि ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सैनिकों को होर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री बारूदी सुरंगों वाले रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी करते हुए देखा गया था।
3: ईरान के सरकारी प्रसारक ने खबर दी है कि इस हमले में कई ईरानी सैनिक और आम नागरिक मारे गए और घायल हुए। जुलाई के आखिर में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जल डमरू मध्य से जुड़े 2 सप्ताह के अमरीकी सैन्य अभियान को रोकने के बाद लराक पर ये हमला हुआ। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने जॉर्डन में किंग हुसैन और अल अजराक अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। ये घटनाक्रम टकराव में तेजी को दर्शाता है, जो जून से काफी हद तक शांत बना हुआ था। विश्व दर्पण के लिए विशाल शर्मा।
1: भारतीय नौसेना आज मुंबई स्थित निस्तार श्रेणी के दूसरे गोताखोरी सहायता पोत DSEV निपुण को शामिल करने जा रही है।
4: विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित पोत निपुण रक्षा पोत निर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। निपुण एक विशेष पोत है, जिसे गोताखोरी और गहरे समुद्र में अभियान सहायता के लिए तैयार किया गया है। यह आधुनिक गोताखोरी प्रणालियों और जलमग्न बचाव क्षमताओं से सुसज्जित है और समुद्र में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करने वाले गोताखोरों को निरंतर सहायता प्रदान करने में सक्षम है। यह पोत पनडुब्बी बचाव अभियानों में भी भारतीय नौसेना की क्षमता को बढ़ाएगा। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: और अब खेल समाचार।
5: दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने जीत के साथ शानदार शुरुआत की है। भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। थाईलैंड की पूरी टीम 15 ओवर और 3 गेंद में 65 रन पर सिमट गई। शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उधर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने श्रीलंका से 2027 में होने वाली पहली महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी छीन ली है। श्रीलंका क्रिकेट प्रशासन में सरकार के हस्तक्षेप के कारण ये फैसला किया गया है। भारत के अभय सिंह ने तुआंकु मोहरीज स्क्वाश ट्रॉफी जीत ली है। मलेशिया के सेरेम्बन में अभय ने PSA चैलेंजर टूर 15 इवेंट के फाइनल में हांगकांग के हेनरी लियोंग को 3-2 से हराया। हॉकी में जर्मनी ने पुरुष विश्व कप जीत लिया है। बेल्जियम में फाइनल में जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हराया। जर्मनी का ये चौथा पुरुष विश्व कप खिताब है। और फुटबॉल में भारत की U20 पुरुष राष्ट्रीय टीम आज ताशकंद के दोस्तलिक स्टेडियम में सीरिया के खिलाफ AFC U20 एशियन कप चीन 2027 क्वालिफायर अभियान की शुरुआत करेगी। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: सिक्किम के निशानेबाजों ने 13वीं उत्तर पूर्व जोन निशानेबाजी चैंपियनशिप में असाधारण प्रदर्शन किया।
6: नॉर्थ ईस्ट जोन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 का समापन कल गुवाहाटी असम में हुआ। सिक्किम के लक्ष्मण अधिकारी ने इस चैंपियनशिप में मास्टर पुरुष 10 मीटर एयर पिस्तौल व्यक्तिगत वर्ग में ब्रोंज पदक जीता। ये नॉर्थ ईस्ट जोन पर सिक्किम का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी निशानेबाज द्वारा जीता गया पहला पदक है। सिक्किम के 2 निशानेबाजों अनु छेत्री और छिरिंग यांगदेन भूटिया ने 13वीं नॉर्थ ईस्ट जोनल शूटिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 69वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप 2026 के लिए क्वालिफाई किया है। अनु छेत्री ने 10 मीटर एयर पिस्तौल स्पर्धा में क्वालिफाई किया, जबकि छिरिंग यांगदेन भूटिया का चयन 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा के लिए हुआ है। मोइनक चटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर

0: 7% या उससे अधिक रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि कोविड 19 महामारी के बाद के वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था ने जिस गति को हासिल किया है वो आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। अमरीका दौरे पर वित्त मंत्री ने शिकागो में भारतीय समुदाय से कहा कि भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के बावजूद भारत अपनी आर्थिक विकास की रफ्तार बनाए रखेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। सम्मेलन से इतर संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हुई, 2500 से अधिक लोग अब भी लापता। अमरीकी सेना ने होर्मुज़ जलडमरू मध्य में लद्दाख द्वीप पर ईरान के रॉकेट लॉन्चरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी ठिकानों को निशाना बनाया। मलेशिया के सेरेम्बम में भारत के अभिज सिंह ने तुआंकू मोहरीज स्क्वाश ट्रॉफी जीती। और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने अपने आरंभिक मैच में थाईलैंड को 94 रन से हराया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good morning. This is Akashwani. I am Anuja Kumar with the World News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Bishkek on a two-day visit to Kyrgyzstan to attend SCO summit and meet several SCO leaders on the sidelines. Death toll in Nepal flash flood rises to 794, while more than 2,500 people still missing. US forces strike Iranian rocket launchers on Ladakh Island in Strait of Hormuz. Iran attacks US bases in West Asia in retaliation. In squash, India's Abhay Singh wins men's singles title at Tuanku Muriz Trophy 2026 in Seremban, Malaysia. And in women's cricket, India beat Thailand by 94 runs in their opening match of T20 Asia Cup 2026 in Dubai. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Bishkek on a two-day visit to Kyrgyzstan. He was received at the airport by Kasim Aliyev Adilbek Elishinovich, Chairman of the Cabinet of Ministers. A traditional Kyrgyz dance performance was also organized to welcome him.

0: நேயர்கள் ரசித்த சுகுமான ராகங்கள் நிகழ்ச்சி நிறைவு பெற்றது. மீண்டும் இணைவும் 11:10 திரைகானம் நிகழ்ச்சியில். இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள். டெல்லியிலிருந்து
1: நமஸ்கார். ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே பிரியங்கா அரோரா. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल किर्गिजिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे. वे कल राष्ट्राध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे. श्री मोदी किर्गिजिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर कल राजधानी बिश्केक पहुंचे.
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में सबसे पहले फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद करेंगे. इसके बाद वे महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क जाकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे. प्रधानमंत्री आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के अनेक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे. श्री मोदी आज 6ठे विश्व नॉमेड खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे. प्रधानमंत्री कल 1 सितम्बर को शंघाई सहयोग संगठन की 26वीं बैठक को संबोधित करेंगे. आकाशवाणी समाचार के लिए बिश्केक से मैं विकल्प शुक्ला.
1: इससे पहले उज़्बेकिस्तान की 2 दिन की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कल ताशकंद में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ बातचीत की. दोनों नेता भारत उज़्बेकिस्तान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमत हुए. सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस यात्रा ने दिखाया है कि उज़्बेकिस्तान में भारत की संस्कृति, इतिहास, भाषाओं और विचारों के प्रति लोगों का लगाव लगातार बढ़ रहा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी 3M से भारत में अनुसंधान और विकास, उन्नत विनिर्माण और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया है. उन्होंने कहा कि भारत तेजी से प्रौद्योगिकी, नवाचार और वैश्विक विनिर्माण के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहा है और वैश्विक कंपनियों के लिए यहां व्यापक अवसर उपलब्ध हैं. दोनों पक्षों के बीच हुई चर्चा का मुख्य विषय भारत में 3M की भागीदारी को और मजबूत बनाना था. नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद त्रिशूली 3A सहित कई पनबिजली परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोगों को निकालने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं. एक रिपोर्ट.
3: भारत और चीन के विशेषज्ञों सहित बचाव दल सुरंग के अंदर फंसे लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं. बुधवार की इस आपदा में नेपाल में मृतकों की संख्या 794 हो गई है. तिब्बत में आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या 16 है, जबकि 546 लोग लापता हैं. त्रिशूली नदी में फिर से बाढ़ के कारण मध्य नेपाल में एक झूलता हुआ पुल बह गया. पुल के बह जाने से गंडकी ग्रामीण नगर पालिका 7 और 8 के निवासियों का पृथ्वी राजमार्ग से संपर्क टूट गया है. समाचार कक्ष से कृष्णकांत.
1: इस बीच नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है. नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी बैराज के 20 गेट खोल दिए गए हैं. हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगी. इस अवसर पर देश भर के 18 NIFT परिसरों से पास होने वाले विद्यार्थियों को डिग्रियां दी जाएंगी. अमरीका ने कल रात होर्मूज जलडमरू मध्य में लराक द्वीप पर ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया. अमरीकी सेना ने लराक द्वीप पर 2 ईरानी लॉन्चरों को निशाना बनाया. ईरान के सरकारी प्रसारक के अनुसार इस हमले में ईरान के कई सैनिक और आम नागरिक मारे गए. ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी. ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने जॉर्डन में किंग हुसैन और अल अजराक अमरीकी ठिकानों पर हमला किया. गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉ प्रणब मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया है. उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति एक बेहतरीन प्रशासक और विद्वान थे. उनकी अमिट विरासत नए नेताओं के लिए प्रेरणा बनी रहेगी. दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में ग्रुप बी में आज बांग्लादेश और इंडोनेशिया आमने सामने होंगे. ये मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा. भारत ने कल थाईलैंड को

93 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान में आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें रूस, ईरान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठकें शामिल हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान की अपनी दो दिन की यात्रा के पहले दिन आज राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया। इस अवसर पर योग, मानस अकादमी सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत के साथ मिलकर कार्य करने वाले चार प्रतिनिधिमंडल मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने बिश्केक स्थित

0: दल मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने बिश्केक स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। प्रधानमंत्री कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे पहले उज्बेकिस्तान की दो दिन की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कल ताशकंद में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ बातचीत की। दोनों नेता भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमत हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी 3M से भारत में अनुसंधान और विकास, उन्नत विनिर्माण और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया है। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वित्त मंत्री ने अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में आयोजित G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर की बैठक से इतर 3M के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम ब्राउन के साथ वार्ता की। भारतीय नौसेना ने आज मुंबई के नौसेना गोदी में निस्तार श्रेणी के दूसरे डाइविंग सपोर्ट पोत INS निपुण को बेड़े में शामिल किया। समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने कहा कि INS निपुण पानी के नीचे चलाए जाने वाले विशेष अभियानों में महत्वपूर्ण साबित होगा।
1: आज हम तेजी से बदलती रणनीतिक परिस्थितियों के दौर से गुजर रहे हैं। समुद्री क्षेत्र में चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। भविष्य के खतरों का सटीक अनुमान हमेशा संभव नहीं है, लेकिन संभावित खतरों के लिए तैयार रहना और उनसे प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमता विकसित करना आवश्यक है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि खतरा कहीं भी और कभी भी सामने आए, हम उसका समय पर प्रभावी ढंग से सामना करें।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि ये लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। फैशन उद्योग में महिलाओं की बढ़ती भूमिका पर राष्ट्रपति ने कहा कि समारोह में शामिल करीब 4000 विद्यार्थियों में लगभग 85% महिलाएं हैं। नेपाल में भीषण बाढ़ और जल भराव वाले क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी स्थित बीरपुर बैराज के 56 में से 25 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है। भारत और ब्राजील ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $30 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। दोनों देशों ने दवा, रसायन, इंजीनियरिंग उत्पाद, मशीनरी और अन्य रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाकर अधिक विविध, संतुलित और सतत व्यापारिक साझेदारी विकसित करने पर सहमति व्यक्त की। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में भारत ब्राजील व्यापार निगरानी तंत्र की 8वीं बैठक हुई। शेयर बाजार आज दोपहर के सत्र में गिरावट के साथ काम कर रहा था। निफ्टी 110 अंक गिरकर 24,066 पर, जबकि सेंसेक्स 271 अंक गिरकर 76,993 पर काम कर रहा था। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में एक बड़े उलटफेर में सर्बिया के नोवाक जोकोविच पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। उन्हें अर्जेंटीना के मारियानो नावोन से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: क्वालिफाइंग अभियान में आज सीरिया से मुकाबला करेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान में आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें रूस, ईरान और किर्गिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठकें शामिल है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के पहले दिन आज राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिश्केक में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ आत्मीय संवाद किया। प्रधानमंत्री ने भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच मैत्री संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय की ऊर्जा, उत्साह और महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान श्री मोदी ने आज बिश्केक स्थित महात्मा गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। यह श्रद्धांजलि महात्मा गांधी के विचारों की प्रासंगिकता और उनकी सार्वभौमिक स्वीकारिता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: इससे पहले उज्बेकिस्तान की दो दिन की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कल ताशकंद में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ बातचीत की। दोनों नेता भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उज्बेकिस्तान में भारत की संस्कृति, इतिहास, भाषाओं और विचारों के प्रति लोगों का लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने तमिल भाषा और संस्कृति में बढ़ती रुचि के साथ तिरुक्कुरल के महत्व का भी जिक्र किया।
2: सैकड़ों साल पहले तमिल भाषा में एक तिरुक्कुरल जो लिखा गया है, आज भी जीवन के सब क्षेत्रों में वो बहुत ही प्रेरणा देने वाला और अध्यात्म भी है, फिलोसॉफी है, व्यवहारु ज्ञान भी है। जब आप 80 साल मना रहे हैं तो क्या ये कल्पना कर सकते हैं कि उज्बेक में तिरुकुरल का यहाँ के लैंग्वेज में अनुवाद हो? सचमुच में वो यहाँ आपके ज्ञान के अंदर संवर्धन करेगा।
0: सरकार ने देश में चिप विनिर्माण तंत्र को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के व्यय के साथ सेमिकॉन कार्यक्रम के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आगामी वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में भारत की हिस्सेदारी करीब 10% हो सकती है। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में बड़ी भूमिका निभाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्री वैष्णव ने सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के दूसरे चरण के सभी 6 स्तंभों की अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि सरकार का जोर भारत को वेफर निर्माण से लेकर चिप उत्पादन तक वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने पर है।
3: वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग को भरोसा है कि आने वाले दशकों में भारत बड़े निवेश के लिए एक प्रमुख केंद्र बनेगा। इसका प्रमाण हमें सेमिकॉन 1 के तहत मंजूर की गई परियोजनाओं से मिलता है। इनमें कई इकाइयों ने भूमि पूजन के केवल 13 महीने के भीतर व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया है। इसी तेज गति ने वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग का भारत पर भरोसा और मजबूत किया है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@airnews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि ये लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि फैशन और वस्त्र प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं।
5: फैशन टेक्नोलॉजी भी ऐसा क्षेत्र है जिसमें विश्व स्तर पर भारत की भूमिका बढ़ाने को अपार संभावना है। आपको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। इस प्रयास में आप स्मरण रखें कि आपकी सोच वैश्विक हो, लेकिन आपकी जड़ें अपनी मिट्टी

0: विशिष्टता और जीवन मूल्य से जुड़े। इस तरह आप ना केवल सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनेंगे बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में भी अपना योगदान दे सकेंगे।
1: वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प में युवाओं से योगदान देने का आह्वान करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को रोजगार देने वाला बनने का प्रयास करना चाहिए।
0: आप ऐसे समय में फैशन टेक्नोलॉजी के विभिन्न विधाओं के स्नातक बन रहे हैं जो भारत आत्मनिर्भरता के अनेक आयामों पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे देश पहले की तुलना में कहीं अधिक आत्मविश्वास के साथ विश्व पटल पर अपनी भूमिका को विस्तार दे रहे हैं। मुझे बताया गया है कि 20 साल पहले महिलाओं की संख्या केवल 20% था। अभी 4000 करीब जो बच्चे यहाँ उपस्थित थे उनमें से 85% महिलाएं हैं।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी 3M से भारत में अनुसंधान और विकास, उन्नत विनिर्माण और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से प्रौद्योगिकी, नवाचार और वैश्विक विनिर्माण के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहा है और वैश्विक कंपनियों के लिए यहाँ व्यापक अवसर हैं। एक रिपोर्ट।
2: वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वित्त मंत्री ने अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में आयोजित G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से इतर 3M के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम ब्राउन के साथ वार्ता की। बैठक में इस बात पर विचार किया गया कि भारत अब केवल बड़े उपभोक्ता बाजार तक सीमित नहीं है बल्कि उन्नत विनिर्माण, प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार आधारित उत्पादन का वैश्विक मंच बनता जा रहा है। श्रीमती सीतारामन ने 3M से स्थानीयकरण बढ़ाने, अनुसंधान और विकास गतिविधियों का विस्तार करने तथा नई प्रौद्योगिकियों के विकास में अधिक निवेश करने का आग्रह किया। 3M के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम ब्राउन ने भारत में उपलब्ध विशाल प्रतिभा संसाधन की सराहना की। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: भारतीय नौसेना ने आज मुंबई के नौसेना गोदी में निस्तार श्रेणी के दूसरे डाइविंग सपोर्ट पोत INS निपुण को अपने बेड़े में शामिल किया। समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने कहा कि INS निपुण पानी के नीचे चलाए जाने वाले विशेष अभियानों में महत्वपूर्ण साबित होगा।
2: आज हम तेजी से बदलती रणनीतिक परिस्थितियों के दौर से गुजर रहे हैं। समुद्री क्षेत्र में चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। भविष्य के खतरों का सटीक अनुमान हमेशा संभव नहीं है, लेकिन संभावित खतरों के लिए तैयार रहना और उनसे प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमता विकसित करना आवश्यक है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि खतरा कहीं भी और कभी भी सामने आए, हम उसका समय पर प्रभावी ढंग से सामना करें।
1: इसे विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के बाद मसौदा जारी कर दिया है। सूची के अनुसार 97 लाख से अधिक मतदाता इसमें शामिल हैं, जबकि 47 लाख से अधिक मतदाताओं का नाम सूची से हटाया गया है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया है कि जिन मतदाताओं के नाम सूची में नहीं है वे 30 सितम्बर तक Form 6 और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने दावे दाखिल कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची नवम्बर में जारी की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि इस वर्ष दिसंबर में बांग्लादेश के साथ समाप्त हो रहे 30 वर्षीय गंगा पद्मा जल बंटवारे समझौते के नवीनीकरण से पहले राज्य के हितों की तरफ ध्यान दिया जाए। राज्य सरकार ने नए समझौते में पर्यावरण संरक्षण और भविष्य की जल आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने की मांग की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर News on AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है। 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। सभी 8 प्रभावित जिलों में राहत और बचाव अभियान तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
4: नेपाल में 5 से अधिक जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़े ढांचों में 900 से अधिक श्रमिकों के फंसे होने की आशंका है। भारत और अन्य देशों के विशेषज्ञों के सहयोग से बचाव दल त्रिशूली 3A सहित कई जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़ी सुरंगों में तलाश की जा रही है। तिब्बत में मृतकों की संख्या 16 हो गई है, जबकि 5

0: 146 लोग लापता है। भारतीय बचाव दल चिली में और लांगटाक में पनबिजली संयंत्रों पर नेपाल की सेना के साथ मिलकर काम कर रहा है। नेपाली सेना के प्रवक्ता राजा राम बस्नेट ने बताया कि अत्यधिक मलबे के कारण सुरंगों तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। लगभग 21,000 सुरक्षाकर्मी राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: इस बीच नेपाल में भीषण बाढ़ और जल ग्रहण क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी स्थित बीरपुर बैराज के 56 में से 25 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है। मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर बाढ़ की स्थिति ने हालात को जटिल बना दिया है। एक रिपोर्ट।
2: पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। शहडोल में बाणसागर डैम में पानी बढ़ने से कुछ समय के लिए डैम के गेट खोलने पड़े। गोरगी बांध फूटने से कई इलाकों में पानी भर गया, जबकि तेज बहाव ने रामघाट के बड़े पुल को भी नुकसान पहुंचाया। मौसम विभाग ने आज रीवा, मऊगंज, मेहर, सीधी, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला, सिवनी और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: इस बीच मौसम विभाग ने आज ओडिशा और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। कल तक बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और सभी पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान है। फुटबॉल में भारत की अंडर 20 टीम आज ताशकंद में AFC अंडर 20 एशियन कप चीन 2027 क्वालिफायर अभियान की शुरुआत सीरिया के साथ मुकाबले से करेगी। मेजबान उज्बेकिस्तान और बांग्लादेश के साथ ग्रुप बी में शामिल भारतीय टीम 2006 के बाद पहली बार AFC अंडर 20 एशियन कप में वापसी के उद्देश्य से क्वालिफायर में उतर रही है। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट के ग्रुप बी मुकाबले में आज बांग्लादेश का सामना इंडोनेशिया से होगा। दुबई में ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में एक बड़े उलटफेर में सर्बिया के नोवाक जोकोविच पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। उन्हें अर्जेंटीना के मारियानो नावोन से हार का सामना करना पड़ा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 0112331 0481 और 2371717। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। सरकार ने सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के दूसरे चरण के सभी 6 स्तंभों को अधिसूचित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निफ्ट के विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। भारतीय नौसेना ने गोताखोरी और गहरे पानी के नीचे के अभियानों में सहायता के लिए INS निपुण को अपने बेड़े में शामिल किया। नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान तेज। मृतकों की संख्या बढ़कर 903 हुई। 4,000 से अधिक लोग अब भी लापता। और फुटबॉल में भारत आज ताशकंद में AFC अंडर 20 एशियाई कप क्वालिफाइंग अभियान में सीरिया से मुकाबला करेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: நேரம் 2:30. ஆகாஷ்வாணி சென்னை வானொலி 100.1 FM கோல்ட்.

0: ఇవండి మరి కంటి పరిరక్షణ విషయాలు. రేపు ఉదయం 11:30 ఇది 100.1 ఎఫ్ఎం గోల్డ్లో మల్లెపూదండ కార్యక్రమంలో వ్యాఖ్యానంతో కూడిన చిత్ర సంగీతం ప్రసారమవుతుంది. మరి ఈనాటి ఈ మధురం మధురం ఈ సమయం కార్యక్రమం ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం. మరికొద్ది క్షణాల్లో వార్తలు ఢిల్లీ నుండి రిలే.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता. बिश्केक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादरो जापरोव के बीच बैठक जारी है. दो दिन के किर्गिस्तान दौरे पर आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन से अलग ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन से द्विपक्षीय बैठक की. दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की. उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की. प्रधानमंत्री ने भारत के रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए. श्री मोदी ने क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा वाणिज्य की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर भी बल दिया. इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशियान से मुलाकात की. दोनों नेताओं ने रक्षा, आर्थिक, फार्मा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की. उन्होंने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित क्षेत्रीय तथा वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया. प्रधानमंत्री कल बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे. सरकार ने देश में चिप विनिर्माण तंत्र को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के व्यय के साथ सेमिकॉन कार्यक्रम के दूसरे चरण को अधिसूचित किया. नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आगामी वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में भारत की हिस्सेदारी करीब 10% हो सकती है. श्री वैष्णव ने सेमिकॉन

बताया कार्यक्रम के दूसरे चरण के सभी 6 क्षेत्रों की अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि सरकार का जोर भारत को वेफर निर्माण से लेकर चिप उत्पादन तक वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने पर है। भारतीय नौसेना ने आज मुंबई के नौसेना गोदी में निस्तार श्रेणी के दूसरे डाइविंग सपोर्ट पोत INS निपुण को अपने बेड़े में शामिल किया। समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने कहा कि INS निपुण पानी के नीचे चलाए जाने वाले विशेष अभियानों में महत्वपूर्ण साबित होगा। इसे विशाखापट्टनम स्थित हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है बल्कि लाखों लोगों को

विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है बल्कि लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि वर्ष 2008 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने निफ्ट के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया था। उसके 18 वर्ष बाद एक बार फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छात्रों का मार्गदर्शन किया। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए चौथा भारत जर्मनी पर्यावरण मंच कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा जर्मनी के पर्यावरण प्रकृति संरक्षण जलवायु संरक्षण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टन श्नाइडर इस मंच की सह अध्यक्षता करेंगे। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के बाद मसौदा सूची जारी कर दी है। सूची के अनुसार 97 लाख से अधिक मतदाता इसमें शामिल हैं, जबकि 47 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया है कि जिन मतदाताओं के नाम सूची में नहीं है वे 30 सितम्बर तक फॉर्म 6 और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने दावे दाखिल कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची नवंबर में जारी की जाएगी। AFC अंडर 20 फुटबॉल एशियन कप 2027 के क्वालिफायर में आज भारतीय अंडर 20 पुरुष टीम का मुकाबला सीरिया से होगा। ये मैच ताशकंद में भारतीय समय के अनुसार शाम 4:30 बजे से होगा। भारत मेजबान उज्बेकिस्तान तथा बांग्लादेश के साथ ग्रुप बी में है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: SI Institute of Insolvency Professionals, a subsidiary of the Institute of Company Secretaries of India, and an insolvency professional agency registered with the Insolvency and Bankruptcy Board of India, has invited online applications for one post of Managing Director on contractual basis at its corporate office in Noida. The post carries a consolidated annual compensation of approximately 24 lakhs to 30 lakhs with a maximum age of 55 years as on 1st August 2026. Relaxable up to 60 years by the governing board of ICSI IIP. Detailed qualifications, experience and application requirements are available on the official website. The last date for online applications is 5th September. Applications are to be submitted only through electronic mode. Kindly go onto the website for details, that is at www.icsiip.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। कर्मचारी चयन आयोग के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में लेखाकार के 6 संवर्ग बाह्य पदों को प्रारंभ में 1 वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाना है। इस अवधि को वार्षिक आधार पर अधिकतम 3 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। अधिक जानकारी और नियम तथा शर्तों को देखने के लिए देखिए कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट www.ssc.gov.in। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत रामपुर रजा लाइब्रेरी आमंत्रित कर रही है प्रवर श्रेणी लिपिक के 1 पद को भरने के लिए आवेदन। शैक्षिक योग्यता, अनुभव, आरक्षण, वेतनमान आदि की विस्तृत जानकारी के लिए आप देख सकते हैं 22 अगस्त 2026 से 28 अगस्त 2026 का रोजगार समाचार पत्र। दयालबाग शैक्षणिक संस्थान आगरा आमंत्रित कर रहा है शिक्षण और गैर शिक्षण पदों के लिए आवेदन। विस्तृत विज्ञापन के लिए देखिए रोजगार समाचार पत्र 22 से 28 अगस्त 2026 का रोजगार समाचार पत्र अथवा दयालबाग शैक्षणिक संस्थान की वेबसाइट www.dei.ac.in। कर्मचारी चयन आयोग के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में लेखाधिकारी के 4 गैर काडर पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर 3 वर्ष के लिए भरा जाना है। अधिक जानकारी के लिए देखिए कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट www.ssc.gov.in। आयुध निर्माणी कटनी यंत्र इंडिया लिमिटेड की इकाई रक्षा क्षेत्र का सार्वजनिक उपक्रम संविदा के आधार पर श्रम कल्याण अधिकारी के 1 पद के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के साथ भेज सकते हैं इस पते पर कार्यकारी निदेशक आयुध निर्माणी कटनी जिला कटनी मध्य प्रदेश पिन कोड है 483504। पद के लिए आवश्यक योग्यता नियम और शर्तों को देखने के लिए कृपया देखें वेबसाइट ddpdoo.gov.in। वेबसाइट का पता फिर से सुन लीजिए ddpdoo.gov.in। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में 1 वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी का पद उपलब्ध है। रिक्तियां 4 हैं और इन पदों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर उम्मीदवारों को आमंत्रित किया जा रहा है। प्रतिनियुक्ति की शर्तों और नियमों तथा पात्रता मानदंड के लिए देखिए एनडीएमए की वेबसाइट ndma.gov.in। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर में कार्बनिक रसायन विज्ञान के युवा पेशेवर को नियुक्त करने हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। विस्तृत

0: जानकारी के लिए देखें संस्थान की वेबसाइट nsi.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, न्यूज मैगजीन प्रोग्राम परिक्रमा के नए अंक में आपका स्वागत है। रोजाना की तरह आज भी आपको लेकर चलेंगे देश भर की परिक्रमा पर और आपको सुनाएंगे वो कहानियां जो खबर नहीं बनती। साथ ही बात करेंगे साहित्य जगत के एक अमर हस्ताक्षर की, जिन्होंने अपनी कलम से भारतीय इतिहास के सबसे गहरे दर्द में से एक को पन्नों पर उतारा। आज के अंक में मैं हूँ सरफिरोजी और मेरे साथ हैं अभिषेक मुखोपाध्याय। नमस्कार अभिषेक।
2: Hello, Sarfirozi. Hello and a very warm welcome to all those tuned into the news magazine program Parikrama on 100.1 FM. I am Abhishek Mukhopadhyay and with me today is, of course, my co-host Sarfirozi. Well, listeners, is known for his major romantic lead roles, which were massive box office hits. Secondly, he has proven that he could play complex, diverse characters beyond romantic comedies and dramas. He earned critical acclaim and a Golden Globe Award for his role as Billy Flynn in the musical film Chicago. And thirdly, he is known for his global humanitarian activism. He has been a passionate advocate for human rights in Tibet for decades and co-founded the Tibet Fund. He also supports various awareness campaigns, including homelessness around the world. Yes, is none other than the American actor and humanitarian Richard Gere. And today we celebrate his birthday, and we shall talk about him later in a program. But first, we start off with the news headlines at this hour. Prime Minister Narendra Modi meets Armenian counterpart Nikol Pashinyan and President of Iran Masoud Pezeshkian on the sidelines of the SCO summit in Bishkek.
1: सरकार ने 1,27,000 करोड़ रुपए के व्यय के साथ सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के दूसरे चरण के सभी 6 स्तंभों को अधिसूचित किया।
2: President Draupadi Murmu calls upon NIFT students to adopt global outlook while remaining rooted in the country's rich cultural heritage.
1: भारतीय नौसेना ने गोताखोरी और गहरे पानी के नीचे के अभियानों में सहायता के लिए INS निपुण को बेड़े में शामिल किया।
2: Relief and rescue operations intensify in Nepal after deadly flash floods. Death toll rises to 903 and over 4,000 people still missing.
1: और फुटबॉल में भारत आज ताशकंद में AFC Under 20 एशियाई कप क्वालिफाइंग अभियान में सीरिया से मुकाबला करेगा।
2: And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about Mann Ki Baat program.

0: Yes, today we bring you some inspiring stories that remind us that innovation, passion and a little determination can open the doors to new possibilities.
1: और ये उन आम लोगों की कहानियां हैं जो असाधारण काम कर रहे हैं, चाहे वो खेत

0: टेक्नोलॉजी इतिहास के जरिए हो या फिर किसी शौक को आजीविका का जरिया बनाकर।
1: लेट्स बिगिन विद एन एग्जांपल फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ फार्मिंग। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस रिसेंट मन के बाद प्रोग्राम स्पोक अबाउट टू इंडिविजुअल्स हु आर कल्टीवेटिंग एवोकाडोस एंड अर्निंग एडिशनल इनकम थ्रू दिस इमर्जिंग एग्रीकल्चरल अपॉर्चुनिटी।
0: और इनमें से एक आंध्र प्रदेश के कडप्पा के वरदराज हैं, जबकि दूसरे तमिलनाडु के कोडाईकनाल के चंद्रशेखरन हैं। इनके अनुभव बताते हैं कि किसान कैसे नई फसलों से आमदनी का जरिया बढ़ा सकते हैं।
2: आजकल एवोकाडो फल की बड़ी धूम है। इस फल को पहले शायद ही कोई जानता, इसकी वैल्यू और डिमांड दोनों कम थी, लेकिन आज इसे डाइनिंग टेबल पर खूब देखा जा रहा है। आज यह हेल्थ और प्रीमियम मार्केट की पसंद बन गया है। हमारे किसान भाई बहनों के लिए भी ये बहुत मददगार है। आंध्र प्रदेश में कड़पा के वरदराज जी का उदाहरण है। वे कई वर्षों से अपने खेत में टमाटर और केले की खेती कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों के फार्म में एवोकाडो की फसल देखी। इसके बाद उन्होंने यूट्यूब से इस पर जानकारी जुटाई। अब तक वे करीब 4 टन एवोकाडो का उत्पादन कर चुके हैं। आज वे सीधे स्थानीय दुकानों को इसकी सप्लाई कर रहे हैं। नई फसल, वैज्ञानिक सलाह और सीधी मार्केटिंग से उनके छोटे से फार्म की कमाई पूरी तरह बदल गई है। तमिलनाडु के कोडाईकनाल के किसान चंद्रशेखरन जी ने आधी हेक्टर जमीन पर एवोकाडो उगाना शुरू किया। उन्हें इसके अच्छे दाम मिल रहे हैं और कमाई भी बढ़ी है।
1: पीएम मोदी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट एवोकाडो कल्टीवेशन एमिड कॉफी प्लांटेशंस।
2: कर्नाटका में चिकमंगलुरु के कुछ किसान भाई बहनों ने तो कॉफी प्लांटेशन के बीच एवोकाडो लगाया है। इससे उन्हें कॉफी और काली मिर्च के साथ अतिरिक्त कमाई भी हो रही है। साथियों, हम शहरों के रेस्टोरेंट में अक्सर एवोकाडो टोस्ट के बारे में सुनते हैं, लेकिन इसी एवोकाडो के जरिए हमारे इनोवेटिव किसानों ने कमाई की एक नई रेसिपी ढूंढ ली है। यानी अपने देश के एवोकाडो से आपके टोस्ट का स्वाद भी बढ़ा।
1: The message is encouraging agriculture is not just about traditional crops. With awareness, experimentation and an understanding of changing markets, farmers can discover new opportunities and increase their earnings.
0: और अब इतिहास में दिलचस्पी रखने वाले हमारे सभी श्रोताओं को एक बहुत ही दिलचस्प बात बताने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई के कृष्णा शिषाद्री से भी बात की, जिन्होंने भारत राज्य नाम की एक अनोखी वेबसाइट बनाई है।
2: आप इस वेबसाइट पर जाएं और कोई भी एक वर्ष चुन लें। यहाँ आपको आसानी से पता चलेगा कि उस समय भारत के किस हिस्से पर किसका शासन था। मुझे भी यह काफी दिलचस्प लगा। मैंने सोचा कि इसके बारे में और अधिक जानकारी ली जाए। मुझे पता चला कि ये काम मुंबई में रहने वाले श्रीमान कृष्णा शेषाद्री जी ने किया। मजे की बात यह है कि कृष्णा जी ने वेबसाइट का नाम भी बहुत सिंपल रखा है, www.bharatrajya.com। उन्होंने जो प्रयास किया है उसकी जानकारी आप लोगों तक भी जरूर पहुंचनी चाहिए।
0: मन की बात में इस पहल को स्थान मिलने पर कृष्ण शेषाद्री ने अपनी खुशी व्यक्त की। इस उपलब्धि के बाद उनकी आगे की सोच और वेबसाइट को लेकर उनकी भविष्य की योजनाओं के बारे में जानने के लिए चलते हैं हमारी मुंबई संवाददाता के पास।
3: कृष्ण शेषाद्री के करियर की शुरुआत अभियंता के रूप में हुई। बाद में उन्होंने MBA किया और मार्केटिंग के क्षेत्र में प्रवेश किया, लेकिन इतिहास के प्रति उनका आकर्षण बचपन से ही रहा। इतिहास को अधिक गहराई से और पाठ्य पुस्तकों के परे जाकर समझने के उद्देश्य से उन्होंने bharatrajya.com वेबसाइट की शुरुआत की। आज उनकी ये छोटी सी पहल मन की बात कार्यक्रम में अपनी जगह बना चुकी है। मन की बात में इस पहल का उल्लेख होने पर कृष्ण शेषाद्री ने खुशी व्यक्त की। सुनते हैं से।
4: जब मैंने ये वेबसाइट बनाना शुरू किया था, वो एक छोटा सा एक हॉबी जैसा प्रोजेक्ट की तरह से शुरू किया था, तो मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि प्रधानमंत्री जी उस वेबसाइट को देखेंगे, उसे एक्सपीरियंस करेंगे और उसके बारे में मेरे से पूछेंगे।
3: ये बड़ा मुकाम हासिल करने के बाद इस वेबसाइट के लिए भविष्य में उनकी क्या योजनाएं हैं, ये भी कृष्ण शेषाद्री ने बताया।
4: पूरा जो हमारा इतिहास है, जितना हमने लिखित में है, जितना रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, वो वहाँ पे आ जाएगा। दूसरा प्लान ये है कि हमारे जो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं, हमारे जो बड़े बड़े मंदिर हैं, लाइक बृहदेश्वर टेम्पल हो या कैलाश टेम्पल हो या गंगाईकोंड चोलापुरम टेम्पल हो, उज्जैन टेम्पल हो, उसका हम एक 3D मॉडल बनाए, को एक फ्लैश कार्ड की तरह प्रिंट करके स्कूल या कहीं बच्चों में बांटें, ताकि वो उसे ट्रम्प कार्ड की तरह खेलें और खेल खेल में मजे लेते हुए अपना इतिहास और अच्छी तरह से पढ़ें।
3: मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर ने कहा है, हम इतिहास के निर्माता नहीं है, बल्कि इतिहास हमें बनाता है। और कृष्ण शेषाद्री की भारत राज्य डॉट

0: com वेबसाइट हमें सिर्फ इतिहास नहीं बताती बल्कि हमारी अपनी कहानी से भी हमारा परिचय कराती है। परिक्रमा के लिए मुंबई से मैं अंकिता आप्टे।
1: और अभिषेक, इस पहल की सबसे खास बात यह है कि ये इतिहास को लोगों के करीब लाती है। छात्र और इतिहास में रुचि रखने वाले लोग सिर्फ किताबों के जरिए अतीत को जानने के बजाय भारत के बदलते राजनीतिक परिदृश्य को दिलचस्प और इंटरैक्टिव तरीके से इस वेबसाइट के जरिए समझ सकते हैं।
2: एंड दैट मेक्स हिस्ट्री, सर फिरोजी, नॉट जस्ट समथिंग टू रिमेम्बर फॉर एन एग्जामिनेशन बट समथिंग टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड।
1: बिल्कुल अभिषेक, और अब आइए इतिहास से हटकर नागालैंड की पहाड़ियों की खूबसूरत कहानी की ओर बढ़ते हैं। ये कहानी है फूलों, जुनून और उद्यमिता की।
2: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आल्सो हाइलाइटेड द इंस्पायरिंग जर्नी ऑफ वेसालू पुरो फ्रॉम फेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड हु ट्रांसफॉर्म अ लव फॉर फ्लावर्स इनटू अ थ्राइविंग लाइवलीहुड।
3: कभी कभी हमारा एक छोटा सा शौक जीवन में एक बड़ी संभावना का रास्ता खोल देता है। नागालैंड के फेक जिले की वैसालू पुरोजी की यात्रा भी कुछ ऐसी ही है। वैसालू जी किसान परिवार में पली बढ़ी, बचपन से उन्होंने अपने माता पिता को खेती करते देखा और उन्हें खुद फूलों से बहुत लगाव था। साल 2021 में उन्होंने इसी शौक के साथ छोटे स्तर पर फूल उगाने की शुरुआत। धीरे धीरे उन्हें इसमें एक संभावना दिखाई देने लगी। उन्होंने देखा कि शादी विवाह हो या फिर अन्य त्योहार, फूलों की मांग हमेशा बनी रहती है। वैसालू जी ने अपने इस शौक को आगे बढ़ाने का फैसला किया। इस सफर में उन्हें स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र से फूलों की वैज्ञानिक खेती की ट्रेनिंग मिली। फिर उन्होंने केवल एक चौथाई एकड़ जमीन पर ग्लेडियोलस के हजारों पौधे लगाए। पहले ही प्रयास में 5,000 से ज्यादा फूल खिल उठे। ये सफलता वैसालू जी के लिए एक नई शुरुआत बन गई। उन्होंने फूलों की खेती को और आगे बढ़ाया। जो फूल कभी स्थानीय बाजार में रह जाते थे आज वो नागालैंड से निकल कर दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों तक जा रहे हैं। वैसालू पुरोजी की यात्रा हमें बताती है कि शौक जब मेहनत और सही मार्गदर्शन से जुड़ जाता है तो वह नई संभावनाओं का रास्ता खोल।
2: Yes, indeed, and Vesalu Puro's story carries a simple but powerful message. A small hobby, when combined with hard work, proper guidance and determination, can become a sustainable source of livelihood.
1: और शायद यही वो बात है जो इन सभी कहानियों को आपस में जोड़ती है, यानी कुछ नया करने का जज्बा।
2: Yes, and whether it's a farmer experimenting with avocado cultivation, a history enthusiast using technology to make the past more accessible,
1: या फिर फूलों के प्रति अपने जुनून को एक बिग में शामिल करने वाली कोई युवा महिला, हर कहानी हमें बताती है कि प्रेरणा किसी भी ऐसी चीज से मिल सकती है जिसके बारे में शायद हमने सोचा भी ना हो।
2: So dear listeners, perhaps there's a lesson here for all of us. Keep learning, keep experimenting and never underestimate the potential of a small idea.

0: और आगे बढ़ने से पहले एक आवश्यक सूचना। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर परिचर्चा प्रसारित करेगा।
1: टू पार्टिसिपेट सिंपली डायल द टेलीफोन नंबर्स 0112331041, 0112371711, 0112371106 and 0112331444 from 9:30 PM onwards tonight. Alternatively, you can also send your queries via WhatsApp to the number 9289094044 or post your questions on X with the hashtag AskAIR.
0: श्रोताओं, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास आज हमारे लिए क्या खास जानकारी है। सबसे पहले चल रहे हैं जयपुर। राजस्थान में आज कजरी तीज का पर्व मनाया जा रहा है। इसे सातुड़ी तीज और बड़ी तीज भी कहा जाता है। कजरी तीज पर महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना कर अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि की कामना करती है। एक रिपोर्ट।
2: राजस्थान में आज कजरी तीज का पर्व मनाया जा रहा है।

0: इसे लेकर महिलाओं में खासा उल्लास है। श्रावणी तीज के गुजरने के बाद आती है कजरी तीज। जब भादो बरस रहा होता है और हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि होती है, तब कजरी तीज आती है। इसे सातुड़ी तीज, बड़ी तीज, नीमड़ी तीज या बूढ़ी तीज भी कहा जाता है। इस दिन तीज माता को विशेष रूप से सत्तू का भोग लगाया जाता है। बूंदी जिले में कजरी तीज का विशेष मेला भी भरता है। नवविवाहितों में तीज को लेकर विशेष चाव है। उनके पीहर से सत्तू, कपड़े, पकवान और मिठाइयां भेजी जा रही हैं। सुहागिन महिलाएं हाथों में मेहंदी रचाकर, लाख के चूड़े पहनकर और 16 श्रृंगार के साथ निर्जल व्रत रख रही हैं। अपने परिवार और सखियों के साथ मिलकर पारंपरिक तीज के गीत गाते हुए झूले झूलकर पर्व की खुशियां मना रही हैं। कजरी तीज की कथा सुन रही हैं। शाम के समय दीवार पर नीम की टहनी रखकर या गोबर से आकृति बनाकर नीमड़ी माता की भी पूजा की जाएगी और चांद के दर्शन तथा पूजन कर पति की लंबी आयु और घर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की जाएगी। ये बात अलग है कि भादों का चांद बादलों की ओढ़ में छिपकर बैठा रहता है और जरा देर से दर्शन देता है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी समाचार जयपुर से माधुरी वशिष्ठ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की अपनी दो दिवसीय यात्रा के पहले दिन राजधानी बिश्केक में महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क पहुंचकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और ब्यौरा दे रहे हैं बिश्केक से हमारे संवाददाता विकल्प शुक्ला।
2: किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क में स्थापित गांधी जी की इस प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जुलाई 2015 को अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान किया था। इस पार्क के पास में स्थित मार्ग का नाम भी महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है। यह स्थल भारत और किर्गिस्तान के संबंधों के सांस्कृतिक और मानवीय पक्ष का महत्वपूर्ण प्रतीक है। वर्ष 2015 में इस प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा था कि यह प्रतिमा बिश्केक के निवासियों को भारत और किर्गिस्तान के साझा मूल्यों की याद दिलाएगी। परिक्रमा के लिए बिश्केक किर्गिस्तान से मैं विकल्प शुक्ला।
3: When the mighty Mahanadi stretches towards the horizon, the Hirakud Dam stands as a remarkable symbol of Odisha's development journey. Located near Sambalpur, Hirakud is more than an engineering marvel. Since its inauguration in 1957, it has played a vital role in flood control, irrigation and power generation and has become an integral part of the identity of Western Odisha. We have more from a correspondent.
4: Today, Hirakud is looking towards a new chapter. The Odisha government has initiated work on Hirakud Dam Master Plan aimed at the planned development of the region, with special focus on tourism, infrastructure and connectivity. The vast Hirakud Reservoir also holds significant potential for renewable energy. Official assessments indicate an estimated floating solar potential of up to 3,000 megawatts. This is a potential figure, not an already sanctioned project, but it highlights the possibilities for Hirakud to contribute to Odisha's clean energy transition. As development takes shape, conservation must remain equally important. Irrigation, fisheries, local livelihoods, ecology, tourism and dam operations all depend on this vast reservoir. For generations, Hirakud has represented the aspirations of the developing Odisha. Now, with a new vision taking shape, it has the opportunity to emerge as a destination where history, nature, tourism and sustainable development come together. For Parikrama, Supriti Mishra, Akashvani, Sambalpur.
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सप्ताह पूर्वी उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने गोरखपुर और देवरिया जिले की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने बलिया जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण भी किया। पूर्वी उत्तर प्रदेश के दौरे के दौरान श्री योगी ने कई अन्य कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। एक रिपोर्ट।
5: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 28 अगस्त को गोरखपुर पहुंचे। उन्होंने गोरखपुर के महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर के 5वें स्थापना दिवस समारोह और रक्षाबंधन के पावन मौके पर विश्वविद्यालय परिसर में भाई बहन पौधारोपण कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। अगले दिन 29 अगस्त को मुख्यमंत्री ने नगर निगम गोरखपुर और गोरखपुर विकास प्राधिकरण GDA की कुल 170 विकास परियोजनाओं का सौगात दिया। उन्होंने 3.10 करोड़ रुपए से गोरखपुर जिले में नव निर्मित कल्याण मंडपम का लोकार्पण भी किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने देवरिया जिले के सलेमपुर और भाटपारानी विधानसभा क्षेत्रों में 305 करोड़ रुपए की लागत की 80 लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। उन्होंने

0: जिले में बांसडीह, बैरिया और बलिया सदर विधानसभा क्षेत्रों में बाढ़ प्रभावित स्थानों का निरीक्षण किया। श्री योगी ने इस अवसर पर प्रभावित परिवारों का कुशल क्षेम जाना और उन्हें राहत सामग्री भी वितरित की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बाढ़ प्रभावितों के लिए केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे केंद्रों पर भोजन की व्यवस्था की गई है और राहत सामग्री भी वितरित की जा रही है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी समाचार गोरखपुर से प्रेमचंद्र गुप्ता।
1: Mission Karmayogi, the government's national program for civil services capacity building, aims to create a professional, competent and citizen-centric workforce through continuous learning and competency development. Jawaharlal Institute of Post Medical Education Research, Puducherry has emerged as one of the top performing institutions under the Ministry of Health and Family Welfare in implementing Mission Karmayogi. It was among only 8 institutions to receive an achievement certificate for outstanding performance and was also recognized among the top 7 performing institutions for initiatives like RKJSP, APAR linked courses and Sadhana Saptah. We have more from a correspondent.
2: At the center of JIPMO's efforts is the Mission Karmayogi One Course Every Week initiative. So the IGOT Karmayogi platform, employees undertake structured digital learning every week to continuously upgrade their skills and competencies. JIPMO has also established a dedicated capacity building unit and departmental Karmayogi coordinators to implement and monitor the program. Employee-wise progress is tracked regularly with learning activities linked to the annual performance assessment report. The institute also follows a cascade training model where lead trainers train master trainers who subsequently facilitate learning across JIPMO's 3 campuses. Digital courses are supplemented by practical workshops and workplace-based problem-solving sessions. The initiative aims to bring a shift from a rule-based to a role-based approach, creating a more competent, accountable, citizen-centric and empathetic workforce. For Parikrama, this is Bibin Asnad, Akashwani News, Puducherry.
3: श्रोताओं, अब चल रही हैं खेल के मैदान की ओर। सबसे पहले बात फुटबॉल की। भारत की अंडर 20 टीम आज ताशकंद में एएफसी अंडर 20 एशियन कप 2027 क्वालिफायर अभियान की शुरुआत सीरिया के साथ मुकाबले से करेगी। मेजबान उज्बेकिस्तान और बांग्लादेश के साथ ग्रुप बी में शामिल भारतीय टीम 2006 के बाद पहली बार एएफसी अंडर 20 एशियन कप में वापसी के उद्देश्य से क्वालिफायर में उतर रही है और महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट के ग्रुप बी मुकाबले में आज बांग्लादेश का सामना इंडोनेशिया से होगा। दुबई में ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा।
1: एंड ऑन टू सम बिजनेस न्यूज, बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस एंडेड 0.4% डाउन टुडे। द सेंसेक्स डिक्लाइन 307 पॉइंट्स टू क्लोज 76,957। द निफ्टी ड्रॉप 95 पॉइंट्स टू सेटल एट 24,080। Meanwhile, the broader market at the National Stock Exchange displayed a mixed trend. The mid-cap 100 index gained 0.2%, while the small-cap 100 index dipped 0.7%.
3: और अब बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है।
4: अज आखां वारिस शाह ने कितों कबरां विच्चों बोल, अज आखां वारिस शाह ने कितों कबरां विच्चों बोल, ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्क, इक रोई सिती पंजाब दी तू लिख लिख मारे बैन, वे अज लखां तियां रोंदियां तनु वारिस शाह ने कैं।
3: अभी आपने जो आवाज़ सुनी वो थी प्रसिद्ध कवियत्री अमृता प्रीतम की, जो पंजाब की प्रसिद्ध सूफी कवि वारिस शाह के नाम एक कविता के बोल पढ़ रही हैं। ये कविता खुद अमृता ने 1947 के भारत विभाजन के समय पंजाब में हुई भयानक सांप्रदायिक हिंसा, कत्लेआम और गहरे दुख को बयां करने के लिए लिखी थी। आज अमृता प्रीतम की जयंती है। अमृता प्रीतम की लेखनी में खास तौर पर भारत के विभाजन का दर्द गहराई से झलकता है। इनका पिंजर उपन्यास विभाजन की त्रासदी और महिलाओं पर हुए अत्याचारों को बयां करता सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। इस पर 2003 में फिल्म पिंजर भी बन चुकी है। इसी फिल्म का एक गीत आपको सुनाने जा रही है।

0: Yes, and also Sir George Ivan Morrison was born on this day in 1945, known professionally as Van Morrison. He is an iconic Northern Irish singer-songwriter, multi-instrumentalist and producer whose legendary career spans over 7 decades. Affectionately nicknamed Van the Man by his fans, he is universally recognized as one of the most unique, influential and enduring figures in the history of rock, soul and folk music. And also Sarfirozi, Javagal Srinath celebrates his birthday today. He's a legendary former Indian cricketer who currently serves as an elite match referee for the International Cricket Council, ICC. Affectionately nicknamed the Mysore Express due to his roots in Karnataka, he was a spearhead of India's fast bowling attack throughout the 1990s and early 2000s. He stands as one of India's finest and the fastest pace bowlers, recognized for breaking the mold during an era when Indian cricket lacked relentless pace depth.
1: आज हम ऋतुपर्ण घोष को भी याद कर रहे हैं. बंगाली फिल्मों के प्रसिद्ध निर्देशक, लेखक और अभिनेता थे. चोखेर बाली और रेनकोट जैसी फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता ऋतुपर्ण घोष की ख्याति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत में थी. 19 साल के फिल्मी करियर के में ऋतुपर्ण घोष ने 19 फिल्मों का निर्देशन और 3 फिल्मों में अभिनय किया. और सतिंदर सरताज का भी आज जन्मदिन है. ये पंजाबी सूफी गायक, गीतकार, कवि और अभिनेता है जो अपने गहरे, अर्थपूर्ण और रूहानी सूफी संगीत और बेमिसाल शायरी के लिए जाने जाते हैं. इन्हें साल 2010 में आए इनके सुपरहिट सूफी गीत साई से वैश्विक स्तर पर बड़ी पहचान मिली. और इसके अलावा इन्होंने इक्को मिक्के, कली जोटा जैसी लोकप्रिय पंजाबी फिल्मों में काम किया है. इनके कुछ सबसे बेहतरीन गानों में उडारिया, मासूमियत और सजन राजी है.

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन के साथ बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। बाद में प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादो जापारोव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग को और बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के पहले दिन आज राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिश्केक में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ आत्मीय संवाद किया। प्रधानमंत्री ने भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच मैत्री संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय की ऊर्जा, उत्साह और महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान श्री मोदी ने आज बिश्केक स्थित महात्मा गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए चौथे भारत जर्मनी पर्यावरण मंच की बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा जर्मनी के पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण, जलवायु संरक्षण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टेन श्नाइडर इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग को अधिक मजबूत करने और व्यावहारिक सहयोग को बढ़ाने के लिए पर्यावरण संरक्षण तथा जलवायु नीति से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी। सरकार ने देश में चिप निर्माण इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सेमिकॉन योजना के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। इसके साथ भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग बाजार का लगभग 10% हिस्सा हासिल कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में बताया कि देश ने 10 साल के लक्ष्य के मुकाबले 4 साल में 85,000 सेमीकंडक्टर इंजीनियरों को तैयार करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार का ध्यान वेफर फैब्रिकेशन से लेकर चिप उत्पादन तक देश को वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में मजबूती से स्थापित करने पर है।
2: वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग को भरोसा है कि आने वाले दशकों में भारत बड़े निवेश के लिए एक प्रमुख केंद्र बनेगा।

0: जिसका प्रमाण हमें सेमिकॉन एक के तहत मंजूर की गई परियोजनाओं से मिलता है। इनमें कई इकाइयों ने भूमि पूजन के केवल 13 महीने के भीतर व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया है। इसी तेज गति ने वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग का भारत पर भरोसा और मजबूत किया है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है बल्कि लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है। 4000

0: பிரளயமான நிகழ்ச்சிகள் பற்றிய அறிவிப்பு கேட்டீர்கள்.
1: நேயர்களே, இன்று 8:15 எஃப்எம் கோல்ட் 100.1 MHz இந்திய அரசின் வேளாண்மை மற்றும் உழவர் நல அமைச்சகம் வழங்கும் ஹலோ ஃபார்மர் நேரலை நிகழ்ச்சி.
2: ஹலோ ஹலோ, எக்ஸ்கியூஸ் மீ, எங்கேயாவது அவசரமா போறீங்களா?
3: இல்லையே.
2: அப்பயே சிக்னல் போட்டோம், ஸ்டாப் லைனை தாண்டி போறீங்க?
3: சிக்னல் எடுத்த உடனே உடனே போயிடலாம் இல்லையா? அதனாலதான்.
2: ஓ, ஆனா இதுக்கு ஃபைன் போடுவாங்க தெரியுமா?
3: அதான் டிராபிக் இன்ஸ்பெக்டர் இல்லையே மேடம்.
2: டிராபிக் இன்ஸ்பெக்டர் இல்லைன்னா என்னங்க? அந்த கண்ணில் மாட்டுவீங்க, கேமரா கண்ணில் மாட்டுவீங்க. சாலை போக்குவரத்து அதிகாரி உடனடி அபராதம் விதிக்கிற மாதிரி இந்த கேமரா கண்கள் மூலமாகவும் உங்களுக்கு உடனடியா அபராதம் விதிக்கப்படும். சாலை விதிகளை கடைபிடிப்போம், பாதுகாப்பாய் பயணிப்போம்.
0: சில நொடிகளை தொடர்வது டெல்லி அஞ்சல்.
4: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण.
5: नमस्कार, आकाशवाणी के कार्यक्रम विश्लेषण में आपका स्वागत है. मैं हूं प्रियंका अरोड़ा. आज के कार्यक्रम का विषय है शंघाई सहयोग संगठन 25 वर्षों की यात्रा और बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत की भूमिका. एशिया और यूरेशिया के बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य में शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO आज एक महत्वपूर्ण बहुपक्षीय मंच बन चुका है. आज SCO के 10 सदस्य हैं. इनका संयुक्त क्षेत्रफल करीब 3,60,00,000 वर्ग किलोमीटर और आबादी 3,40,00,000,000,000 से अधिक है. संगठन के सदस्य देश वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में करीब 25% और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 15% से अधिक हिस्सेदारी रखते हैं. लेकिन SCO की कहानी केवल आंकड़ों की कहानी नहीं है. इस संगठन की शुरुआत सीमा क्षेत्रों में विश्वास और सुरक्षा बढ़ाने के प्रयासों से हुई थी. धीरे धीरे इसका दायरा सुरक्षा से आगे बढ़कर अर्थव्यवस्था, व्यापार, संपर्क, संस्कृति, ऊर्जा, पर्यावरण, तकनीक और लोगों के बीच संपर्क तक पहुंचा. और आज जब SCO अपनी स्थापना की 25वीं वर्षगांठ मना रहा है, तब संगठन का 26वां शिखर सम्मेलन किर्गिज गणराज्य की राजधानी बिश्केक में 31 अगस्त और 1 सितंबर 2026 को आयोजित हो रहा है. भारत भी इस शिखर सम्मेलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे और सुरक्षा, संपर्क तथा अवसरों से जुड़े भारत की प्राथमिकता वाले मुद्दों को सामने रखेंगे. तो आखिर SCO की शुरुआत कैसे हुई, पिछले 25 वर्षों में ये संगठन किस तरह बदला और इसमें भारत की भूमिका किस तरह विकसित हुई, इन्हीं सवालों को समझने की कोशिश करेंगे आज के विश्लेषण में. आइए शुरुआत करते हैं हमारी पहली रिपोर्ट से.
6: शंघाई सहयोग संगठन की कहानी को समझने के लिए हमें 1990 के दशक में वापस जाना होगा. उस समय चीन और उसके पड़ोसी मध्य एशियाई देशों के बीच सीमा क्षेत्रों में विश्वास बढ़ाना और सैन्य तनाव कम करना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता थी. इसी उद्देश्य से वर्ष 1996 में कजाकिस्तान, चीन, किर्गिज गणराज्य, रूस और ताजिकिस्तान ने सीमा क्षेत्र में सैन्य विश्वास निर्माण से जुड़ा समझौता किया. इसके बाद 1997 में सीमा क्षेत्र में सशस्त्र बलों की पारस्परिक कमी से संबंधित समझौता हुआ. इन 5 देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय बैठकों की व्यवस्था को शंघाई 5 कहा गया. फिर 4 जुलाई 2000 को दुशांबे घोषणा में शंघाई 5 को विभिन्न क्षेत्रों में बहुपक्षीय सहयोग की एक व्यापक क्षेत्रीय संरचना में बदलने की आवश्यकता पर जोर दिया गया. इसी दौरान उज्बेकिस्तान भी इस प्रक्रिया में शामिल हुआ और इसके ठीक 1 साल बाद आया वो ऐतिहासिक दिन जिसने इस पूरी प्रक्रिया को एक नए संगठन का रूप दिया. 15 जून 2001 चीन के शंघाई शहर में कजाकिस्तान, चीन, किर्गिज गणराज्य, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के नेताओं ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO की स्थापना की घोषणा की. संगठन ने स्पष्ट किया कि वो किसी दूसरे देश या क्षेत्र के खिलाफ बनाया गया सैन्य गठबंधन नहीं है. इसके बजाय ये खुलेपन, संवाद और विभिन्न देशों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग के सिद्धांत पर काम करेगा. इसके बाद SCO के संस्थागत ढांचे को मजबूत किया गया. 7 जून 2002 को सेंट पीटर्सबर्ग में SCO

0: चार्टर पर हस्ताक्षर हुए जो संगठन का मूलभूत दस्तावेज है। ये 19 सितंबर 2003 को लागू हुआ। यहीं से SCO की यात्रा एक सुरक्षा केंद्रित समूह से एक व्यापक बहुपक्षीय संगठन की ओर बढ़ने लगी।
1: SCO की स्थापना के शुरुआती वर्षों में सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता प्रमुख विषय रहे, लेकिन समय के साथ संगठन ने आर्थिक और मानवीय सहयोग को भी अपने एजेंडे में शामिल किया। 2004 में स्थायी संस्थाओं के गठन के बाद 2005 का अस्ताना शिखर सम्मेलन भी संगठन के विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण रहा। आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी रिपोर्ट।
2: SCO के विकास की कहानी कई महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलनों से होकर गुजरती है। 2005 का अस्थाना शिखर सम्मेलन इस विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। उस समय तक SCO सेक्रेटेरिएट और रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर यानी RATS काम कर रहे थे और संगठन अपने बहुपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा था। समय के साथ SCO में आर्थिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक सहयोग की व्यवस्थाएं विकसित हुई। SCO की संस्थागत संरचना में राष्ट्राध्यक्षों की परिषद के अलावा सरकार प्रमुखों यानी प्रधानमंत्रियों की परिषद, विदेश मंत्रियों की परिषद, राष्ट्रीय समन्वयकों की परिषद और विभिन्न मंत्रालयों तथा एजेंसियों की बैठकें शामिल है। यानी SCO केवल सालाना शिखर सम्मेलन तक सीमित संगठन नहीं है, इसके अंतर्गत अलग अलग क्षेत्रों में लगातार बैठकें और कार्यतंत्र चलते हैं। जून 2017 में कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में हुए शिखर सम्मेलन में भारत को संगठन के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया। भारत के प्रवेश के बाद SCO का भौगोलिक और राजनीतिक दायरा काफी बढ़ गया। इसके बाद संगठन के एजेंडे में मध्य एशिया के साथ साथ दक्षिण एशिया से जुड़े मुद्दों की प्रासंगिकता भी बढ़ी। 2023 में ईरान SCO का पूर्ण सदस्य बना, जबकि बेलारूस को पूर्ण सदस्य बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई और 2024 में बेलारूस संगठन का पूर्ण सदस्य बन गया। SCO अब केवल राष्ट्राध्यक्षों की बैठक का मंच नहीं है, ये विभिन्न स्तरों पर निरंतर संवाद और सहयोग की एक संस्थागत व्यवस्था बन चुका है। और इसी क्रम में 2025 का तियानजिन शिखर सम्मेलन भी महत्वपूर्ण रहा। चीन की अध्यक्षता में हुए इस शिखर सम्मेलन में राजनीति, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, उद्योग, सतत विकास और नई तकनीकों सहित कई क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। सम्मेलन में SCO डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी अंटिल 2035 समेत 24 दस्तावेजों को मंजूरी दी गई।
1: भारत 2017 में SCO का पूर्ण सदस्य बना, लेकिन सदस्य बनने के कुछ ही वर्षों बाद भारत ने संगठन की अध्यक्षता भी संभाली। सितंबर 2022 से जुलाई 2023 तक भारत ने पहली बार SCO की अध्यक्षता की। भारत की अध्यक्षता का प्रमुख संदेश था टुवर्ड्स अ सिक्योर SCO। सिक्योर यानी S फॉर सिक्योरिटी, E फॉर इकोनॉमी एंड ट्रेड, C फॉर कनेक्टिविटी, U फॉर यूनिटी, R फॉर रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और E फॉर एनवायरनमेंट। अब सुनते हैं हमारी तीसरी और अंतिम रिपोर्ट।
3: भारत ने 16 सितंबर 2022 को समरकंद शिखर सम्मेलन में SCO की रोटेटिंग चेयरमैनशिप संभाली। इसके बाद भारत की पहली अध्यक्षता के दौरान 134 बैठकें और कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 14 मंत्री स्तरीय बैठक शामिल थी। भारत ने अध्यक्षता के दौरान संगठन के एजेंडे में कुछ नए सहयोग क्षेत्रों को भी आगे बढ़ाया। इनमें स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन, ट्रेडिशनल मेडिसिन, डिजिटल इंक्लूजन, यूथ एम्पावरमेंट और शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज जैसे क्षेत्र शामिल थे। भारत की अध्यक्षता का एक महत्वपूर्ण पहलू था SCO सहयोग को केवल सरकारों के बीच संवाद तक सीमित न रखना। इसके लिए संस्कृति, पर्यटन और लोगों के बीच संपर्क को भी महत्व दिया गया। वाराणसी को 2022-23 के लिए SCO की पहल कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल बनाया गया। वाराणसी में SCO सदस्य देशों के बीच पर्यटन और सांस्कृतिक सहयोग से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित हुए। मार्च 2023 में SCO टूरिज्म मिनिस्टर्स मीटिंग और टूरिज्म एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप की बैठक भी वाराणसी में हुई। इन बैठकों में SCO टूरिज्म ब्रांड को बढ़ावा देने, सांस्कृतिक विरासत के प्रचार, डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल और मेडिकल तथा हेल्थ टूरिज्म में सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। पर्यावरण भी भारत की अध्यक्षता के प्रमुख क्षेत्रों में रहा। अप्रैल 2023 में SCO देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत ने मिशन लाइफ और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी भारत ने सहयोग पर जोर दिया। SCO हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग में स्वास्थ्य सुरक्षा, निगरानी व्यवस्था, संयुक्त शोध और आधुनिक तकनीक के साथ पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के इस्तेमाल जैसे विषयों पर चर्चा हुई। भारत की अध्यक्षता का समापन 4 जुलाई 2023 को हुआ SCO हेड्स ऑफ स्टेट समिट के साथ। यह शिखर सम्मेलन वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस दौरान न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को अपनाया गया। इसके अलावा आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद की ओर ले जाने वाले कट्टरपंथ का मुकाबला करने तथा डिजिटल परिवर्तन

0: में सहयोग से जुड़े संयुक्त वक्तव्य भी जारी किए गए।
1: 25 वर्षों की SCO यात्रा को अगर एक वाक्य में समझना हो तो कहा जा सकता है कि इसकी शुरुआत सीमा क्षेत्रों में विश्वास और सुरक्षा से हुई, लेकिन समय के साथ ये बहुआयामी क्षेत्रीय सहयोग के एक बड़े मंच में बदल गया और इसी बदलते परिदृश्य में भारत की भूमिका एक ऐसे सदस्य देश की है जो सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक विकास, कनेक्टिविटी, तकनीक, संस्कृति और लोगों के बीच संपर्क को भी क्षेत्रीय सहयोग का महत्वपूर्ण आधार मानता है। इसी उम्मीद के साथ आज के विश्लेषण कार्यक्रम में बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया है हमारी सहयोगी श्रेया पाठक ने, तकनीकी सहयोग दिया है अरुणदीप सिंह ने। नमस्कार।

0: Namaskar and welcome to Market Mantra. Well, today, friends, being a Monday, we shall be taking your calls on your market-related queries. But please do remember that we do not address stock or company-specific queries. And the numbers on which you can call us are 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, please add a prefix of 011 as a code to these numbers. I'm your anchor, Lalima Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Subodh Mishra.
1: Dhanyavad Lalima, aur namaskar shrotao, karobari khabron ke saath market mantra hazir hai. आज सोमवार है और हर सोमवार की तरह आज भी हम अर्थव्यवस्था और व्यापार जगत से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे लेकिन याद रखें कि हम किसी खास कंपनी या शेयर से जुड़े सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं 2331-4444 2331-0481 और 2371-7106 श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड हमारे साथ हैं आर्थिक पत्रकार दीपशिखा सिकरवार दीपशिखा मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है
2: धन्यवाद सुबोध जी
1: पहले हेडलाइंस के साथ लालिमा नेचर टैंक
0: हां जी थैंक यू सुबोध यस फ्रेंड्स लेट्स बिगिन विद द हेडलाइंस राइट अवे वेल बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडेक्सेस डिक्लाइन सेंसेक्स फॉल्स ओवर 300 पॉइंट्स निफ्टी सेटल्स बिलो 24,100 India's real GDP grows by 7.8% in first quarter of current financial year and global crude oil prices surge.
1: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में गिरावट सेंसेक्स 300 अंकों से ज्यादा गिरा निफ्टी 24,100 से नीचे पहुंचा चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 7.8% बढ़ा और कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में उछाल

0: Well, before we move ahead with more financial news, friends, here's a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: जी लालिका, अब खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले चलते हैं एक कॉलर के पास जो जुड़ गए हैं।
0: जी जी,
1: दिल्ली से सतीश हमारे साथ है। स्वागत है सतीश आपका, सवाल पूछे।
0: जी सतीश, आस्क योर क्वेश्चन प्लीज।
2: यस, माय क्वेश्चन इज मैम कि गोल्ड और सिल्वर का अभी आउटलुक कैसा रहेगा आने वाले दिनों में?
3: सतीश जी, गोल्ड में अगर आप देखें पिछले पिछले

0: कुछ महीनों से थोड़ा सा करेक्शन आया था, उस वक्त बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी थी लोगों के लिए, लेकिन अब चूंकि जियोपॉलिटिकली अगर आप देखें कि क्राइसिस फिर जो है थोड़ा सा इंटेंस हो रहा है और उसको लेके कंसर्न्स हैं, हो सकता है कि प्राइसेस जो हैं प्रेशियस मेटल्स के अभी और बढ़ें। तो आप जो है एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखें, अगर आपके पास नहीं है तो आप उसमें थोड़ा सा एक हिस्सा जो है प्रेशियस मेटल्स का रख सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म जो आउटलुक है दोनों प्रेशियस मेटल्स की वो काफ़ी अच्छी है।
1: एंड गोल्ड एंड सिल्वर लव जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी।
0: एब्सोल्युटली।
2: चलिए राइट जी, खबरों का सिलसिला शुरू करें। हम पहले देखते हैं कि शेयर बाजार में क्या रहा। देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में आज 0.4% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 307 अंक गिरकर 76,957 पर बंद हुआ। निफ्टी 95 अंक नीचे 24,080 पर आ गया। एनएसई के अन्य सूचकांकों में मिला जुला रुख रहा। मिड कैप 100 सूचकांक 0.2% बढ़ा, जबकि स्मॉल कैप 100 0.7% नीचे आ गया। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच आज कारोबार की शुरुआत से ही सूचकांकों में कमजोरी रही। पूरे सत्र में अधिकांश सेक्टर्स पर बिकवाली का दबाव बना रहा।
1: Benchmark domestic equity indices ended 0.4% down today. The Sensex declined 307 points to close at 76,957. The Nifty dropped 95 points to settle at 24,080. Meanwhile, the broader market at the National Stock Exchange displayed a mixed trend. The mid-cap 100 index gained 0.2%, while the small-cap 100 index dipped 0.7%. Earlier, the markets opened on a weak note as escalating geopolitical tensions in West Asia and rising crude oil prices weighed on investor sentiment. Both the indices witnessed selling pressure across most sectors throughout the session.
2: और देखते हैं कि सेंसेक्स में शामिल कंपनियों के शेयर आज कैसे परफॉर्म किया। सेंसेक्स में शामिल 30 में से 20 कंपनियों के शेयर आज नुकसान में रहे। सबसे ज़्यादा गिरने वाले शेयरों पर नज़र डालें। अडानी पोर्ट्स में 4.1%, ITC में लगभग 3.7% और भारती एयरटेल में लगभग 2.8% की गिरावट देखी गई। इसके उलट सन फार्मा में 1.9%, ICICI बैंक में 1.7% और एक्सिस बैंक में 1.5% की बढ़त दर्ज की गई।
1: Let's take a look at the sectoral indices now. And on the BSE, 21 out of 28 sectors edged downward. Among the top laggards, utilities decreased 2.6%, metal lost 2.4%, services dipped 1.9%. In contrast, mid-small private banks' quality tilt rose over 1.2%. Mid-small private banks gained 1.2%, and Bankex added over 0.3%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,572 companies declined, 1,858 advanced, and 250 remained unchanged.
2: अगले कॉलर के पास जाने से पहले बता दे रुपए का हाल। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 22 पैसे बढ़कर 95.17 रुपए पर बंद हुआ।
1: एंड नाउ लेट्स कनेक्ट टू बिहार वेयर टिंकू राय इज ऑन द लाइन। जी टिंकू जी, सवाल पूछिए अपना। जी
3: नमस्ते मैम।
1: नमस्कार।
0: नमस्ते टिंकू जी।
3: मेरा मेन यही दो सवाल है। एक जो PPS अकाउंट जो खुलता है वरिष्ठ नागरिक के लिए, वो जैसे बैंक और पोस्ट ऑफिस में क्या अंतर है, ब्याज इंटरेस्ट या अंतर है? और एक ये है जो ATM कार्ड हम किसी बैंक से लेते हैं, क्या इसके साथ इंश्योरेंस मिलता है या ऐसी अफवाह है? कोई बताता है 2 लाख का इंश्योरेंस इसका फ्री रहता है इस पर? यही मेरा दो सवाल का जवाब चाहिए।
0: टिंकू जी, आपने जो सवाल किया है, आपको सीनियर सिटीजन्स के लिए अगर आप देखेंगे तो बैंक्स जो हैं वो भी आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट देते हैं, एडिशनल इंटरेस्ट रेट देते हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए। PPF में थोड़ी सी बंदिश रहती है, वो लॉक्ड इन रहता है, थोड़े बेटर रिटर्न्स भी आपको मिलते हैं वहाँ पर, फिक्स रिटर्न्स मिलते हैं जो सरकार नोटिफाई करती है। सरकार की तरफ से वो ब्याज दरें तय।

0: होती हैं,
1: टैक्स नहीं लगता उस पे,
0: और टैक्स भी नहीं लगता है,
1: दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग।
0: दूसरा चीज है कि बैंक्स में फिक्स डिपॉजिट तो रहता ही है, लेकिन अगर आपका फिक्स डिपॉजिट नहीं है तो नॉर्मल सीनियर सिटीजन्स में रेट में फ्लक्चुएशन जिस तरह से होता है वो उतार चढ़ाव का गुंजाइश रहता है।
1: All right, and now he asked another question.
0: Insurance की बात आपने कही थी, insurance के बारे में हमें इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ seniors वरिष्ठ नागरिकों के लिए insurance का है।
2: ATM कार्ड के साथ इन्होंने पूछा है कि ATM कार्ड के साथ इंश्योरेंस है या नहीं है।
0: ATM कार्ड के साथ
2: एक्चुअली वो बैंक अकाउंट के साथ आपको एक छोटा सा इंश्योरेंस जो बैंक्स ऑफर करते हैं आजकल हर अकाउंट के साथ,
0: ज्यादातर बैंक्स करने लगे हैं वो, लेकिन ऐसा कोई योजना नहीं है कि जो ATM कार्ड के साथ आपको सरकार की तरफ से कोई इंश्योरेंस दिया जा रहा है।
2: जी चलिए अगली खबर, आज की बड़ी खबर है जीडीपी। भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में ये वृद्धि दर 6.9% रही थी। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास की रफ्तार बरकरार है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में नॉमिनल जीडीपी में भी 10.3% की बढ़ोतरी हुई। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने आज चालू वित्त वर्ष के अप्रैल से जून तक के जीडीपी के तिमाही अनुमान जारी किए। अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन को तृतीय क्षेत्र ने प्रमुख रूप से मजबूती प्रदान की है। इस क्षेत्र में 10% की वृद्धि देखी गई। इसमें मुख्य योगदान वित्त, रियल एस्टेट, आईटी और प्रोफेशनल सेवाओं का रहा, जिनमें 12.1% की वृद्धि दर्ज की गई। द्वितीय क्षेत्र में 8.6% की वृद्धि हुई। प्राथमिक क्षेत्र में 2.9% की वृद्धि दर्ज की गई। इसमें मुख्य योगदान कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों का रहा, जिनमें चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 3.6% की बढ़ोतरी देखी गई।
1: So, how would you... All right, I think we go ahead and see the Prime Minister's reaction. Well, the Prime Minister has termed India's exemplary GDP growth of 7.8% in the first quarter of financial year 2026-27 a Herculean feat. In a social media post, the Prime Minister said that the achievement reflects the collective strength and resilience of the people of the country, despite oil price shocks, supply chain disruptions and global uncertainties. And before we go any further, we have Nitin online calling us from Delhi. Yes, Nitin ji, yeah, sawal puchhiyega apna ji.
3: Dhanyawad ji.
1: Ji.
3: Madam, mera ye puchna hai ki main senior citizen hoon aur mere abhi ek mahine baad meri maturity ho jayegi, abhi meri mature ho jayegi. To lagbhag achhi khasi 35-35 lakh ki hai. तो इसमें ये मुझे बताइए कि हमें मार्केट में पैसा लगाने की कोई जानकारी नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या और से बेस्ट स्ट्रेटजी से क्या मिल सकता है, या शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड कहाँ हम इस चीज के लिए सोचे हैं, क्योंकि बच्चों के लिए अगर बच्चे करते हैं तो इसके लिए तो वो कर सकते हैं।
2: तो आप कितने समय के लिए पैसा लगाना चाहते हैं?
3: लगभग जैसे हम हर साल एक साल की एफडी होती है, दो साल की भी होती है, तो अभी एक साल की मेरी मैच्योर हो जाएगी और दो साल की मेरी अगले साल मैच्योर होगी कुछ एफडियां, तो हम उसमें जाते हैं और सीधा हो जाता है, इसमें कोई सिरदर्दी नहीं हमें महसूस होती। शेयर मार्केट के लिए थोड़ा ज्ञान ज्यादा होना चाहिए, मार्केट की उतार चढ़ाव और क्या कैसा उसका तरीका
0: है। एकदम आपने सही कहा, शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए थोड़ी जानकारी चाहिए और इसीलिए मार्केट मंत्रा में आपको हम जानकारी देते हैं। आपकी एफडी जो है, एक तो आप कम अवधि के लिए उसको बैंक के साथ रखते हैं नितिन जी, जब तक आपको ज़रूरत नहीं है, आपके बच्चों को ज़रूरत नहीं है, तो आप उसे लंबी अवधि तक रखेंगे तो आपको टैक्स का बेनिफिट भी मिलेगा, आपको उसमें ब्याज भी बेहतर मिलेगा। अगर आप बाज़ार की तरफ आप उसमें कुछ अमाउंट आप निवेश करना चाहते हैं, तो जो थोड़े सेक्टर्स हैं, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ वाले सेक्टर्स हैं, जहां पर आपको लगता है, और जो कंपनीज जो जहां पे बहुत

0: मजबूत हैं, जो टॉप कंपनीज हैं, आप उस हिसाब से उनमें आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन आप वो देखिएगा कि अगर आप लंबी अवधि के लिए करते हैं तो आपको बेहतर उसमें रिटर्न्स मिल पाएंगे।
1: Yeah, considering the fact he's a senior citizen, so risk appetite should be low.
0: Low, exactly. I mean,
1: short-term investment is good.
0: You have money in hand.
2: Yes. और उन्हें FD पर रेट भी ज़्यादा मिलता है।
0: Exactly.
2: जी,
0: हाँ हाँ।
2: जी, दीपशिखा, आज की आप बड़ी खबर पे लौटते हैं। हम GDP के आंकड़े हैं जो बहुत उत्साहजनक दिखाई दे रहे हैं।
0: बहुत ही बेहतर आंकड़े जो हैं
2: जी,
0: वो आए हैं,
2: और
0: क्योंकि
2: खासकर जब दुनिया ऐसी चुनौतियों से गुजर रही
0: बिल्कुल
2: थी,
0: हमने देखा
2: उस
0: कि
2: बीच हमारे देश का
0: पूरा
2: प्रदर्शन
0: जो है 2-2.5 महीना जो है एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय था ये, तो उस दौर में। और अगर आप आंकड़े भी देखें GDP के, तो निवेश में बढ़ोतरी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत ही कहना चाहिए सेक्युलर ग्रोथ है। अगर आप देखते हैं कृषि क्षेत्र में भी जो एवरेज ग्रोथ चल रही है उसी हिसाब से है, तो आंकड़े जो हैं बहुत ही इनकरेजिंग हैं, बहुत ही बेहतर आंकड़े हैं और उम्मीद से बहुत ही बेहतर आए हैं, क्योंकि ये आशा नहीं थी कि ये क्वार्टर जो है हमारा इतना मजबूत रहेगा।
1: And the services sector, as always, we do well.
0: Services sector has always done well, and so it has remained, it has performed very well. But I think the important, or I think the fact which is leaping out is, how investment has grown and how it is doing now. Indications are that maybe, private investment has started to show some positive signs. So, which is a very positive indication coming out from the data.
2: जी, खबरों और चर्चा का सिलसिला तो चलता रहेगा। अभी चले अगले कॉलर के पास। दिल्ली से सतपाल सिंह हमारे साथ हैं। सतपाल जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
3: नमस्कार जी।
2: नमस्कार।
0: नमस्कार सतपाल जी।
3: हाँ जी।
1: जी, सवाल पूछिए।
3: मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल जो अमेरिका ईरान का जो ये चल रहा है, जो पॉलिटिकल इशू बना हुआ है काफी टाइम से, 6 महीने हो गए हैं, तो ये बता सकते हैं कि कौन सा सेक्टर अभी आगे चल सकता है इस सिचुएशन में? पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि गोल्ड के प्राइस कैसे रहने वाले हैं अगले 6 महीने में?
0: सतपाल जी, देखिए, जो जियोपॉलिटिकल संकट है वो तो हमने आज भी देखा, वो ख़त्म नहीं हो रहा है वेस्ट एशिया में। वहाँ पर समाधान जो है, एक कहना चाहिए जैसे ड्यूरेबल पीस जो है वो नहीं आ पा रही, और उसकी वजह से बाजार में बहुत उतार चढ़ाव चल रहा है। लेकिन आपने कहा कुछ एक क्षेत्र, अगर हम देखें आज के हमारे GDP के आंकड़े आए हैं, बहुत बेहतर प्रदर्शन रहा है इकोनॉमी का, उस हिसाब से अगर आप देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत स्थिति में है। आगे जाने वाले जो कुछ क्षेत्र हैं, आप क्योंकि अर्थव्यवस्था बेहतर कर रही है तो क्रेडिट का डिमांड रहेगा, फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग क्षेत्र आप देख सकते हैं। सरकार जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी खर्चा कर रही है, तो कैपिटल गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं वो देख सकते हैं। डिफेंस क्षेत्र में काफ़ी जो है वो काम हो रहा है, डिफेंस में आप देख सकते हैं, फार्मास्यूटिकल्स देख सकते हैं। तो ये कुछ एक सेक्टर्स हैं जो लॉन्ग टर्म में उम्मीद की जाती है कि ये आपको बेहतर रिटर्न्स देंगे। आपने कहा गोल्ड जो है, चूंकि जियोपॉलिटिकल अस्थिरता हम देख रहे हैं कि किस हिसाब से चल रही है, तो हमें लगता है कि आने वाले समय में एक गोल्ड एक लॉन्ग टर्म एसेट की तरह आप उसको देखिए, अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो।
1: राइट, वी कनेक्ट टू भोपाल नाउ एंड शंकर जी हैज जॉइंड अस। यस शंकर जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। या
4: नमस्ते मार्केट मंत्रा टीम। माय
0: नमस्ते
4: क्वेश्चन इज अबाउट निफ्टी व्हिच हैज बीन होवरिंग एट 24,000 फॉर लास्ट 3 years कंसेक्यूटिवली, 24, 25 एंड नाउ 26. The major reason could be FII is pulling out, and FII has pulled out because they fear that dollar will rise and they have to withdraw in dollar, and dollar will rise because of the international situation. So in this scenario, and also we have imposed, there are dollar fluctuation ke alawa ek aur problem hai ki they are taxed here at 12.5% on long term capital gain and short term capital gain. Isn't it time to for government to think something about this? Because okay, economy is doing well, but market is not performing, so it is not reflecting in our countries. None of the major factor, which is basically indicator.
0: Very interesting question, Shankar ji. You know, a lot of investors have been representing to

0: the government, but we saw they did, you know, give some relaxation with regard to investment for foreign portfolio investors in government securities. You know, it's a wider issue. Taxation is a wider issue, and there is a give and take. There is a lot of demand. Government has to carry out a lot of social expenditure. So I'm sure if they feel compelled to take this decision, they will at some juncture. I'm sure the policymakers are examining it.
1: जी, अगले कॉलर है कोलकाता से अतनु साहा, स्वागत है आपका, सवाल पूछे।
2: हाँ, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी, गुड इवनिंग टू मार्केट मंत्रा सर। माय क्वेश्चन इज मैम, दिस इज हेजिंग अगेंस्ट मार्केट वोलेटिलिटी अदर देन गोल्ड, व्हाट वुड बी मैम? थैंक यू।
1: और क्या हो सकता है?
0: और क्या हो सकता है? बिल्कुल, आप जो है अगर मार्केट के हिसाब से हेज करना चाहें तो आपको कम रिटर्न्स पे बैंक्स देखने पड़ेंगे, एफडीज देखने पड़ेंगे। यू एक्चुअली हैव टू लुक एट अ मोर बैलेंस्ड पोर्टफोलियो इन विच यू हैव यू नो ऑल काइंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट एज मिक्स विच विल गिव यू सम हेज अगेंस्ट वेरी शार्प फ्लक्चुएशंस और वेरी शार्प फॉल इन मार्केट्स।
3: All right, let's go ahead with some more news. 18 of the 19 subsectors under the Index of Services Production, that's ISP, recorded year-on-year expansion in June 2026, with 8 posting double-digit growth. According to the subsectoral trial, ISP data released by the Ministry of Statistics and Program Implementation, MoSPI, today, real estate led the pack with growth of 24.7%, followed by retail trade at 18%. Wholesale trade grew by 15.1%, administrative and support services rose 14.4%, and IT and computer related services increased 13.5%. Meanwhile, air transport was the only subsector to contract, falling 6% from a year earlier. Moving ahead, the government today notified the Semicon 2.0 scheme with an outlay of 1.27 lakh crore rupees to boost the chip manufacturing ecosystem in the country. With this, India could account for nearly 10% of the global semiconductor industry market in the coming years and is expected to play a much bigger role in the global semiconductor value chain. Union Minister for Electronics and Information Technology Ashwini Vaishnav said this while addressing the media in New Delhi today. After releasing the notifications for all the six pillars of the Semicon India Programme 2.0, Mr. Vaishnav noted that there is confidence among global semiconductor industry stakeholders that India is the right destination for major investments in the coming decades.
1: Yes, there is some reaction. India Electronics and Semiconductor Association ने आज Semicon 2.0 की आधिकारिक अधिसूचना का स्वागत किया। ये कार्यक्रम Semicon India प्रोग्राम की सफलता को आगे बढ़ाते हुए भारत की सेमीकंडक्टर क्षमताओं को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एसोसिएशन ने अपने बयान में कहा कि Semicon 2.0 का व्यापक दृष्टिकोण भारत की सेमी कंडक्टर क्षमता को काफ़ी मजबूत कर सकता है। इससे बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने, उच्च मूल्य वाले रोजगार के अवसर पैदा करने और वैश्विक स्तर पर एक भरोसेमंद सेमीकंडक्टर भागीदार के रूप में भारत की स्थिति मजबूत करने में मदद मिलेगी। और लालिमा, एक खबर जो अभी हमने आपने पढ़ी थी आईएसपी की, उस पर शायद हमें कुछ और गौर करने की जरूरत है। दीपशिखा, क्या कहना आपका?
0: देखिए, हम जीडीपी की चर्चा कर रहे थे। सर्विस क्षेत्र जो है काफी रोबस्ट स्थिति में है, उसका परफॉर्मेंस काफी कंसिस्टेंट रहा है, बेहतर कर रहा है। ये इंडेक्स जो है अभी थोड़ा नया इंडेक्स है, इसका ट्रायल पीरियड ही चल रहा है,
1: जी।
0: तो उसको उतना सीरियसली नहीं लेंगे, बट हाँ, काफी हद तक कैप्चर करता है ये सर्विस क्षेत्र का परफॉर्मेंस।
1: अच्छे संकेत
0: तो अच्छे संकेत हैं।
3: All right, now we are joined by Amit Jha from Delhi. जी अमित जी, सवाल पूछिए। जी
4: नमस्कार लालिमा मैम, आपका नमस्कार मैम।
3: नमस्कार जी, जी
4: आप रेनबो पे आती हैं तो अच्छा लगता है, हिंदी बोलते हो तो बड़ा अच्छा लगता है आपका।
3: जी जी, थैंक यू।
4: दीपशिखा मैडम से नमस्कार मैडम।
0: जी नमस्ते अमित जी, बताइए।
4: मैडम, आपसे मेरा प्रश्न ये है, जैसे जीडीपी का आंकड़े पे तो आप लोगों ने चर्चा कर ही लिया है, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है मैम कि अगर हम 2047 में विकसित अर्थव्यवस्था की मतलब हमने टारगेट ले रखा है, तो क्या ये जीडीपी का वृद्धि दर

0: कितने प्रतिशत के हिसाब से हम 2047 में विकसित भारत बन पाएंगे या वृद्धि दर और तेज करने की जरूरत है, अगर है तो किन सेक्टरों पर ज्यादा फोकस करना? धन्यवाद।
1: अमित जी, देखिए, अगर भारत को एक विकसित देश बनना है तो उसके लिए चहुमुखी विकास जरूरी होगा। विकसित देश बनने के लिए आपको वृद्धि, ग्रोथ तो चाहिए ही, आपकी अर्थव्यवस्था को बढ़ना तो है, लेकिन उसके साथ साथ और भी जो फैक्टर्स हैं, जो सोशल इंडिकेटर्स हैं, उन पर भी बहुत काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए सरकार ने ये लक्ष्य तय किया हुआ है और इस दिशा में काफ़ी काम किया जा रहा है।
2: जी, अगली खबर है अब एशियाई और यूरोपीय बाज़ारों की। एशियाई बाज़ारों में साउथ कोरिया का कोस्पी लगभग 1% पढ़कर बंद हुआ, जबकि जापान का निक्केई 0.1% नीचे आ गया। यूरोपीय बाज़ारों में कुछ देर पहले तक लंदन का फुटसी 0.2% ऊपर था, जबकि जर्मनी का डैक्स 0.7% नीचे कारोबार कर रहा था।
3: And let's take a look at the oil prices. Well, global crude oil prices rose over 3% today amid renewed geopolitical tensions. United States struck Iranian military targets on Larak Island in the Strait of Hormuz last night, and Tehran said it had retaliated. Brent crude was trading 3% up at $90.78 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 3.5% higher at $86.31 per barrel when reports last came in.
2: और सोने और चांदी का हाल तो देखे, लेकिन दीपशिखा, ये जो अभी लालिमा बता रही थी क्रूड ऑयल कच्चे तेल की बातें, जब तक लगता है जो अशांति है, और हम अभी पश्चिम एशिया की बात करें, उससे भी पहले से अगर हम देखें तो जो सीधे हमारे क्रूड सप्लाई को उतना प्रभावित नहीं कर रहा था रूस और यूक्रेन, उसके बाद और अभी ये पश्चिम एशिया तो खैर पता नहीं, रह रह कर ये चल ही रहा है। इसके साथ लगता है अब कहाँ, लेकिन भारत ने इस पूरे प्रकरण में अगर हम देखें
1: जी।
2: जितनी लोगों को आशंकाएं थी कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, इतनी क्राइसिस जाएगी, लेकिन भारत ने इसको बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया है।
1: बहुत, आप देखिए जो जीडीपी के आंकड़े हैं, इसमें इतनी चुनौतीपूर्ण स्थिति थी। आप देखिए सप्लाई चेन हमारी, उसको बना के रखना, क्योंकि हमारी बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज थी, कंपनीज थी, उनका सप्लाई जो है उनके इनपुट्स का, रॉ मटेरियल का, हॉर्मुज से आता है, उस क्षेत्र से आता था। तो उसके बावजूद हम जो है सप्लाई कायम रख पाए, अर्थव्यवस्था को जो सपोर्ट चाहिए था वो सपोर्ट दे पाए, और इसीलिए अर्थव्यवस्था अभी मजबूत स्थिति में है, खड़ी हुई है। और एक बहुत ही गहरा संकट था उस वक्त, अब हालांकि अभी भी स्थिति बहुत साफ नहीं है, लेकिन ये संकट जो है उस हद तक थोड़ा सप्लाईज वहाँ से आने लगा है, तो हो सकता है कि आगे जो है अर्थव्यवस्था और मजबूत बने, आगे चलकर
2: बेहतर प्रदर्शन करें।
1: हालांकि मॉनसून को लेके आशंकाएं हैं कि कंजम्पशन इंपैक्ट करेगा, लेकिन अब स्प्रेड जो है काफ़ी हो गया है, तो उम्मीद करते हैं कि हम शायद अगला क्वार्टर भी हमारा उतना ही मजबूत रहे।
3: एंड यू थिंक दीपशिखा, वी डिड द वाइज थिंग टू डाइवर्सिफाई आवर सोर्सेज ऑफ ऑयल बिकॉज ऑफ द स्टिकी पॉइंट एट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, नॉट जस्ट फॉर ऑयल बट फॉर मेनी अदर थिंग्स विद इम्पोर्ट, वी जस्ट डाइवर्सिफाइड एंड मूव टू अदर कंट्रीज एंड नॉट गॉट स्टक एट वन और टू एज बिफोर।
1: एब्सोल्युटली लालिमा, एंड आई थिंक दिस इज वॉट इंडिया डिड। You know, we are trying to cut dependence on single source of supply, not just for energy, but for all raw materials. And that is what government is also advising, suggesting to the industry, that they should not be dependent on single source for their supplies. So have a wider basket of suppliers, so that if something happens to one part of, you know, in one area of geography, your supplies are still sort of remains.
3: Yes.
2: जी, और देखिए सोने चांदी का हाल। भारतीय सर्राफा बाजार में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 2.3% से ज्यादा गिरकर 155,835 रुपए प्रति 10 ग्राम पर हो गई। वहीं चांदी की कीमत 2.7% नीचे 237,199 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। और दीपशिखा, आज वक्त इतना ही है, नहीं तो सवाल और भी हैं चर्चा करने के लिए, विषय भी बहुत सारे हैं।

0: बात सुबोध
1: जी, आपका आज बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आंकड़े जो हैं वो वैसे ही आई थिंक अपलिफ्ट कर रहे हैं
1: सबका मूड अच्छा है जी, बहुत बहुत शुक्रिया,
0: धन्यवाद।
2: एंड फ्रेंड्स, बिफोर वी क्लोज, हियर्स अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस डिक्लाइन, सेंसेक्स फॉल्स ओवर 300 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स बिलो 24,100। India's real GDP grows by 7.8% in first quarter of current financial year, and global crude oil prices surge. And friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor Subodh Mishra signing off. Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन के साथ बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। बाद में प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के पहले दिन आज राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिश्केक में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ आत्मीय संवाद किया। प्रधानमंत्री ने भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच मैत्री संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय की ऊर्जा, उत्साह और महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान श्री मोदी ने आज बिश्केक स्थित महात्मा गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
4: भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में ये वृद्धि दर 6.9% थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीडीपी वृद्धि को बड़ी उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये उपलब्धि देश के लोगों की दृढ़ता को दर्शाती है। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश के मजबूत आर्थिक प्रदर्शन का श्रेय लोगों की मेहनत को जाता है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के सुधारों और अर्थव्यवस्था के बेहतर प्रबंधन के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। सरकार ने देश में चिप निर्माण इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सेमिकॉन योजना के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। इसके साथ भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग बाजार का लगभग 10% हिस्सा हासिल कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में बताया कि देश ने 10 साल के लक्ष्य के मुकाबले 4 साल में 85,000 सेमीकंडक्टर इंजीनियरों को तैयार करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है। 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। सभी 8 प्रभावित जिलों में राहत और बचाव अभियान तेजी से जारी है। नेपाल में 5 से अधिक जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़े ढांचों में 900 से अधिक श्रमिकों के फंसे होने की आशंका है। संयुक्त अरब अमीरात ने अपने जल क्षेत्र के ऊपर ईरान की ओर से किए गए ड्रोन हमले की निंदा की है। यूएई की वायु रक्षा प्रणालियों ने ड्रोन को रोक दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह के हमले तनाव बढ़ाने वाले हैं और यूएई की सुरक्षा, स्थिरता तथा संप्रभुता के लिए खतरा है। मंत्रालय ने कहा कि ये हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का उल्लंघन है। यूएई ने कहा है कि वो अपनी सुरक्षा और संप्रभुता के लिए किसी भी खतरे

को बर्दाश्त नहीं करेगा और इन हमलों का जवाब देने का अधिकार रखता है। उसने इन हमलों को तुरंत रोकने की अपील की। यूएई ने मिसाइलों से जॉर्डन को निशाना बनाए जाने की भी निंदा की। AFC अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने आज सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दोस्तों लीग

0: நேர்களே, இன்று இரவு 8:15 இந்திய அரசின் வேளாண்மை மற்றும் உழவர் நல அமைச்சகம் வழங்கும் ஹெலோ ஃபார்மர்ஸ் நேரடி தொலைபேசி வழி நிகழ்ச்சி தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் 044-298-6-00-37. அழைக்க வேண்டிய நேரம் இரவு 8:15. தொடர்வது செய்தி அறிக்கை, டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन के साथ बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। बाद में प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादरो जापारोव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिश्केक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रहित को सर्वोपरि प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा। उन्होंने कहा कि युद्ध में बिताया गया हर दिन मानवता को पीछे धकेलता है, जबकि शांति की दिशा में उठाया गया हर कदम मानवता को नई आशा और उत्साह से भर देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कुछ ही दिनों में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। सभी भारतीय श्री पुतिन और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा के पहले दिन आज राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिश्केक में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ आत्मीय संवाद किया। प्रधानमंत्री ने भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच मैत्री संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय की ऊर्जा, उत्साह और महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान श्री मोदी ने आज बिश्केक स्थित महात्मा गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद GDP में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वित्त वर्ष की इस अवधि में यह वृद्धि दर 6.9% थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने GDP वृद्धि को बड़ी उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये उपलब्धि देश के लोगों की दृढ़ता को दर्शाती है। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश के मजबूत आर्थिक प्रदर्शन का श्रेय लोगों की मेहनत को जाता है। उन्होंने कहा कि NDA सरकार के सुधारों और अर्थव्यवस्था के बेहतर प्रबंधन के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। सरकार ने देश में चिप निर्माण इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सेमिकॉन योजना के 2रे चरण को अधिसूचित किया है। इसके साथ भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग बाजार का लगभग 10% हिस्सा हासिल कर सकता है। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है। 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। सभी 8 प्रभावित जिलों में राहत और बचाव अभियान तेजी से जारी है। नेपाल में 5 से अधिक जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़े ढांचों में 900 से अधिक श्रमिकों के फंसे होने की आशंका है। संयुक्त अरब अमीरात UAE ने अपने जल क्षेत्र के ऊपर ईरान की ओर से किए गए ड्रोन हमले की निंदा की है। UAE की वायु रक्षा प्रणालियों ने ड्रोन को रोक दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस तरह के हमले तनाव बढ़ाने वाले हैं और UAE की सुरक्षा, स्थिरता और संप्रभुता के लिए खतरा है। AFC अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप 2000

0: 27 के क्वालिफायर में भारत ने आज सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दोस्तलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगामयूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए चौथे भारत जर्मनी पर्यावरण मंच की बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से व्यापार, ऊर्जा और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, भारत यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के हर प्रयास का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ बातचीत में नौवहन की स्वतंत्रता और नागरिक सुरक्षा पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने किर्गिज गणराज्य और आर्मेनिया के नेताओं से भी मुलाकात की। वे कल शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे पर समझौते से लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मृतकों की संख्या 900 से अधिक हुई। उपकरणों की कमी से राहत और बचाव कार्य प्रभावित 4,247 से अधिक लोग लापता। और फुटबॉल में एफसी अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 26वें वार्षिक शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों, व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस के बीच सहयोग का नई ऊंचाइयों तक पहुंचना बहुत संतोष का विषय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
1: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
1: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देते। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कुछ ही दिनों में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
1: कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने भारत के रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा वाणिज्य की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर भी बल दिया। बाद में प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादुल जापारोव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा, आर्थिक, फार्मा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, संस्कृति और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री कल बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत और कतर के बीच लंबे समय से मजबूत

0: साझेदारी है जिसमें ऊर्जा सहयोग एक प्रमुख आधार है। श्री पुरी ने कतर में भारत के नवनियुक्त राजदूत डॉ के शिखर रेड्डी से मुलाकात की। श्री पुरी ने पेट्रोनेट एलएनजी और कतर एनर्जी के बीच 20 वर्ष के एलएनजी समझौते का उल्लेख किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आपको हर खबर से रखें अपडेट expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वित्त वर्ष के इसी अवधि में यह वृद्धि दर 6.9% थी। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास दर मजबूत बनी हुई है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी में भी 10.3% की बढ़ोतरी हुई। मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा कि सभी क्षेत्रों में वृद्धि बेहद सकारात्मक है।
2: ओवरऑल ग्रोथ इन ऑल सेक्टर्स हैज बीन वेरी पॉजिटिव और ये यही दर्शाता है कि जो प्रकार से इंटरवेंशन हुए हैं सरकार के वो इम्पैक्ट रख रहे हैं और जबकि ओवरऑल हालात में चेंजेस है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में उसके बावजूद ग्रोथ रेट इतनी पॉजिटिव है। प्राइवेट और सरकारी दोनों के ही कारण फिक्स कैपिटल ग्रोथ में होता है और 12% का ये भी दर्शाता है कि जो फ्यूचर क्वार्टर्स की ग्रोथ है उसका भी हम एक अंदेशा देता है कि क्या है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को बड़ी उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये उपलब्धि देश के लोगों की सामूहिक शक्ति और दृढ़ता को दर्शाती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि इस मजबूत आर्थिक प्रदर्शन का श्रेय देश के लोगों और उनकी कड़ी मेहनत को जाता है। वित्त मंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार द्वारा किए गए सुधार और अर्थव्यवस्था के कुशल प्रबंधन के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी जीडीपी वृद्धि की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का प्रमाण है। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। एक रिपोर्ट।
3: गृह मंत्री ने कहा कि इस समझौते से पूर्वी भारत में लंबे समय से चल रहे जल विवाद का समाधान हो गया है। उन्होंने कहा कि समझौते से बिहार और झारखंड के बड़े ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों किसानों को सिंचाई के लिए और लोगों को पीने का पानी उपलब्ध होगा। श्री शाह ने कहा कि इससे बिहार के भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, गया और पटना को पीने और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इसके अलावा झारखंड के पलामू, गढ़वा और अन्य क्षेत्रों में भी सिंचाई और पीने के लिए पानी उपलब्ध होगा। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के प्रति आभार व्यक्त किया। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: सरकार ने देश में चिप निर्माण इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सेमिकॉन योजना के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। इसके साथ भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग बाजार का लगभग 10% हिस्सा हासिल कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में बताया कि भारत में विकसित हो रहे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की भी उम्मीद है।
4: फैब्रिकेशन में, पैकेजिंग में, इक्विपमेंट में, मटेरियल्स में, इन सब में ट्रेनिंग दी जा रही है और जिस तरह का इकोसिस्टम बन रहा है बहुत जल्दी 50-60 हजार डायरेक्ट जॉब्स हर साल इसमें क्रिएट होंगे। ऑलरेडी डिजाइन में 50-60 हजार डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। अभी मैन्युफैक्चरिंग में भी इतना लेवल का इसमें जॉब्स क्रिएट होंगे।
0: स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के साथ सक्रिय शासन और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित बहुआयामी मंच पीएम प्रगति के अंतर्गत टीबी उन्मूलन प्रयासों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए अंतर मंत्रालयी समन्वय को मजबूत करने पर बल दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने एसिड की खुदरा बिक्री को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 2013 में दिए गए निर्देश के बावजूद एसिड की आसानी से उपलब्धता को लेकर चिंताओं के बीच आज केंद्र सरकार से पूछा है कि एसिड की खुदरा

0: बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए या इसे और कड़े नियमों के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। न्यायालय ने केंद्र, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 6 सप्ताह के भीतर एसिड हमले के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उचित नीति तैयार करने का भी निर्देश दिया है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के बाद मसौदा सूची जारी कर दिया है। सूची के अनुसार 97 लाख से अधिक मतदाता इसमें शामिल हैं, जबकि 47 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया है कि जिन मतदाताओं के नाम सूची में नहीं हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने दावे दाखिल कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची नवंबर में जारी की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद बचाव अभियान में लगे सुरक्षा कर्मियों को आधुनिक उपकरणों और हेलीकॉप्टरों की कमी के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने तथा हिमस्खलन के कारण आई इस बाढ़ ने भोटे कोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए और पनबिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। नेपाल सेना, नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल के जवानों को प्रभावित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में तैनात किया गया है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि आधुनिक बचाव उपकरणों की कमी के कारण खतरनाक इलाकों में बचाव अभियान विशेष रूप से कठिन हो रहा है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ को विनाशकारी प्राकृतिक आपदा बताया है। भारत ने नेपाल में बचाव कार्यों और पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए विशेष दल तैनात किए हैं। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश और कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई है। कई इलाकों में जलभराव के कारण जनजीवन प्रभावित है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। AFC अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने आज सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दोस्तलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगा मयूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में SCO शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से व्यापार, ऊर्जा और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, भारत यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के हर प्रयास का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजशकियान के साथ बातचीत में नौवहन की स्वतंत्रता और नागरिक सुरक्षा पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने किर्गिज गणराज्य और आर्मेनिया के नेताओं से भी मुलाकात की। वे कल शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे पर समझौते से लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मृतकों की संख्या 900 से अधिक हुई और FC अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज़।

नमस्कार दोस्तों, चर्चा के साप्ताहिक मंच पब्लिक स्पीक में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं मुनीश शर्मा। दोस्तों, एक दौर था जब बैंकों के बड़े बड़े दरवाजे देखकर आम आदमी हिचकिचाता था, साहूकारों के चंगुल में फंसकर पीढ़ियां कर्जे में डूब जाती थीं। लेकिन आज वक्त बदला है। आज आपकी जेब में रखा मोबाइल ही आपका बैंक खाता बन गया है, या कहें वित्तीय समावेशन का औजार बन गया है। चाहे वो प्रधानमंत्री जनधन खाता हो, रेड़ी पटरी वालों के लिए स्वनिधि योजना हो, या छोटे कारोबार के लिए मुद्रा लोन हो, वित्तीय समावेशन ने आखिरी

0: मैदान पर खड़े आदमी को भी ताकत दी है और उसे सशक्त बनाया है। जब एक महिला को स्वयं सहायता समूह से लोन मिलता है और वो अपनी सिलाई की दुकान या फिर बुटीक खोलती है तो वो सिर्फ एक दुकान नहीं खोलती बल्कि एक पूरा परिवार आत्मनिर्भर बनता चला जाता है। यही तो है असली नागरिक सशक्तिकरण, जब पैसा सीधा आपके खाते में आता है बगैर किसी बिचौलिए के, तो व्यवस्था पर भरोसा और बढ़ता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों एक ऐसे बदलाव की जो देश के आम नागरिक के जीवन को और बेहतर और स्वाभिमानपूर्ण बना रहा है। और आज इसी बदलाव की जानकारी पर आपसे चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया है आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी को और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व महाप्रबंधक और विशद अनुभव के धनी रमेश कुमार अरोड़ा जी को। स्टूडियो में आप दोनों ही विशेषज्ञों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है।
1: नमस्कार सभी श्रोताओं को, मेरा नमस्कार।
0: और दोस्तों हम बताएं कि विषय जो है हमारा बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर परिचर्चा। दोस्तों हमारे स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हैं, नंबर हैं 0112331081 और 2371711 2371711106 और 2331444। लेकिन अगर आप दिल्ली के बाहर से फोन कर रहे हैं तो भूलिए नहीं 011 जरूर डायल कीजिए। और व्हाट्सएप नंबर की भी सुविधा है जिस पर आप हमें सवाल अपने भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9289094044। तो दोस्तों हम इंतजार करेंगे आपकी जिज्ञासाओं का और बात करेंगे हम अपने विशेषज्ञों से भी। और मैं देख रहा हूं कि अंशु कुमार जी जुड़ रहे हैं हमसे पटना बिहार से, सुनते हैं उनका सवाल। जी जी अंशु कुमार जी बोलिए।
2: नमस्कार सर।
0: जी जी जी, क्या है आपकी जिज्ञासा? हाँ हाँ स्वागत।
2: सवाल यही था जो हम लोग को जब भी ब्याज है हम लोग हेलो
0: जी जी
2: हम लोग जब दिव्यांग गए तो हम लोग को जो पैसा मिलता है तो बैंक में पैसा निकालने से क्या क्या हम लोग को करना चाहिए? क्या हम लोगों को ओटीपी भी बताना चाहिए? अगर ओटीपी बताएंगे तो क्या क्या हो सकता है? और आधार कार्ड नंबर और खाता संख्या ये सब हम जब बता देंगे तो क्या क्या होगा?
0: बैंक से पैसा निकालने के विषय में इनका ये सवाल है कि ओटीपी नंबर अगर कोई और पूछता है तो संभवतः मैं जितना समझ पाया इन्होंने पूछा है तो क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? क्या यदि कोई और पूछ रहा है तो क्या वो बताना चाहिए?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी भी कोई भी बैंक आपसे ओटीपी की जानकारी नहीं मांगेगा, ना आपकी पूरा आधार नंबर की कोई डिटेल मांगेगा। ओटीपी केवल आपका पर्सनल के लिए है। जब भी आप बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, ऑनलाइन निकाल रहे हैं, तो आपको ओटीपी खुद आपको डालना है और उसी हिसाब से आपका पैसा ट्रांसफ़र हो पाएगा। या निकालना है एटीएम पर जा रहे हैं तो आपको अपना पिन जो है अपने आप कॉन्फिडेंशियल रखना है, ना कि किसी को बताना है। किसी को बताएंगे तो फ्रॉड होने के चांस पूरे हैं।
0: जी हाँ, ओटीपी तो दरअसल आपके पास है और उसे यदि आप किसी के साथ साझा करते हैं तो उसमें बेहद जोखिम है। और जैसा कि आपने बताया हमें, महाप्रबंधक आप रहे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रमेश कुमार अरोड़ा जी बता रहे थे, तो आप इस सलाह को ज़रूर आप फॉलो कीजिए, इस पर अमल कीजिए और अपना ओटीपी जो है किसी को बताइए नहीं। और अब मैं ये प्रश्न करना चाह रहा हूँ शुभमोय भट्टाचार्य जी से जो आर्थिक विश्लेषक हैं, कि आप हमें बताइए कृपया हमारे श्रोताओं को और हमें समझाइए कि ये जो वित्तीय समावेशन है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, दरअसल कैसे इसे समझा जाए कि क्यों इसकी जरूरत पड़ी?
3: सबसे पहले आकाशवाणी को नमस्कार मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए।
0: नमस्कार जी।
3: मैं वित्तीय समावेशन बहुत बड़ी शब्द है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी इस पर भी हम बहुत सारे शोध पत्र लेख वगैरह प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन मैं सीधा उदाहरण देता हूं। आज किसी

0: भी भारत के कोने में कोई भी खुदरा दुकान में आप जाइए, सबसे पहले दुकानदार आपको किसी भी चीज के बिक्री के लिए सबसे पहले वो QR कोड सामने पकड़ा देगा। उनको पता भी नहीं है कि QR कोड कैसे चलता है, उसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी है, लेकिन उनको ये भरोसा है कि ग्राहक जब उनसे कोई सामान खरीदते हैं QR कोड से पेमेंट करते हैं, वो पेमेंट बिल्कुल कंफर्टेबली उनके पास उनके बैंक खाते में चला जाता है। वो भी अपना जब कुछ भी चीज खरीदने जाते हैं उसी QR कोड के जरिए UPI में अपना पैसा अपना खाता देख लेते हैं और खाते और खुश होकर अपना जो भी खरीदारी वगैरह है उसका निपटाना करते हैं
1: जी।
0: ये जो चीज हुआ है लोगों को पूछने की जो जरूरत नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस जो मिल गया है उनको, जो जो अधिकार मिल गया है, मैं इसी को ही फाइनेंशियल इंक्लूजन मानूंगा कि लोग जानते हैं समझते हैं कि बटुए में पैसे रखकर या कहीं पे कुछ भी चीजों का जो पुराने समय का जो और पुराने समय कह रहा हूँ मतलब कुछ ही साल पहले का
1: जी जी
0: जो ये अनुभव था वो बिल्कुल लोगों के दिमाग से मानो बिल्कुल हट गया है, बिल्कुल इरेज हो गया है। मैं इसी को ही वित्तीय समावेशन मानूंगा। इसके बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे इसके स्टेप्स हैं, बहुत सारे इसके टेक्नोलॉजी हैं और इन पर हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस है कि भाई हम पैसा कहीं से भी ले सकते हैं, किसी तरीके से मिल सकता है, बस हमें एक QR कोड सामने होगा, वो हमारा पूरा सब काम के लिए अवेलेबल है। आज की रुपये का शायद रुपये का चेहरा शायद बहुत जगह पे लोगों को याद नहीं होगा कि रुपये का सिंबल क्या है, लेकिन QR कोड क्या है ये बच्चा बच्चा तक समझता है। और मैं समझता हूँ ये भारतीय फाइनेंशियल इंक्लूजन वित्तीय समावेश का ये सबसे बड़ा और सबसे पुष्ट उदाहरण है
1: जी। शुक्रिया। मैं मुखातिब होता हूं अब अरोड़ा साहब से जो हमारे विशेषज्ञ हैं, और उनसे मैं खास तौर पर ये जानना चाहता हूं कि सरकार ने वित्तीय समावेशन के लिए देखिए जनधन योजना, मुद्रा लोन, पीएम स्वनिधि जैसी कई बड़ी योजनाएं शुरू की हैं, तो आपका जो ये वर्षों का अनुभव है वो क्या बताता है कि इन योजनाओं में जमीनी स्तर पर आम आदमी के जीवन को, खासकर महिलाओं और छोटे दुकानदारों को किस तरह से प्रभावित किया है? तो ये तो है हमारा आपसे सवाल, लेकिन एक और सवाल हमारे पास एक श्रोता का दिखाई दिया था अभी, लेकिन शायद अभी लाइन पर नहीं है। जी हाँ, तो आप हमें ये बताइए कि किस तरह से आम आदमी के जीवन को, खासकर महिलाओं और छोटे दुकानदारों को इन योजनाओं ने प्रभावित किया है?
2: जैसा कि अभी भट्टाचार्य जी ने बोला है, वित्तीय समावेशन का केवल ये नहीं है कि हम एक बैंक में खाता खोलें। वित्तीय समावेशन का मतलब है कि बैंक में अकाउंट हो, उसे हम क्रेडिट सुविधा दें, छोटे जो हमारे लोग हैं या जो भी बैंक में आ रहा है उसको इंश्योरेंस की सुविधा दें, पेंशन की सुविधा दें और डिजिटल पेमेंट कराएं, तो तब हम ये मानेंगे कि हमारा वित्तीय समावेशन, केवल बैंक खाता ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ ये सारी फैसिलिटी भी हम दें। जहाँ तक बात है कि कितना बेनिफिट हुआ है सब लोगों को इसे वित्तीय समावेशन से, तो सबसे बड़ी बात जो है मिडिल मैन का, इनका निवारण हुआ है। जैसे गवर्नमेंट की कोई LPG की है, फर्टिलाइजर है, पेंशन है, स्कॉलरशिप है, ये पैसा जो है डायरेक्ट खाते में जमा हो रहा है, मिडिल मैन इसमें से बिल्कुल हट गया। तो कहने का मतलब सबसे बड़ा एक फायदा ये हुआ है कि जो हमारे गरीब लोग हैं, जो गांव में लोग हैं, जो बीच में, उन्हें मिडिल मैन की जरूरत नहीं है, सीधा पैसा उनके खाते में जा रहा है। दूसरा, जो इन्फॉर्मर मनी लेंडर्स हैं उनसे जो 40-50% 60% तक ब्याज पर पैसा उठाते थे, वो जब ये मुद्रा योजना आई, जब ये स्वनिधि योजना आई, इसके थ्रू क्या हुआ कि ये जो हमारे छोटे हैं गांव में किसान हैं, जो रेड़ी पटली वाले हैं, जो सब्जी बेचने वाले हैं, इनको जो है मनी लेंडर के पास ना जाके सीधा बैंकों के साथ जोड़ा गया है वित्तीय समावेशन के थ्रू, तो उनको ये बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। साथ में डिजिटल फाइनेंस का, जैसे अभी बात बताया डिजिटल का, UPI के थ्रू सारी पेमेंट आपका UPI के थ्रू हो रही है, तो कैश का ट्रांजेक्शन जो है कम से कम हो गया। और जो रूरल क्रेडिट असेस है वो हमारा बढ़

0: रहा है वित्तीय समावेशन के थ्रू। तो ये सारी चीजें होने के बाद साथ में हमें पेंशन की सुविधा मिल रही है, पेंशन की सुविधा अटल पेंशन योजना जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, और इसी तरीके से हमारी इंश्योरेंस की स्कीम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसके थ्रू पेंशन की सुविधा भी मिल रही है, साथ में इंश्योरेंस की सुविधा मिल रही है, और डिजिटल पेमेंट भी हो रहा है, क्रेडिट की सुविधा हमारी मिल रही है, और साथ में बैंक अकाउंट PMJDY के वो भी खुल रहे हैं
1: जी। तो आपने इन तमाम सुविधाओं की जानकारी दी हमें, जनधन योजना, मुद्रा लोन और पीएम स्वनिधि के अलावा अटल पेंशन की और जो बीमा की भी जो योजना है उनके विषय में आपने चर्चा की। तो आज हम देखें तो UPI और मोबाइल बैंकिंग की वजह से वित्तीय लेन देन तो काफ़ी आसान हो गया है, लेकिन साथ ही ऑनलाइन फ्रॉड और घोटाले भी काफ़ी बढ़े हैं। तो डिजिटल रूप से सुरक्षित रहने के लिए आप क्या सलाह देंगे हमारे श्रोताओं को, क्योंकि प्रायः ऐसी घटनाएं हम अखबारों में पढ़ते हैं, प्रचार माध्यमों से सुनते हैं कि बहुत सारी धोखाधड़ी की जो घटनाएं हैं वो अप्रिय घटनाएं वो देखने में आती हैं, तो उनसे बचने के लिए क्या आपकी सलाह होगी?
0: ये बिल्कुल सही है कि डिजिटल पेमेंट UPI के थ्रू जो हमारी पेमेंट हुई है इससे हमारा काफ़ी सुविधा हुई है, लेकिन साथ साथ इसके साथ रिस्क भी हुए हैं जिसके लिए हमें सावधानी बरतने की बहुत ज़रूरत है। तो सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, OTP आप किसी को शेयर ना करें, कोई अनजान कोई लिंक ना खोलें, ये सबसे जरूरी है, तभी आप इनसे बच सकते हैं। तो साथ में फाइनेंशियल लिटरेसी, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी बहुत बड़ा आजकल प्रोग्राम है कि फाइनेंशियल लिटरेट करना बहुत ज़रूरी है, सभी को बताना पड़ेगा कि हमें जहाँ ये हमें फ़ायदा हो रहा है UPI से, क्योंकि डेली बेसिस पर 60 से 66 करोड़ का पर डे की जो है ट्रांजेक्शन हो रही है रफली
1: जी।
0: और आप पर डे 20 ट्रांजेक्शन UPI के थ्रू कर सकते हैं, और 1,00,000 की मॉनिटरी कैप रखी हुई है, और 5,00,000 की कैप रखी है अगर आप हॉस्पिटल को या कहीं टैक्स वगैरह के लिए या स्कूल वगैरह पेमेंट करें। तो जब इतना बड़ा लेन देन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो साथ में थोड़ी सावधानी बरतना जरूरी है।
1: बिल्कुल जरूरी है। और हमारे साथ एक श्रोता फिर बिहार सासाराम से जुड़ रहे हैं, अमित उपाध्याय। तो उपाध्याय जी, क्या सवाल है आपका, कहिए।
2: नमस्कार, जितने भी विशेषज्ञ हैं, सबसे पहले तो बहुत बहुत बहुत बधाई कि हमारे जनधन खाता जो है खुले हैं 59 करोड़, ये बहुत अच्छा दिलचस्प है। इसमें भी मैं भी कोरेस्पोंडेंस नहीं चलाता हूँ, BC हूँ, और मेरा एक सवाल था सर कि जैसे अभी बजट में हम लोग जैसे कि UPI से जो पेमेंट हम लोग करते हैं अभी, तो UPI से जो बढ़ा हुआ है इसमें कुछ चार्जेस की कुछ बात हो रही थी कि इसमें घट रहा है या बढ़ा है, इस पर थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा प्रकाश डाल देना कि इसमें बढ़ा है या फिर घटा हुआ है। जैसे हम लोग जितना ट्रांजेक्शन करते हैं उस पर जितना हम लोग QR कोड से जो हम लोग पेमेंट करते हैं, तो इसका इसमें हम लोग जो महीना मंथली बेसिस पे इसको हम लोग गणना करते हैं, तो उसके हिसाब से इसको कुछ चार्ज करते हैं या टैक्स वगैरह इस पर थोड़ा सा।
1: बिल्कुल आपका प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है, और हमारे विशेषज्ञ आपकी इस जिज्ञासा का समाधान बिल्कुल करेंगे जी।
0: हाँ, ये जो चल रहा है अब, ये न्यूज़पेपर में भी आपने पढ़ा होगा, या बात अमित जी सही बात बोल रहे हैं, लेकिन इसमें कस्टमर को कोई अलग से पेमेंट नहीं लगेगी, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। ये अगर MDR के जो चार्ज लग रहे हैं वो भी जो बड़ी ट्रांजेक्शन्स के लिए हैं, वो जो जो जैसे दुकानदार वगैरह हैं उनके ऊपर चार्जेस लगने का प्लान है, अभी भी वो हुआ नहीं है फाइनल, इस पर डिस्कशन चल रहा है, लेकिन ये क्लियर कट हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोल दिया है कि आपको इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देने पड़ेंगे, यानी कस्टमर को इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको कोई चार्ज नहीं देने पड़ेंगे
1: जी। तो उम्मीद है कि आपकी इस जिज्ञासा का समाधान बिल्कुल हो गया है। और हमारे साथ राजस्थान की राजधानी जयपुर से जुड़ रहे हैं MR चौधरी। कहिए चौधरी साहब, क्या है आपका प्रश्न? जी कहिए सवाल।
3: ये मैंने फाइनेंस में भी सेक्रेटरी को चिट लिया, उसका कोई जवाब नहीं है
1: आपका प्रश्न
3: आम पब्लिक के लिए
1: जी। तो लगता है संपर्क कट गया है, और आपसे हम खैर एक और हमारा जो एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल जो हम अक्सर प्रायः लोगों से सुनते हैं वो ये है कि ऋण लेने के लिए व्यक्ति कहीं पर जाता है तो अक्सर उसका जो क्रेडिट स्कोर है या सिबिल स्कोर जो है वो बड़ा मायने रखता है, लेकिन बहुत से लोग इस बारे में जानते नहीं है कि कैसे एक आम आदमी अपने इस क्रेडिट स्कोर

0: को बेहतर बना सकता है। और ये जो स्कीम्स हैं, खास तौर पर ये जो समावेशन की जो हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन की ये जो योजनाएं हैं, क्या इनमें भी ये स्कोर मायने रखता है? जैसे कि हम कोई फर्ज कीजिए कि वाहन लोन लेने के लिए या मकान बनाने के लिए जाते हैं, तो वो देखा जाता है, तो इस विषय में क्या व्यवस्था है?
1: जैसे प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि स्कीम है, जो कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना है, इसमें कोई भी सिविल वगैरह की जरूरत नहीं है। कोई बैंक आपसे सिविल नहीं मांगेगा इसमें। जैसे फर्स्ट ट्रांच में 15,000 रुपये लोन मिलता है, सेकंड जो है 25,000 है, थर्ड ट्रांच में 50,000 है। तो इसमें कोई भी आपको जो है सिविल वगैरह की बैंक नहीं मांगेगा, ना ही सिविल की जरूरत पड़ती। हाँ, मुद्रा योजना में जरूर है कि उसको कोई डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। अगर कोई डिफॉल्टर है तो उसमें मुद्रा योजना में अधिकतर हमारा हाँ
0: जी बिल्कुल, आपने ये स्पष्ट कर दिया है कि सिबिल स्कोर की कहाँ ज़रूरत है और कहाँ नहीं। एक सवाल हम ले रहे हैं, हमसे जुड़ रहे हैं श्रोता शिमला से, और राकेश जी कहिए आपका क्या प्रश्न है।
2: जी नमस्कार, मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखाई शिमला हिमाचल प्रदेश। सर मेरा एक प्रश्न ये है कि जैसे कि हम दृष्टिहीन लोग हैं, हम बैंक नहीं जा सकते, हम अपना जो है बैंक बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं, कृपया करके आप बताइएगा।
0: हम अपना बैंक बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं? तो इस विषय में तो जाहिर है, चूंकि बैंकिंग से सीधे तौर पर हमारे विशेषज्ञ जुड़े रहे, तो वो आपकी जिज्ञासा का समाधान बिल्कुल करेंगे। जी
1: ऐसा है कि बैंक में जो भी आपके साथ दूसरा अकाउंट अगर होल्डर साथ में आपने रखा हुआ है, क्योंकि तो ट्रांजैक्शन होती है तो कभी दूसरा साथ में होगा, तो उसके थ्रू आप पता कर सकते हैं। और या आप अपना जो बैंक में जाके जो वहाँ का स्टाफ है उससे भी बैलेंस पता कर सकते हैं। तो यही एक तरीका है जिससे कि आप अपना बैलेंस पता कर सकते हैं।
0: शुभमोय सर, आपसे हमारी जो जिज्ञासा है वो ये है कि एआई की क्या भूमिका है इस वित्तीय समावेशन को संभव बनाने में, इसे एक विस्तार देने में? क्योंकि हमने अखबारों में पढ़ा था कि भारतीय जो रिजर्व बैंक है वो काफी इस विषय में सक्रिय रहा, तो इस पर कुछ हो सके तो प्रकाश डालिए।
3: बिल्कुल, और सबसे पहले मैं कहूंगा कि एआई, आप अभी सवाल का डिस्कशन कर रहे थे किस हमारे प्रश्नकर्ता से कि सिबिल स्कोर जिसके पास नहीं है उनको कैसे लोन मिल सकता है। तो एआई, भारत सरकार ने एक नया आयाम शुरू किया है, वो है यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस।
0: जी
3: ये एआई के मॉडल है, डिजिटल फुटप्रिंट, जिससे आम जनता जिनके पास सिबिल स्कोर नहीं है या सिबिल के किसी वजह से वो आए नहीं है, तो उनका जो पेमेंट, जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो क्यूआर कोड से, यूपीआई से वो पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट मिल रहा है उनको, वो देखकर ही एआई एक यूनिफाइड लेंडिंग का सिस्टम समावेशन शुरू किया है। ये
0: जी
3: बहुत बड़ा आयाम है जिससे हम कह सकते हैं फ्रिक्शनलेस क्रेडिट अवेलेबल होगा भारत के हर नागरिक को। यानी कि एक वित्तीय समावेशन का ये एक इतना बड़ा चीज है जिसको हम कह सकते हैं कि क्रेडिट लेंडिंग के मामले में
0: जी
3: ये एक नया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ये इतना बड़ा इसका प्रारूप तैयार हुआ है कि जिससे एपीआई बेस्ड फ्रेमवर्क से सबको सारे द लास्ट माइल जिसे हम कहते हैं, जो जो भारतीय है उनको भी क्रेडिट मिलेगा, सिबिल के ऊपर या क्रेडिट स्कोर के ऊपर उनको निर्भरशील नहीं रहना पड़ेगा। तो ये आप
0: जी
3: सोच सकते हैं कितनी बड़ी एक चीज है जो दुनिया में इसका कोई पैरेलल नहीं है, इस तरह का कोई एडवांसमेंट नहीं हुआ है।
0: महत्वपूर्ण
3: और
0: जानकारी शुभमोय जी, हम आपके पास फिर लौटेंगे, क्योंकि हमारे साथ एक श्रोता दिल्ली से हैं लाइन पर, धर्मवीर जी कहिए क्या है आपकी जिज्ञासा।
4: मुनीश जी नमस्कार, मैं धर्मवीर गांधी का दिल्ली से बोल रहा हूँ, हमारे एक्सपर्ट को मेरा नमस्कार।
0: जी
4: सर, मैंने
0: नमस्कार।
4: पिछले साल 2025 में 29 सितंबर को एक लगभग लगभग 30 लाख की पेमेंट एक सरकारी बैंक से मैच्योर हो गई थी, तो मैं अदर बैंक से प्राइवेट बैंक में जहाँ थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट ज्यादा था, तो हमने

0: वहाँ शिफ्ट कर दिया था, पर वो 29 तारीख की बजाय वो हमारे को पेमेंट हमारी 3 या 4 अक्टूबर को वहाँ शो कर रही, तो ये 5 दिन हम परेशान रहे। ऐसे में हम किससे जानकारी लेते, क्योंकि तो वो कहते हैं कि पेमेंट तो आपकी यहाँ से निकल गई है। फिर किसी ने बताया कि ये बीच में इसका एक नेटवर्क होता है जो चेक करता है कि ये फ्रॉड तो नहीं निकाली गई पेमेंट है। ऐसा भी होता है तो अच्छी बात है, पर हम लोग तो आम आदमी तो नहीं समझ पाता कि ये परेशानी हो गई है, तो टेंशन आम आदमी को ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बारे में थोड़ा समझाएं और राय दें, धन्यवाद।
1: जी ज़रूर ज़रूर धर्मवीर जी, ऐसा है कि जो भी अगर आपकी कोई शिकायत है तो आप डायरेक्टली पहले बैंक को लिख सकते हैं, और अगर आपकी वहाँ से बैंक से शिकायत पूरी नहीं हो पा रही, ठीक नहीं हो पा रही, तो ओम्बड्समैन होते हैं बैंक में, आप उनको डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर वहाँ से भी आपको सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिल पाता तो आप RBI के ओम्बड्समैन को भी अपनी शिकायत भेज सकते हैं और वहाँ से अपना शिकायत का निराकरण करा सकते हैं।
2: जी, तो उम्मीद है कि धर्मवीर जी आपको आपकी जिज्ञासा का ये समाधान हो गया होगा और आप इस तरह से संपर्क करेंगे तो आपको अपनी शिकायत के समाधान में सफलता मिलेगी। जो श्रोता हमसे अभी अभी जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, चर्चा का साप्ताहिक मंच है ये हमारा, और आज हम बात कर रहे हैं बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुँच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने के विषय पर चर्चा। और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शुभ मोय भट्टाचार्य जी और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व महाप्रबंधक रमेश कुमार अरोड़ा। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। आप हमारे एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर भी टैग Ask AIR के जरिए अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। ये कार्यक्रम दोस्तों हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। शुभमोय जी, आपसे हम बात कर रहे थे कि AI ने जो भूमिका निभाई है इस वित्तीय समावेशन को संभव बनाने में से विस्तार देने में, तो उसमें आपने बताया कि किस तरह से जो लैंडिंग सिस्टम है उसमें किस तरह से AI मददगार हुई है और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो AI ने संभव कर दिखाई हैं।
3: अभी जो आप प्रश्न ले रहे थे धर्मवीर जी से दिल्ली में
2: जी,
3: और जो सवाल कर रहे थे कि उनके अकाउंट में कोई काट चुकी हुआ है यानी कुछ कुछ कुछ इधर उधर हुआ है नहीं, इसको इस संभावना को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ने MuleHunter.AI करके एक बहुत पावरफुल टूल निकाला है
2: जी।
3: और उस टूल का मुख्य उद्देश्य यही है कि बैंकों में कोई ऐसे अकाउंट्स जो साइबर क्राइम को प्रोत्साहन देने के लिए, साइबर क्राइम को मदद करने के लिए खुले गए हों, किसी तरीके से वो उनको ब्लॉक करना। और ये AIML पावर टूल ट्रांजैक्शन पैटर्न को, मतलब जो कि उस अकाउंट से जुड़ा हुआ जिस जो भी फंडिंग तो जा रहा है उसको रियल टाइम में निगरानी करते हैं, उसमें उसके ऊपर अपना रेड फ्लैग इश्यू करते हैं, जो कि साधारण दृष्टि से एक ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं, एक आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है, बैंकर ट्रेंड होते हुए भी उनके लिए इतना इतना डिटेल देखना इम्पॉसिबल रहता है। और इस चीज को कि किसके किसका अकाउंट का पैसा किस वक्त कहां से अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाते वक्त कोई वही म्यूल अकाउंट या दूसरे अकाउंट में पहुंच ना जाए या उसके थ्रू से कुछ ट्रांजैक्शन ना हो, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह, जो एक बहुत बड़ा हथियार साबित हुआ है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के थ्रू से, तो ये दोनों ही लोगों के लिए बहुत बड़ा जिसे कहते हैं आयामी चीज
2: जी जी जी
3: संभव होगा।
2: महत्वपूर्ण ये जानकारी है, बड़ी उपलब्धि है AIIC के माध्यम से। और हमारे एक और श्रोता सोलापुर महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं हमसे, प्रकाश राउत। कहिए प्रकाश जी, क्या है आपकी जिज्ञासा?
4: मेरा यह प्रश्न है, क्रेडिट कार्ड तो अच्छा है
2: जी,
4: क्रेडिट कार्ड अच्छा वो होता है, पर कोई कारण से वो उसकी जी किस्त बिल होता है जो बाउंस होगा उसके ज्यादा दंड होते हैं, ज्यादा चार्जेस लगते हैं, उस पर GST बहुत लगता है, इसके रिजर्व बैंक की क्या पॉलिसी होती है, इसके क्या कारण है?
1: प्रकाश जी, ऐसा है कि क्रेडिट कार्ड में जब भी आपको काफी ग्रेस पीरियड मिलता है तो आपको जो ड्यू डेट है उस तक पूरा पैसा आपको जमा कराना आवश्यक है।

0: अदरवाइज आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी, इंटरेस्ट है जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है। तो आपको बेटर है कि जो भी आप में क्रेडिट कार्ड की जो ड्यू डेट है पेमेंट की, उस डेट तक आप पूरा पूरा पैसा जो है बैंक का जमा कीजिए, अदरवाइज आपको पेनल्टी भी देने पड़ सकती है और ब्याज भी आपको देना पड़ेगा।
1: जी, एक और सवाल हमारे पास आया हमारे श्रोता मनोज पानसे जी का, और आप पूछ रहे हैं कि बैंकिंग में जो डिजिटाइजेशन आया है और साइबर फ्रॉड जैसी घटनाएं हो रही हैं, उससे उसके लिए क्या प्रयास हो रहे हैं, क्रेडिट पाने के लिए किस प्रकार के उपाय और प्रयास हमें करने होंगे, ये इनका सवाल है।
0: ऐसा है कि जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है, अपने कोई लिंक ना खोलें जो अननोन है या ओटीपी किसी को शेयर ना करें, लेकिन फिर भी अगर फ्रॉड हो गया है तो उसके लिए 1930 एक 1930 साइबर हेल्पलाइन है, आप उस पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साथ ही अभी रिसेंटली ऐसा भी होने जा रहा है कि आपकी जो पेमेंट है आपको बतानी पड़ेगी कि इमीडिएटली क्रेडिट ना होके जाए, उसमें कुछ टाइम लग के आएगा, तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से काफ़ी कुछ इसमें प्रयास किए जा रहे हैं कि कम से कम जो है लोगों को इस दुर्घटना से बचाया जा सके, फ्रॉड से बचाया जा सके, लेकिन सावधानी आपको खुद को रखनी बहुत ज़रूरी है।
1: जी देखिए, अब एक और सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं इस विषय में, वो ये है कि जैसे स्टार्टअप कोई अगर युवा करना चाहते हैं शुरू, तो शुभमोय जी आपसे मैं पूछ रहा हूँ, तो वो किन दस्तावेज़ों के साथ तैयार रहें और बैंक से लोन लेने के लिए जब वो जाते हैं इस तरह के किसी उपक्रम के लिए, तो क्या चीज़ें जिनका उन्हें ख्याल रखना चाहिए?
2: ये बहुत अच्छा सवाल है, और सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि नए उद्यम लेकर जब हमारे युवा पीढ़ी जब जाते हैं प्रोग्राम अपने अपने अपने स्कीम को साकार करने के लिए, सबसे पहले हालांकि बैंक और में सब ने कहा था कि बहुत सारे जैसे मुद्रा स्कीम्स हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि उससे भी पहले अपना जो QR कोड है उस के जरिए उनका जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसका रिकॉर्ड लेकर अगर वो स्टार्टअप इंडिया की जो पॉसिबिलिटीज हो उसके तरफ अगर ध्यान दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक सशक्त माध्यम आ गया है जो है UPI। दूसरा, इसी साल RBI और नीति आयोग दोनों ही एक बहुत बड़ा आयाम शुरू किए हैं, वो ये है कि मिशन डिजिटल श्रम सेतु
1: जी, जो
2: अक्टूबर 2025 से शुरू हुआ है,
1: महत्वपूर्ण है जानकारी। और शुभमोय जी, दरअसल समय की है थोड़ी सी सीमा, बहुत सुंदर आपने जानकारी दी हमारे श्रोताओं को, और हम अपने उन तमाम श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने फोन लाइन और डिजिटल माध्यम से कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व महाप्रबंधक रमेश कुमार अरोड़ा ने हमारे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत की, आप दोनों विशेषज्ञों का भी धन्यवाद।
0: धन्यवाद
1: दोस्तों। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आपकी ये जो प्रतिक्रियाएं हैं वो हम हमेशा उनका इंतजार करते हैं, और आप हमें ज़रूर लिखिए AIRNSDtalks@gmail.com पर, और इसके साथ ही दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 26वें वार्षिक शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस के बीच सहयोग का नई ऊंचाइयों तक पहुंचना बहुत संतोष का विषय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
1: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना यही हम

0: दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
0: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कुछ ही दिनों में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
0: कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा।
1: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांत के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ भी बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठकों में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने भारत के रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। बाद में प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जपारोव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद बचाव अभियान में लगे सुरक्षाकर्मियों को आधुनिक उपकरणों और हेलीकॉप्टरों की कमी के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने और हिमस्खलन के कारण आई बाढ़ से भोटेकोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया था, जिससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए और पनबिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4,247 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने आज अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी। इसके साथ ही अर्जेंटीना के लिए मेसी के 20 वर्ष के करियर का अंत हो गया। मेसी ने अर्जेंटीना के लिए रिकॉर्ड 207 मैच खेले। AFC अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने आज सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दोस्तलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगाम्यूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश और कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उड़ीसा के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई। कई इलाकों में जलभराव के कारण जनजीवन प्रभावित है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय निशित कुमार। Prime Minister Narendra Modi held bilateral talk with Russian President Vladimir Putin on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization SCO summit at Bishkek in Kyrgyz Republic today. The discussion focused on key areas of India-Russia bilateral cooperation, including trade and investment, energy and defence. During the meeting, Prime Minister Modi said it was a matter of deep satisfaction that cooperation between India and Russia continued to scale new heights. On the Ukraine conflict, Prime Minister Modi said they must move from endless wars to ending wars, adding that India supports all efforts towards peace and will continue to do so.
0: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता

रहा है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देते हैं। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी

0: समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से व्यापार, ऊर्जा और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
1: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कुछ ही दिनों में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
1: कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजिश्कीन के साथ बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। बैठक के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता और नागरिक सुरक्षा पर बल दिया गया। प्रधानमंत्री ने किर्गिज गणराज्य और आर्मेनिया के नेताओं से भी मुलाकात की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। बाद में प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जाफरोव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: अपनी किर्गिस्तान की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिज गणराज्य के राष्ट्रपति और आर्मेनिया के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की। इन द्विपक्षीय बैठकों में आर्थिक और व्यापारिक साझेदारी के साथ ही सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने तथा दोनों देशों के लोगों के बीच बढ़ते संपर्कों पर भी चर्चा हुई। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज बिश्केक में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ आत्मीय संवाद किया। प्रधानमंत्री ने भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच मैत्री संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय की ऊर्जा, उत्साह और महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। श्री मोदी ने आज बिश्केक स्थित महात्मा गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: बेल्जियम के प्रधानमंत्री वार्ड डी वेवर बुधवार से 3 दिवसीय भारत दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री डी वेवर भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में एक व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह दौरा भारत बेल्जियम साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगा। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी 3M से भारत में अनुसंधान और विकास, उन्नत विनिर्माण और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से प्रौद्योगिकी, नवाचार और वैश्विक विनिर्माण के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहा है और वैश्विक कंपनियों के लिए यहाँ व्यापक अवसर उपलब्ध है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए 4th भारत जर्मनी पर्यावरण मंच की बैठक कल नई दिल्ली में आई।

0: आयोजित की जाएगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जर्मनी के पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण, जलवायु संरक्षण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टन स्वाइडर इस बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह वृद्धि दर 6.9% थी। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास दर मजबूत बनी हुई है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी में भी 10.3% की बढ़ोतरी हुई। मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा कि सभी क्षेत्रों में वृद्धि बेहद सकारात्मक है।
1: ओवरऑल ग्रोथ इन ऑल सेक्टर्स हैज बीन वेरी पॉजिटिव और ये यही दर्शाता है कि जो प्रकार से इंटरवेंशन हुए हैं सरकार के वो इम्पैक्ट रख रहे हैं और जबकि ओवरऑल हालात में चेंजेस है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में उसके बावजूद ग्रोथ रेट इतनी पॉजिटिव है। प्राइवेट और सरकारी दोनों के ही कारण फिक्स कैपिटल ग्रोथ में होता है और 12% का ये भी दर्शाता है कि जो फ्यूचर क्वार्टर्स की ग्रोथ है उसका भी हम एक अंदेशा देता है कि क्या है।
0: नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद बचाव अभियान में लगे सुरक्षा कर्मियों को आधुनिक बचाव उपकरणों और हेलीकॉप्टरों की कमी के कारण बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने और हिमस्खलन के कारण आई इस बाढ़ ने भोटेकोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है जिससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए और पनबिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि मृतकों की संख्या बढ़कर 939 हो गई है जबकि 4247 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। प्रधानमंत्री बलिंद्र शाह ने बाढ़ को अभूतपूर्व और विनाशकारी प्राकृतिक आपदा बताया है। दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने आज अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही अर्जेंटीना के लिए मेसी के 20 वर्ष के करियर का अंत हो गया। इस दौरान उन्होंने अर्जेंटीना को विश्व कप, 2 कोपा अमेरिका खिताब जीतने में बड़ी भूमिका निभाई। मेसी ने अर्जेंटीना के लिए रिकॉर्ड 207 मैच खेले। एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने आज सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद में खेले गए मुकाबले में सिंगामियुम शमी ने 66वीं मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से व्यापार, ऊर्जा और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की। भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की पहली तिमाही में वैश्विक चुनौतियों के बावजूद 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मृतकों की संख्या 900 से अधिक हुई। उपकरणों की कमी से राहत और बचाव कार्य प्रभावित और लियोनेल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम आरएस रघु विद द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds talks with Russian President Vladimir Putin in Bishkek, focusing on trade, energy and defense. Says India backs every effort to end war in Ukraine. Prime Minister Modi stresses freedom of navigation and civilian protection during meeting with Iran President Masoud Pezeshkian. Also meets Kyrgyz Republic and Armenian leaders. India's GDP jumps to 7.8% in first quarter of current fiscal, despite global headwinds. Relief and rescue efforts in Nepal flash flood tragedy hit by equipment shortage as death toll crosses over 900. Over 4,000 remain missing. And Lionel Messi announces retirement from international football. Prime Minister Narendra Modi held bilateral talks with Russian President Vladimir Putin on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization.

0: नमस्कार,
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 26वें वार्षिक शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस के बीच सहयोग का नई ऊंचाइयों तक पहुंचना बहुत संतोष का विषय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यह दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
2: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का

0: समर्थन करता है और करता रहेगा।
1: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कुछ ही दिनों में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
1: कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक है। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजिश्कीन के साथ भी बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने भारत के रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। बाद में प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जाफरोव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद बचाव अभियान में लगे सुरक्षा कर्मियों को आधुनिक उपकरणों और हेलीकॉप्टरों की कमी के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने और हिमस्खलन के कारण आई इस बाढ़ ने भोटेकोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए और पनबिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। AFC अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने आज सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दस्तलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगामियुम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने आज अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। मेसी ने अर्जेंटीना के लिए रिकॉर्ड 207 मैच खेले। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Prime Minister Narendra Modi held bilateral talks with Russian President Vladimir Putin on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization SCO summit at Bishkek in Kyrgyz Republic today. The discussions focused on key areas of India-Russia bilateral cooperation, including trade and investment, energy and defense. During the meeting, Prime Minister Modi said it was a matter of deep satisfaction that cooperation between India and Russia continued to scale new heights. On the Ukraine conflict, Prime Minister Modi said they must move from endless wars to ending wars, adding that India supports all efforts towards peace and will continue to do so.
1: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें

0: Namaskar and welcome to Market Mantra. Well, today, friends, being a Monday, we shall be taking your calls on your market-related queries. But please do remember that we do not address stock or company-specific queries. And the numbers on which you can call us are 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, please add a prefix of 011 as a code to these numbers. I'm your anchor, Lalima Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Subodh Mishra.
1: Dhanyavad Lalima, aur namaskar shrotaon, karobari khabron ke saath Market Mantra hazir hai. आज सोमवार है और हर सोमवार की तरह आज भी हम अर्थव्यवस्था और व्यापार जगत से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे, लेकिन याद रखें कि हम किसी खास कंपनी या शेयर से जुड़े सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे. सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं, 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106. श्रोता, इससे पहले STD कोड 011 भी डायल करें. आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड, हमारे साथ हैं आर्थिक पत्रकार दीपशिखा सिकरवार. दीपशिखा, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
2: धन्यवाद सुबोध जी.
1: पहले हेडलाइंस के साथ लालिमा ने चटाए.
0: हाँ जी, थैंक यू सुबोध. यस फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन विद द हेडलाइंस राइट अवे. वेल, बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडेक्सेस डिक्लाइन.

0: Sensex falls over 300 points. Nifty settles below 24,100. India's real GDP grows by 7.8% in first quarter of current financial year. And global crude oil prices surge.
1: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में गिरावट सेंसेक्स 300 अंकों से ज्यादा गिरा निफ्टी 24,100 से नीचे पहुंचा चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 7.8% बढ़ा और कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में उछाल

0: Well, before we move ahead with more financial news, friends, here's a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: Let's get going. खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले चलते हैं एक कॉलर के पास जो जुड़ गए हैं
0: जी जी
1: दिल्ली से सतीश हमारे साथ है स्वागत है सतीश आपका सवाल पूछे
0: जी सतीश आस्क योर क्वेश्चन प्लीज
2: यस माय क्वेश्चन इज मैम कि गोल्ड और सिल्वर का अभी आउटलुक कैसा रहेगा आने वाले दिनों में
3: सतीश जी गोल्ड में अगर आप देखें पिछले पिछले कुछ महीनों से थोड़ा सा करेक्शन आया था उस वक्त बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी थी लोगों के लिए लेकिन अब चूंकि जियोपॉलिटिकली अगर आप देखें कि क्राइसिस फिर जो है थोड़ा सा इंटेंस हो रहा है और उसको लेके कंसर्न्स हैं हो सकता है कि प्राइसेस जो हैं प्रेशियस मेटल्स के अभी और बढ़ें तो आप जो हैं एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखें अगर आपके पास नहीं है तो आप उसमें थोड़ा सा एक हिस्सा जो है प्रेशियस मेटल्स का रख सकते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म जो आउटलुक है दोनों प्रेशियस मेटल्स की वो काफ़ी अच्छी है
0: एंड गोल्ड एंड सिल्वर लव जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी
3: एब्सोल्युटली
1: चलिए राइट जी खबरों का सिलसिला शुरू करें हम पहले देखते हैं कि शेयर बाजार में क्या रहा देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में आज 0.4% की गिरावट दर्ज की गई सेंसेक्स 307 अंक गिरकर 76,957 पर बंद हुआ निफ्टी 95 अंक नीचे 24,080 पर आ गया एनएसई के अन्य सूचकांकों में मिला जुला रुख रहा मिड कैप 100 सूचकांक 0.2% बढ़ा जबकि स्मॉल कैप 100 0.7% नीचे आ गया पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच आज कारोबार की शुरुआत से ही सूचकांकों में कमजोरी रही पूरे सत्र में अधिकांश सेक्टर्स पर बिकवाली का दबाव बना रहा
0: Benchmark domestic equity indices ended 0.4% down today. The Sensex declined 307 points to close at 76,957. The Nifty dropped 95 points to settle at 24,080. Meanwhile, the broader market at the National Stock Exchange displayed a mixed trend. The mid-cap 100 index gained 0.2%, while the small-cap 100 index dipped 0.7%. Earlier, the markets opened on a weak note as escalating geopolitical tensions in West Asia and rising crude oil prices weighed on investor sentiment. Both the indices witnessed selling pressure across most sectors throughout the session.
1: और देखते हैं कि सेंसेक्स में शामिल कंपनियों के शेयर आज कैसे परफॉर्म किया सेंसेक्स में शामिल 30 में से 20 कंपनियों के शेयर आज नुकसान में रहे सबसे ज़्यादा गिरने वाले शेयरों पर नज़र डालें अडानी पोर्ट्स में 4.1% ITC में लगभग 3.7% और भारतीय एयरटेल में लगभग 2.8% की गिरावट देखी गई इसके उलट सन फार्मा में 1.9% ICICI बैंक में 1.7% और एक्सिस बैंक में 1.5% की बढ़त दर्ज की गई
0: Let's take a look at the sectoral indices now. And on the BSE 21, out of 28 sectors edged downward. Among the top laggards, utilities decreased 2.6%, metal lost 2.4%, services dipped 1.9%. In contrast, mid-small private banks' quality tilt rose.

0: over 1.2%. Mid-small private banks gained 1.2%, and BankEx added over 0.3%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,572 companies declined, 1,858 advanced, and 250 remained unchanged.
1: अगले कॉलर के पास जाने से पहले बता दे रुपए का हाल.
0: हाँ जी जी.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 22 पैसे बढ़कर 95.17 रुपए पर बंद हुआ.
0: एंड नाउ लेट्स कनेक्ट टू बिहार वेयर टिंकू राय इज ऑन द लाइन. जी टिंकू जी, सवाल पूछिए अपना. जी
2: नमस्ते मैम.
0: नमस्कार.
3: नमस्ते टिंकू जी.
2: मेरा मैम यही दो सवाल है. एक जो पीपीएस अकाउंट जो खुलता है वरिष्ठ नागरिक के लिए, वो जैसे बैंक और पोस्ट ऑफिस में क्या अंतर है, ब्याज इंटरेस्ट या अंतर है, और एक ये है जो एटीएम कार्ड हम किसी बैंक से लेते हैं, क्या इसके साथ इंश्योरेंस मिलता है या ऐसी अफवाह है? कोई बताता है 2 लाख का इंश्योरेंस इसका फ्री रहता है इस पर? यही मेरा दो सवाल का जवाब चाहिए.
3: टिंकू जी, आपने जो सवाल किया है, आपको सीनियर सिटीजन्स के लिए अगर आप देखेंगे तो बैंक्स जो हैं वो भी आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट देते हैं, एडिशनल इंटरेस्ट रेट देते हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए. पीपीएफ में थोड़ी सी बंदिश रहती है, वो लॉक्ड इन रहता है, थोड़े बेटर रिटर्न्स भी आपको मिलते हैं वहाँ पर, फिक्स रिटर्न्स मिलते हैं जो सरकार नोटिफाई करती है. सरकार की तरफ से वो ब्याज दरें तय होती हैं.
0: टैक्स नहीं लगता उस पर.
3: और टैक्स भी नहीं लगता है.
0: दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग.
3: दूसरा चीज़ है कि बैंक्स में फिक्स डिपॉजिट तो रहता ही है, लेकिन अगर आपका फिक्स डिपॉजिट नहीं है तो नॉर्मल सीनियर सिटीजन्स में रेट में फ्लक्चुएशन जिस तरह से होता है वो उतार चढ़ाव का गुंजाइश रहता है.
0: ऑल राइट. एंड नाउ ही आस्क अनदर क्वेश्चन.
3: इंश्योरेंस की बात आपने कही थी. इंश्योरेंस के बारे में हमें इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, सीनियर्स वरिष्ठ नागरिकों के लिए इंश्योरेंस का है.
1: एटीएम कार्ड के साथ इन्होंने पूछा है कि एटीएम कार्ड के साथ इंश्योरेंस है या नहीं.
3: एटीएम कार्ड के साथ
1: एक्चुअली वो बैंक अकाउंट के साथ आपको एक छोटा सा इंश्योरेंस जो बैंक्स ऑफर करते हैं आजकल हर अकाउंट के साथ,
3: ज्यादातर बैंक्स करने लगे हैं वो. लेकिन ऐसा कोई योजना नहीं है कि जो एटीएम कार्ड के साथ आपको सरकार की तरफ से कोई इंश्योरेंस दिया जा रहा है.
1: जी चलिए अगली खबर. आज की बड़ी खबर है जीडीपी. भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई. पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में ये वृद्धि दर 6.9% रही थी. वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास की रफ्तार बरकरार है. चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में नॉमिनल जीडीपी में भी 10.3% की बढ़ोतरी हुई. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने आज चालू वित्त वर्ष के अप्रैल से जून तक के जीडीपी के तिमाही अनुमान जारी किए. अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन को तृतीय क्षेत्र ने प्रमुख रूप से मजबूती प्रदान की है. इस क्षेत्र में 10% की वृद्धि देखी गई. इसमें मुख्य योगदान वित्त, रियल एस्टेट, आईटी और प्रोफेशनल सेवाओं का रहा, जिनमें 12.1% की वृद्धि दर्ज की गई. द्वितीय क्षेत्र में 8.6% की वृद्धि हुई. प्राथमिक क्षेत्र में 2.9% की वृद्धि दर्ज की गई. इसमें मुख्य योगदान कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों का रहा, जिनमें चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 3.6% की बढ़ोतरी देखी गई.
0: So, how would you? All right, I think we go ahead and see the Prime Minister's reaction. Well, the Prime Minister has termed India's exemplary GDP growth of 7.8% in the first quarter of financial year 2026-27 a Herculean feat. In a social media post, the Prime Minister said that the achievement reflects the collective strength and resilience of the people of the country, despite oil price shocks, supply chain disruptions, and global uncertainties. And before we go any further, we have Nitin online calling us from Delhi. Yes,

0: नितिन जी आप सवाल पूछिएगा अपना। जी
1: धन्यवाद जी।
0: जी
1: मैडम, मेरा ये पूछना है कि मैं सीनियर सिटीजन हूँ और मेरे अभी एक महीने बाद मेरी मैच्योरिटी हो जाएगी, एफडी मेरी मैच्योर हो जाएगी, तो लगभग अच्छी खासी है, 30-35 लाख की है, तो इसमें ये मुझे
2: चाहिए तो कि
1: हमें मार्केट में पैसा लगाने की कोई जानकारी नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या और से बेस्ट एफडी से क्या मिल सकता है, या शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड कहाँ हम इस चीज के लिए सोचें, क्योंकि तो बच्चों के लिए अगर बच्चे करते हैं तो इसके लिए तो वो कर सकते हैं।
3: तो आप कितने समय के लिए पैसा लगाना चाहते हैं?
1: लगभग जैसे हम हर साल एक साल की एफडी होती है, 2 साल की भी होती है, तो अभी 1 साल की मेरी मैच्योर हो जाएगी और 2 साल की मेरी अगले साल मैच्योर होगी कुछ एफडियां, तो हम उसमें जाते हैं और सीधा हो जाता है, इसमें कोई सिरदर्दी नहीं हमें महसूस होती। शेयर मार्केट के लिए थोड़ा ज्ञान ज्यादा होना चाहिए, मार्केट की उतार चढ़ाव और क्या कैसा उसका तरीका
2: है। एकदम आपने सही कहा, शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए थोड़ी जानकारी चाहिए और इसीलिए मार्केट मंत्रा में आपको हम जानकारी देते हैं। आपकी एफडी जो है, एक तो आप कम अवधि के लिए उसको बैंक के साथ रखते हैं नितिन जी, जब तक आपको ज़रूरत नहीं है, आपके बच्चों को ज़रूरत नहीं है, तो आप उसे लंबी अवधि तक रखेंगे तो आपको टैक्स का बेनिफिट भी मिलेगा, आपको उसमें ब्याज भी बेहतर मिलेगा। अगर आप बाज़ार की तरफ आप उसमें कुछ अमाउंट आप निवेश करना चाहते हैं, तो जो थोड़े सेक्टर्स हैं, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ वाले सेक्टर्स हैं, जहाँ पर आपको लगता है, और जो कंपनीज जो जहाँ पे बहुत मजबूत हैं, जो टॉप कंपनीज हैं, आप उस हिसाब से उनमें आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन आप वो देखिएगा कि अगर आप लंबी अवधि के लिए करते हैं तो आपको बेहतर उसमें रिटर्न्स मिल पाएंगे।
0: Yeah, considering the fact he's a senior citizen, so risk appetite should be low.
2: Low, and, exactly. I mean, short-term investment is good. You have money in hand.
3: Yes. और उन्हें FD पर rate भी ज़्यादा मिलता है.
2: Exactly.
3: जी. जी. दीपशिखा, आज की आप बड़ी खबर पे लौटते हैं, हम GDP के आंकड़े हैं जो बहुत उत्साहजनक दिखाई दे रहे हैं.
2: बहुत ही बेहतर आंकड़े जो हैं वो आए हैं, क्योंकि
3: खासकर जब दुनिया ऐसी चुनौतियों से गुजर रही थी,
2: हमने देखा
3: उस बीच हमारे देश का प्रदर्शन
2: जो है, 2-2.5 महीना जो है, बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय था ये, तो उस दौर में, और अगर आप आंकड़े भी देखें जीडीपी के, तो निवेश में बढ़ोतरी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत ही कहना चाहिए सेक्युलर ग्रोथ है, अगर आप देखते हैं कृषि क्षेत्र में भी जो एवरेज ग्रोथ चल रही है उसी हिसाब से है, तो आंकड़े जो हैं बहुत ही इनकरेजिंग हैं, बहुत ही बेहतर आंकड़े हैं और उम्मीद से बहुत ही बेहतर आए हैं, क्योंकि ये आशा नहीं थी कि ये क्वार्टर जो है हमारा इतना मजबूत रहेगा।
0: And the services sector, as always, we do well.
2: Services sector has always done well, and so it has remained, you know, it has performed very well. But I think the important, or I think the fact which is leaping out is, you know, how investment has grown and how it is doing now. Indications are that maybe, you know, private investment has started to show some positive signs. So, which is a very positive indication coming out from the data.
3: जी, yeah. खबरों और चर्चा का सिलसिला तो चलता रहेगा। अभी चले अगले कॉलर के पास। दिल्ली से सतपाल सिंह हमारे साथ है। सतपाल जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
4: नमस्कार जी।
3: नमस्कार
2: सतपाल जी।
4: हाँ जी।
0: जी सवाल पूछें।
4: मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल जो अमेरिका और ईरान का जो चल रहा है, जो पॉलिटिकल इशू बना हुआ है काफी टाइम से, 6 महीने हो गए हैं, तो ये बता सकते हैं कि कौन सा सेक्टर भी आगे चल सकता है इस सिचुएशन में? पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि गोल्ड के प्राइस कैसे रहने वाले हैं अगले 6 महीने में?
2: सतपाल जी, देखिए, जो जियोपॉलिटिकल संकट है वो तो हमने आज भी देखा, वो ख़त्म नहीं हो रहा है वेस्ट एशिया में, वहाँ पर समाधान जो है, एक कहना चाहिए जैसे ड्यूरेबल पीस जो है, वो नहीं आ पा रही, और उसकी वजह से बाज़ार में बहुत उतार चढ़ाव चल रहा है। लेकिन आपने कहा कुछ एक क्षेत्र, अगर हम देखें आज के हमारे जीडीपी के आंकड़े आए हैं, बहुत बेहतर प्रदर्शन रहा है इकोनॉमी का, उस हिसाब से अगर आप देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत स्थिति में है। आगे जाने वाले जो कुछ क्षेत्र हैं, आप क्योंकि अर्थव्यवस्था बेहतर

0: कर रही है तो क्रेडिट का डिमांड रहेगा. फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग क्षेत्र आप देख सकते हैं. सरकार जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी खर्चा कर रही है तो कैपिटल गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं वो देख सकते हैं. डिफेंस क्षेत्र में काफ़ी जो है वो काम हो रहा है, डिफेंस में आप देख सकते हैं. फार्मास्यूटिकल्स देख सकते हैं. तो ये कुछ एक सेक्टर्स हैं जो लॉन्ग टर्म में उम्मीद की जाती है कि ये आपको बेहतर रिटर्न्स देंगे. आपने कहा गोल्ड जो है, चूँकि जियोपॉलिटिकल अस्थिरता हम देख रहे हैं कि किस हिसाब से चल रही है, तो हमें लगता है कि आने वाले समय में एक गोल्ड एक लॉन्ग टर्म एसेट की तरह आप उसको देखिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो.
1: राइट, वी कनेक्ट टू भोपाल नाउ एंड शंकर जी हैज जॉइंड अस. यस शंकर जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. या
2: नमस्ते मार्केट मंत्रा टीम. माय क्वेश्चन इज अबाउट निफ्टी व्हिच हैज बीन होवरिंग एट 24,000 फॉर लास्ट 3 years कंसेक्यूटिवली, 24, 25 एंड नाउ 26. द मेजर रीजन कुड बी FII इज पुलिंग आउट एंड FII हैज पुल्ड आउट बिकॉज़ दे फियर दैट डॉलर विल राइज एंड दे हैव टू विथड्रॉ इन डॉलर एंड डॉलर विल राइज बिकॉज़ ऑफ द इंटरनेशनल सिचुएशन. So in this scenario, and also we have imposed, you know, there are dollar fluctuation ke alawa ek aur problem hai ki they are taxed here at 12.5% on long term capital gain and short term capital gain. Isn't it time to for government to think something about this, because okay, economy is doing well but market is not performing, so it is not reflecting in our countries, you know, the one of the major factor which is the basically indicator.
0: Very interesting question, Shankar ji. You know, a lot of investors have been representing to the government, but we saw they did, you know, give some relaxation with regard to investment for foreign portfolio investors in government securities. You know, it's a wider issue. Taxation is a wider issue, and there is a give and take. There is a lot of demand. Government has to carry out a lot of social expenditure. So I'm sure if they feel compelled to take this decision, they will at some juncture. I'm sure the policy makers are examining it.
3: जी, अगले कॉलर है कोलकाता से अतनु साहा, स्वागत है आपका, सवाल पूछे.
4: गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी, गुड इवनिंग टू मार्केट मंत्र सर. माई क्वेश्चन इज मैम, दिस इज हेजिंग अगेंस्ट मार्केट वोलेटिलिटी अदर देन गोल्ड, व्हाट वुड बी मैम? थैंक यू.
3: और क्या हो सकता है?
0: और क्या हो सकता है? बिल्कुल, आप जो हैं अगर मार्केट के हिसाब से हेज करना चाहें तो आपको कम रिटर्न्स पे बैंक्स देखने पड़ेंगे, FDs देखने पड़ेंगे. यू एक्चुअली हैव टू लुक एट अ मोर बैलेंस्ड पोर्टफोलियो इन विच यू हैव यू नो ऑल काइंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट एज मिक्स विच विल गिव यू सम हेज अगेंस्ट very sharp fluctuations or very sharp fall in markets.
1: All right, let's go ahead with some more news. 18 of the 19 subsectors under the Index of Services Production, that's ISP, recorded year-on-year expansion in June 2026, with 8 posting double-digit growth. According to the subsectoral trial, ISP data released by the Ministry of Statistics and Program Implementation, MOSPI, today, real estate led the pack with growth of 24.7%, followed by retail trade at 18%. Wholesale trade grew by 15.1%, administrative and support services rose 14.4%, and IT and computer related services increased 13.5%. Meanwhile, air transport was the only subsector to contract, falling 6% from a year earlier. Moving ahead, the government today notified the Semicon 2.0 scheme with an outlay of 1.27 lakh crore rupees to boost the chip manufacturing ecosystem in the country. With this, India could account for nearly 10% of the global semiconductor industry market in the coming years and is expected to play a much bigger role in the global semiconductor value chain. Union Minister for Electronics and Information Technology Ashwini Vaishnav said this while addressing the media in New Delhi today. After releasing the notifications for all the 6 pillars of the Semicon India Program 2.0, Mr. Vaishnav noted that there is confidence among global semiconductor industry stakeholders that India is the right destination for major investments in the coming decades.
3: Yes, par kuch pratikriya bhi hai. India Electronics and Semiconductor Association ne aaj Semicon 2.0 ki adhikarik adhisuchana ka swagat kiya. Ye karyakram Semicon India Program ki

0: सफलता को आगे बढ़ाते हुए भारत की सेमीकंडक्टर क्षमताओं को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एसोसिएशन ने अपने बयान में कहा कि सेमीकॉन 2.0 का व्यापक दृष्टिकोण भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता को काफ़ी मजबूत कर सकता है। इससे बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने, उच्च मूल्य वाले रोजगार के अवसर पैदा करने और वैश्विक स्तर पर एक भरोसेमंद सेमीकंडक्टर भागीदार के रूप में भारत की स्थिति मजबूत करने में मदद मिलेगी। और लालिमा, एक खबर जो अभी हमने आपने पढ़ी थी आईएसपी की, उस पर शायद हमें कुछ और गौर करने की जरूरत है। दीपशिखा, क्या कहना आपका?
1: देखिए, हम जीडीपी की चर्चा कर रहे थे। सर्विस क्षेत्र जो है काफी रोबस्ट स्थिति में है, उसका परफॉर्मेंस काफी कंसिस्टेंट रहा है, बेहतर कर रहा है। ये इंडेक्स जो है अभी थोड़ा नया इंडेक्स है, इसका ट्रायल पीरियड ही चल रहा है,
0: जी, जी, जी।
1: तो उसको उतना सीरियसली नहीं लेंगे, बट हाँ, काफी हद तक कैप्चर करता है ये सर्विस क्षेत्र का परफॉर्मेंस।
0: अच्छे संकेत
1: तो अच्छे संकेत हैं।
2: ऑल राइट, नाउ वी आर जॉइंड बाय अमित झा फ्रॉम दिल्ली। जी अमित जी, सवाल पूछिए। जी
3: नमस्कार लालिमा मैम, आपका नमस्कार मैम।
2: नमस्कार जी, जी।
3: आप रेनबो पे आते हैं तो अच्छा लगता है, हिंदी बोलते हो तो बड़ा अच्छा लगता है आपका।
2: जी जी, थैंक यू।
3: दीपशिखा मैडम से नमस्कार मैडम।
1: जी नमस्ते अमित जी, बताइए।
3: मैडम, आपसे मेरा प्रश्न ये है, जैसे जीडीपी का आंकड़े पे तो आप लोगों ने चर्चा कर ही लिया है, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है मैम कि अगर हम 2047 में विकसित अर्थव्यवस्था की मतलब हम ने टारगेट ले रखा है, तो क्या ये जीडीपी का वृद्धि दर इतने प्रतिशत के हिसाब से हम 2047 में विकसित भारत बन पाएंगे, या वृद्धि दर और तेज करने की जरूरत है? अगर है तो किन सेक्टरों पर ज्यादा फोकस करना? धन्यवाद।
1: अमित जी, देखिए, अगर भारत को एक विकसित देश बनना है तो उसके लिए चहुमुखी विकास जरूरी होगा। विकसित देश बनने के लिए आपको वृद्धि, ग्रोथ तो चाहिए ही, आपकी अर्थव्यवस्था को बढ़ना तो है, लेकिन उसके साथ साथ और भी जो फैक्टर्स हैं, जो सोशल इंडिकेटर्स हैं, उन पर भी बहुत काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए सरकार ने ये लक्ष्य तय किया हुआ है और इस दिशा में काफ़ी काम किया जा रहा है।
0: जी, अगली खबर है अब एशियाई बाजारों की। एशियाई बाजारों में साउथ कोरिया का कोस्पी लगभग 1% पढ़कर बंद हुआ, जबकि जापान का निक्केई 0.1% नीचे आ गया।
2: And let's take a look at the oil prices. Well, global crude oil prices rose over 3% today amid renewed geopolitical tensions. United States struck Iranian military targets on Larak Island in the Strait of Hormuz last night, and Tehran said it had retaliated. Brent crude was trading 3% up at $90.78 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 3.5% higher at $86.31 per barrel when reports last came in.
0: और सोने और चांदी का हाल तो देखे, लेकिन दीपशिखा, ये जो अभी लालिमा बता रही थी क्रूड ऑयल कच्चे तेल की बातें, जब तक लगता है जो अशांति है, और हम अभी पश्चिम एशिया की बात करें, उससे भी पहले से अगर हम देखें तो जो सीधे हमारे क्रूड सप्लाई को उतना प्रभावित नहीं कर रहा था, रूस और यूक्रेन, उसके बाद और अभी ये पश्चिम एशिया तो खैर पता नहीं, रह रह कर ये चल ही रहा है। इसके साथ लगता है अब कहाँ, लेकिन भारत ने इस पूरे प्रकरण में अगर हम देखें, जितनी लोगों को आशंकाएं थी कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, इतनी क्राइसिस जाएगी, लेकिन भारत ने इसको बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया है।
1: बहुत। आप देखिए, जो जीडीपी के आंकड़े हैं, इसमें इतनी चुनौतीपूर्ण स्थिति थी। आप देखिए, सप्लाई चेन हमारी, उसको बना के रखना, क्योंकि हमारी बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज थी, कंपनीज थी, उनका सप्लाई जो है उनके इनपुट्स का, रॉ मटेरियल का, हॉर्मुज से आता है, उस क्षेत्र से आता था। तो उसके बावजूद हम जो है सप्लाई कायम रख पाए, अर्थव्यवस्था को जो सपोर्ट चाहिए था वो सपोर्ट दे पाए, और इसीलिए अर्थव्यवस्था अभी मजबूत स्थिति में है, खड़ी हुई है। और एक बहुत ही गहरा संकट था उस वक्त, अब हालांकि अभी भी स्थिति बहुत साफ नहीं है, लेकिन ये संकट जो है उस हद तक थोड़ा सप्लाईज वहाँ से आने लगा है, तो हो सकता है कि आगे जो है अर्थव्यवस्था और मजबूत बने आगे चलकर,
0: बेहतर प्रदर्शन की।

0: बेहतर प्रदर्शन करें। हालांकि मॉनसून को लेके आशंकाएं हैं कि कंजम्पशन इम्पैक्ट करेगा, लेकिन अब स्प्रेड जो है काफ़ी हो गया है, तो उम्मीद करते हैं कि हम शायद अगला क्वार्टर भी हमारा उतना ही मजबूत रहे।
1: एंड यू थिंक दीपशिखा वी डिड द वाइज थिंग टू डाइवर्सिफाई आवर सोर्सेज ऑफ ऑयल बिकॉज ऑफ द स्टिकी पॉइंट एट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, नॉट जस्ट फॉर ऑयल बट फॉर मेनी अदर थिंग्स विद इम्पोर्ट। वी जस्ट डाइवर्सिफाइड एंड मूव टू अदर कंट्रीज एंड नॉट गॉट स्टक एट वन और टू एज बिफोर।
0: Absolutely, Lalima, and I think this is what India did. We are trying to cut dependence on single source of supply, not just for energy, but for all raw materials. And that is what government is also advising, suggesting to the industry, that they should not be dependent on single source for their supplies. So have a wider basket of suppliers, so that if something happens to one part of in one area of geography, your supplies are still sort of remain.
1: Yes.
2: जी, और देखिए सोने चांदी का हाल, भारतीय सर्राफा बाजार में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 2.3% से ज्यादा गिरकर 155,835 रुपए प्रति 10 ग्राम पर हो गई। वहीं चांदी की कीमत 2.7% नीचे 237,199 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। और दीप शिखा, आज वक्त इतना ही है, नहीं तो सवाल और भी हैं चर्चा करने के लिए, विषय भी बहुत सारे हैं।
0: धन्यवाद सुबोध जी,
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आंकड़े जो हैं वो वैसे ही आई थिंक अपलिफ्ट कर रहे हैं,
2: सबका मूड अच्छा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया।
1: एंड फ्रेंड्स, बिफोर वी क्लोज, हियर्स अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस डिक्लाइन, सेंसेक्स फॉल्स ओवर 300 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स बिलो 24,100। इंडियाज रियल जीडीपी ग्रोज बाय 7.8% in first quarter of current financial year, and global crude oil prices surge. And friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself Lalima Aneja Dang and my co-anchor Subodh Mishra signing off. Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.
5: ஆகாஷ்வாணி சென்னை வானொலியில் 100.1 FM கோல்ட் அலைவரிசை. நேரம் 11:40.

0: ஒழித்த பாடலுடன் நிறைவு பெற்றது இன்றைய திரைகானம். தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே பவ்தாரணி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में वर्ल्ड नोमेड गेम्स के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया. प्रधानमंत्री मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किर्गिस्तान में हैं. उन्होंने खेलों में हिस्सा ले रहे भारतीय दल से मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दी. वर्ल्ड नोमेड गेम्स का छठा संस्करण 31 अगस्त से 6 सितंबर तक किर्गिस्तान में आयोजित किया जा रहा है. इसमें 100 से अधिक देशों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. भारत का 87 सदस्यीय दल इन खेलों में हिस्सा ले रहा है. उद्घाटन समारोह में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन समेत SCO के कई अन्य नेताओं ने भी हिस्सा लिया. इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस, ईरान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की. प्रधानमंत्री मोदी आज SCO के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की. इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों, व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस के बीच सहयोग का नई ऊंचाइयों तक पहुंचना बहुत संतोष का विषय है. प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा.
2: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं. राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना यही हम दोनों की सोच रही है

0: आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
0: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देते हैं। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कुछ ही दिनों में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकिन के साथ भी बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की और विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में कल नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4,247 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने और हिमस्खलन के कारण आई बाढ़ ने भोटे कोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए और पनबिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। AFC अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दसलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगामियुम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi held bilateral talks with Russian President Vladimir Putin on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization SCO summit at Bishkek in Kyrgyz Republic yesterday. The discussions focused on key areas of India-Russia bilateral cooperation, including trade and investment, energy and defense. During the meeting, Prime Minister Modi said it was a matter of deep satisfaction that cooperation between India and Russia continued to scale new heights. On the Ukraine conflict, Prime Minister Modi said they must move from endless wars to ending wars, adding that India supports all efforts towards peace and will continue to do so.
0: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देते हैं। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
2: During the meeting, the Prime Minister said all Indians are eager to welcome President Putin to the BRICS summit, which will be hosted in New Delhi in the coming days. President Vladimir Putin showed his satisfaction that Indian-Russian relations continued to strengthen on the basis of the principles of a special and privileged partnership. Prime Minister Modi also held bilateral meetings with leaders of Iran, Kyrgyz Republic and Armenia yesterday. Mr. Modi and Iran President Dr. Masoud Pezeshkian, during their meeting, reviewed recent developments in the West Asia region and shared perspectives on the evolving situation. Mr. Modi expressed concern at the escalation of tensions in the region and reiterated

0: தாய் கிளவி.
1: ஏன் கோச்சிட்டு போதியா?

0: அடுத்த பாடலுடன் நிறைவு பெற்றது இந்த இரவின் மடியில் நிகழ்ச்சி. தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே பவதாரிணி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में वर्ल्ड नोमेड गेम्स के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया. प्रधानमंत्री मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किर्गिस्तान में हैं. उन्होंने खेलों में हिस्सा ले रहे भारतीय दल से मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दी. वर्ल्ड नोमेड गेम्स का छठा संस्करण 31 अगस्त से 6 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है. इसमें 100 से अधिक देशों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. भारत का 87 सदस्य दल इन खेलों में हिस्सा ले रहा है. उद्घाटन समारोह में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजिशकिन समेत SCO के कई नेता भाग ले रहे हैं. इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस, ईरान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की. प्रधानमंत्री मोदी आज SCO के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन से बातचीत की. इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया. प्रधानमंत्री ने कहा है कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा.
2: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं. राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा.
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है. उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा.
2: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं. भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा. युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और

0: शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर दे। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
1: वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजिशकीन के साथ भी बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। उन्होंने विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यापक समीक्षा बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने बताया कि बैठक में देश में हरित विकास को गति देने और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी पहलुओं को मजबूत करने पर चर्चा हुई। इसमें विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्य पर ध्यान दिया गया। बैठक में प्रधानमंत्री सूर्य घर, पीएम कुसुम और पीएम जनमन जैसी केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की गई। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4,247 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने और हिमस्खलन के कारण आई बाढ़ ने भोटेकोशी नदी के किनारों के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए और पनबिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इबोला का प्रकोप गंभीर होता जा रहा है। नए आंकड़ों के अनुसार 6,041 मामलों की पुष्टि हुई है और 2,911 लोगों की मौत हुई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इसे अब तक का सबसे तेजी से फैलने वाला इबोला प्रकोप बताया है। एएफसी अंडर-20 फुटबॉल एशियाई कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Prime Minister Narendra Modi held bilateral talks with Russian President Vladimir Putin on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization SCO summit at Bishkek in Kyrgyz Republic yesterday. The discussions focused on key areas of India-Russia bilateral cooperation, including trade and investment, energy and defense. During the meeting, Prime Minister Modi said it was a matter of deep satisfaction that cooperation between India and Russia continued to scale new heights. On the Ukraine conflict, Prime Minister Modi said they must move from endless wars to ending wars, adding that India supports all efforts towards peace and will continue to do so.
0: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देते। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
2: During the meeting, the Prime Minister said all Indians are eager to welcome President Putin to the BRICS summit, which will be hosted in New Delhi in the coming days. President Vladimir Putin showed his satisfaction that Indian-Russian relations continue to strengthen on the basis of the principles of a special and privileged partnership. Prime Minister Modi also held bilateral meetings with leaders of Iran, Kyrgyz Republic and Armenia yesterday. Mr. Modi and Iran President Dr. Masoud Pezeshkian, during their meeting, reviewed recent developments in the West Asia region and shared perspectives on the evolving situation. Mr. Modi expressed concern at the escalation of tensions in the region and reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy. Calling for safeguarding the freedom of navigation and commerce, Mr. Modi emphasized that civilians and civilian infrastructure, including commercial shipping and seafarers, must not be harmed under any circumstances. Today, on the final day of his visit to Kyrgyz Republic, Prime Minister Modi will address the 26th summit of Shanghai Cooperation Organization.

0: ஒழித்த பாடல்கள் நிறைவு பெற்றது இன்று நினைவில் நின்றவை நிகழ்ச்சி. தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே பவதாரிணி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में वर्ल्ड नोमेड गेम्स के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया. प्रधानमंत्री मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किर्गिस्तान में हैं. उन्होंने खेलों में हिस्सा ले रहे भारतीय दल से मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दी. वर्ल्ड नोमेड गेम्स का छठा संस्करण 31 अगस्त से 6 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है. इसमें 100 से अधिक देशों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. भारत का 87 सदस्य दल इन खेलों में हिस्सा ले रहा है. उद्घाटन समारोह में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिस्कियन, एसएससीओ के कई नेता ने भी हिस्सा लिया. इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस, ईरान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की. प्रधानमंत्री मोदी आज एससीओ के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन से बातचीत की. इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों, व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया. प्रधानमंत्री ने कहा है कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा.
2: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं. राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा.
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है. उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा.
2: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं. भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा. युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है. हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है.
1: वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं. गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में कल नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया. ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ.

0: गृहमंत्री ने कहा कि समझौते से पूर्वी भारत में लंबे समय से चल रहे विवाद का समाधान हो गया है। कोलकाता में कल चार संगठनों ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ कथित अत्याचारों को रोकने के लिए भारत सरकार से आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। कोलकाता प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगठनों ने शहरयार कबीर, प्रोफेसर डॉक्टर अबुल बरकत, वकील राणा दास गुप्ता और चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी के मामलों में न्याय सुनिश्चित करने की भी अपील की। संगठनों ने आरोप लगाया कि 5 अगस्त 2024 के राजनीतिक बदलाव के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले बढ़े हैं। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4,247 से अधिक लोग लापता हैं। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने और हिमस्खलन के कारण आई बाढ़ ने भोटे कोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए और पनबिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश और कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi held bilateral talks with Russian President Vladimir Putin on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization SCO summit at Bishkek in Kyrgyz Republic yesterday. The discussions focused on key areas of India-Russia bilateral cooperation, including trade and investment, energy and defense. During the meeting, Prime Minister Modi said it was a matter of deep satisfaction that cooperation between India and Russia continued to scale new heights. On the Ukraine conflict, Prime Minister Modi said they must move from endless wars to ending wars, adding that India supports all efforts towards peace and will continue to do so.
2: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
1: During the meeting, the Prime Minister said all Indians are eager to welcome President Putin to the BRICS summit, which will be hosted in New Delhi in the coming days. President Vladimir Putin showed his satisfaction that Indian-Russian relations continue to strengthen on the basis of the principles of special and privileged partnership. Prime Minister Modi also held bilateral meetings with leaders of Iran, Kyrgyz Republic and Armenia yesterday. Mr. Modi and Iran President Dr. Masoud Pezeshkian, during their meeting, reviewed recent developments in the West Asia region and shared perspectives on the evolving situation. Mr. Modi expressed concern at the escalation of tensions in the region and reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy. Calling for safeguarding the freedom of navigation and commerce, Mr. Modi emphasized that civilians and civilian infrastructure, including commercial shipping and seafarers, must not be harmed under any circumstances. Today, on the final day of his visit to Kyrgyz Republic, Prime Minister Modi will address the 26th summit of the SCO. Prime Minister Narendra Modi, along with the leaders of SCO leaders, participated in the official opening ceremony of the 6th World Nomad Games in Bishkek, the capital of Kyrgyzstan, on Monday evening. The biennial event celebrates the rich sporting traditions, culture and heritage of nomadic civilizations, bringing together countries in a vibrant celebration of their shared culture. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the loss of lives in the fire accident that occurred in Kaushambi district of Uttar Pradesh. At least 11 people, including 2 children, were killed and 5 others were critically injured in a massive explosion at a firecracker factory in Kaushambi. In a social media post, President conveyed condolences

0: நேயர்கள் இதுவரை கேட்டு மகிழ்ந்தது நெஞ்சம் மறப்பதில்லை. ஆகாஷ்வாணியின் எஃப்எம் கோல்டில் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் பணக்காரன் மற்றும் ராஜா கையவச்சா ஆகிய திரைப்படங்களுக்காக ஒரு சில பாடல்கள் வந்து சென்றன. பண்பதில் தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே பவ்தாரிணி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में वर्ल्ड नोमेड गेम्स के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किर्गिस्तान में हैं। उन्होंने खेलों में हिस्सा ले रहे भारतीय दल से मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। वर्ल्ड नोमेड गेम्स का छठा संस्करण 31 अगस्त से 6 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इसमें 100 से अधिक देशों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत का 87 सदस्यीय दल इन खेलों में हिस्सा ले रहा है। उद्घाटन समारोह में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजिशकियन समेत SCO के कई अन्य नेताओं ने भी हिस्सा लिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस, ईरान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी आज SCO के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
2: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
2: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देते हैं। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
1: वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद GDP में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह वृद्धि दर 6.9% थी। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास दर मजबूत बनी हुई है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में GDP में भी 10.3% की बढ़ोतरी हुई। गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में कल नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में

0: பண்பலையில் தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள். டெல்லி ஏஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே பவதாரணி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे. इससे पहले कल प्रधानमंत्री ने बिश्केक में वर्ल्ड नोमेड गेम्स के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया. उन्होंने खेलों में हिस्सा ले रहे भारतीय दल से मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दी. वर्ल्ड नोमेड गेम्स का 6ठा संस्करण 31 अगस्त से 6 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है. इसमें 100 से अधिक देशों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. इसमें भारत का 87 सदस्य दल शामिल है. उद्घाटन समारोह में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजिशकिन समेत एससीओ के कई अन्य नेताओं ने भी हिस्सा लिया. प्रधानमंत्री मोदी ने कल शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस, ईरान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की. प्रधानमंत्री ने बिश्केक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की. इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों, व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना और दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा.
2: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं. राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा.
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है. उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा.
2: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं. भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा. युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देते हैं. हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है.
1: वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं. उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट में 11 लोगों की मौत हो गई है. मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं. इस हादसे में लोगों की मौत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों के लिए 50,000 रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है. नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4,247 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं. 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने और हिमस्खलन के कारण आई बाढ़ ने भोटेकोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए और पनबिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि नेपाल के प्रभावित क्षेत्रों में मदद पहुंचाने के लिए भारत सरकार हर संभव प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि रेलवे भी इस अभियान में सहयोग कर रहा है. नेपालगंज रोड नानपारा बहराइच रेलखंड के उद्घाटन के दौरान कल श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे अधिकारी स्थानीय प्रशासन और विदेश मंत्रालय के साथ लगातार समन्वय कर रहे हैं. पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए 4था भारत जर्मनी पर्यावरण मंच आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा.

0: பண்பலையில் தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே வைஷ்ணவி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान के राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित

0: करेंगे। इससे पहले कल प्रधानमंत्री ने बिश्केक में वर्ल्ड नोमैड गेम्स के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने खेलों में हिस्सा ले रहे भारतीय दल से मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। वर्ल्ड नोमैड गेम्स का छठा संस्करण 31 अगस्त से 6 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इसमें 100 से अधिक देशों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें भारत का 87 सदस्य दल शामिल है। उद्घाटन समारोह में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन समेत एससीओ के कई अन्य नेताओं ने भी हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने बिश्केक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों, व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
1: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
1: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा, जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
0: वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट में 11 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। इस हादसे में लोगों की मौत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रूपये की अनुग्रह राशि और घायलों के लिए 50-50 हजार रूपये की सहायता राशि की घोषणा की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि नेपाल के प्रभावित क्षेत्रों में मदद पहुंचाने के लिए भारत सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि रेलवे भी इस अभियान में सहयोग कर रहा है। नेपालगंज रोड नानपारा बहराइच रेलखंड के उद्घाटन के दौरान अधिकारी स्थानीय प्रशासन और विदेश मंत्रालय के साथ लगातार समन्वय कर रहे हैं। इस मौके पर नेपालगंज रोड वाराणसी सिटी स्पेशल ट्रेन को भी रवाना किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने और हिमस्खलन के कारण आई बाढ़ में भुटकेशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए और पनबिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए चौथा भारत जर्मनी पर्यावरण मंच आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जर्मनी के पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण, जलवायु संरक्षण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टीन स्नाइडर इस मंच पर की सह अध्यक्षता करेंगे। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर कल से शुरू होने वाले 3 दिवसीय भारत दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया को 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi, along with other SCO leaders, participated in the official opening ceremony of the 6th World